0: बता दूं? वो यहीं पर
1: यही है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो।
1: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं। प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।
2: हरिः ॐ स्वस्तिस्तुया विनाशाख्या धर्मकल्याणवृद्धिदा विनायकप्रिया नित्या त्वामस्वस्तिं ब्रुवन्तु नः। जज्जाग्रतो दूरमुदेति देवन्तं दर्प्रतसेवेति दूरङ्गमं ज्योतिखाञ्ज्योतिरे कान्तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। मैं आचार्य पार्थ कुमार व्यास मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन की ओर से श्रावण मास के उपलक्ष्य में श्रावण मास में रुद्र महायज्ञ का महत्व मैं आज आपको प्रस्तुत करूँगा। यहाँ पर श्रावण मास में रुद्र महायज्ञ का महत्व, श्रावण मास भगवान शिव की उपासना के लिए आराधना के लिए सबसे पवित्र महीनों में माना जाता है। इस माह में रुद्र महायज्ञ करने या उसमें भाग लेने का विशेष धार्मिक महत्व बताया गया है। मुख्यत्व भगवान शिव की विशेष कृपा, मान्यता है कि श्रावण मास में भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। रुद्र महायज्ञ से उनकी कृपा प्राप्त होती है, पापों का क्षय, वेदों और शिव पुराण की परंपरा के अनुसार रुद्र सूक्त के मंत्रों के से किया गया यज्ञ पापों का नाश करने और मन को शुद्ध करने वाला माना जाता है। स्वास्थ्य और सुख समृद्धि रुद्र नारायण महायज्ञ परिवार के स्वास्थ्य, दीर्घायु, धन धान्य और सुख शांति की कामना से किया जाता है। नकारात्मक ऊर्जा का निवारण धार्मिक मान्यता के अनुसार रुद्र हवन और मंत्र उच्चार से वातावरण पवित्र होता है तथा नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं। आध्यात्मिक उन्नति ओम नमः शिवाय और श्री महारुद्राय नमः के मंत्रों का जप मन को एकाग्र करता है और शिव भक्ति को दृढ़ बनाता है। विशेषतः रुद्र यज्ञ का महत्व है कि विश्व कल्याण की भावना रुद्र महायज्ञ के केवल व्यक्तिगत के लिए नहीं है, विश्व कल्याण के लिए है, विश्व के लाभ के लिए है, नहीं बल्कि समाज प्रवृत्ति और समस्त प्राणियों के कल्याण की भावना से ये रुद्र महायज्ञ किया जाता है। श्रावण मास में रुद्र महायज्ञ के साथ किए जाने वाले प्रमुख कार्य शिवलिंग का रुद्राभिषेक, बिल्वपत्र, धतुरा आदि अर्पित करना, महामृत्युंजय मंत्र जप करना, श्री रुद्राय नमः या तो

0: रुद्राष्टकम का पाठ करना, हवन दान और ब्राह्मणों को भोजन, व्रत एवं शिव नाम का जप ये महारुद्र यज्ञ का एक प्रयोग है। धार्मिक मान्यता के अनुसार श्रद्धा और विधि विधान से श्रावण मास में किया गया रुद्र महायज्ञ भगवान शिव की कृपा अनुकंपा होती है। ध्यान के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम। श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।

0: नमस्कार, श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की ओर से इस श्रावण प्रभात कार्यक्रम में आचार्य सुरेश सुपाल मिश्र का अभिवादन। सुख दुखंदो न बाध्यस्मिन् यत स्वकृतं भूकं पुमान। कोई भी किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, पुरुष एवं अपने किए हुए कर्म का फल भुगता है। मितम ददाते जनको मितम भ्राता मितम सुतः अमितस्य महिम ददातरम भ्राता पूजात्मना। माता पिता पुत्र भाई तो स्त्री को बहुत थोड़ा ही सुख देते हैं, परंतु पति तो अपरित हितम सुखम देता है। इसलिए स्त्री को चाहिए कि वह पति को सदैव सेवा पूजा करें। साधन्याम जननी लोके साधन्यो जनक पिता धन्य सह चह पतिचर्यते गृहे देवी पतिव्रता। इस लोक में उसकी माता धन्य है और उसके पिता भी धन्य है तथा उसका वह पति भी धन्य है जिसके धर्म में देवी रूपा पतिव्रता स्त्री का निवास होता है। न गंगायाम तथा वेदोयाम नारी पति देवता उमा शिवा सोम्यम साक्षात तस्मातम पूज्यते बुध। गंगा तथा पतिव्रत स्त्री में कोई भेद नहीं है, वे दोनों स्त्री पुरुष शिव तथा पार्वती के तुल्य है, अतः बुद्धिमान पुरुष को उनका पूजन करना चाहिए। पित्रोश्च पूजनम कृत्वा प्रकांतिम च करोति या तस्य वै पृथ्वी जियते फलम भवते निश्चित। माता पिता का पूजन करके जो उनकी परिक्रमा कर लेता है उसे पृथ्वी की परिक्रमा करने से होने वाला फल निश्चित रूप से प्राप्त हो जाता है। ओम शांते शांते इति शुभम।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम। श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।

तत्सत् वर्णानामर्थसंघाणां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानांश्च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां वीणान् पश्यन्ति सिद्धस्वान्तः स्थमीश्वरम् श्री श्री सीतारामचन्द्राय नमः श्रीरामदूताय नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः भगवते श्री सांब सदा शिवाय नमः। हिंदू महासभा की ओर से मैं बाबा जी गिरीश शर्मा आप सभी श्रोताओं का आज फ्राइडे 7 अगस्त के पावन श्रावण प्रभात वाणी कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूँ। शिव सती चरित्र का जो हम लोग पाठ कर रहे हैं, कल हम लोगों ने विराम दिया और पढ़ा कि किस प्रकार भगवान शिव ने बहुत समझाया फिर भी सती जी के मन में उनके बात नहीं बैठा। मुस्कुरा करके भगवान शंकर मायापति विष्णु जी को स्मरण करते हुए कहते हैं

भगवान शिव कहते हैं कि हे सती, जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेते? जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी तब तक मैं इसी बर की चाह में बैठा रहूं। जय

0: जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई अब क्या करूं, कैसी परीक्षा लूं। यहां से अब सती माता श्री राम की परीक्षा लेने के लिए तैयार हो जाती है। शिव जी के बात पे विश्वास ना करके सती माता स्वयं अपने से राम की परीक्षा करने के लिए तैयारी करते हैं। सती माता कैसी परीक्षा लेते हैं राम जी का, वो हम लोग कल पाठ करेंगे। आज इसको यही विराम देता हूँ। आपकी ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम सत्यम शिवम सुंदरम, ओम शांति ही शांति ही शांति ओम, श्री श्री सीताराम चंद्रार्पणमस्तु, साधुवाद, जय श्री हरि।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम।

0: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए यह विशेष कार्यक्रम।
1: आर्य सभा मॉरिशस द्वारा प्रस्तुत वेद मंत्र, प्रस्तोता प्रोफेसर धर्मेंद्र शास्त्री। ओम यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्नेवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सति। प्रिय श्रोताओ, ये ईशोपनिषद का छठा मंत्र है, बहुत ही प्यारा मंत्र है। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, इसमें बताया गया है कि जो मनुष्य सब प्राणियों को अपने आत्मा में ही देखता है, अपने आत्मा के तुल्य देखता है, अनुभव करता है, सर्वभूतेषु और सब प्राणियों में परमात्मा का दर्शन करता है, इसलिए ततः न विचिकित्सति, वो किसी प्रकार का संशय संदेह नहीं रह जाता उसको, वह किसी से घृणा नहीं करता, वह कोई निंदित कर्म नहीं करता। प्रिय श्रोताओ, ये बहुत ही प्यारा मंत्र है, हम संसार में प्राणी मात्र को अपना समझे, इसलिए तो वेद कहता है ना, मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे। मैं संसार के सारे प्राणियों को मित्रता की दृष्टि से देखूं। ऐसे व्यक्ति के हृदय में फिर ऊंच नीच की भावना कहाँ रह जाती है, द्वेष का भाव नहीं रहता, सबको द्वेष रहित मित्र की दृष्टि से हम जब देखते हैं तो हमारे जीवन बिल्कुल निर्मल हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, प्राणी मात्र में वही है। भगवान कृष्ण गीता में भी कहते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणयैव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुखक्षमी। जो सब प्राणियों के प्रति द्वेष रहित होता है, घृणा नहीं करता, वह सबका मित्र होता है, वह दयालु होता है, ममता और अहंकार से रहित होता है, सुख दुख में सम रहता है, बराबर रहता है। प्रिय श्रोताओ, इस संसार में न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, न कोई ऊंच है, न कोई नीच है, संसार में जितने भी प्राणी हैं वो सब एक हैं। और जो लोग ये सोचते हैं कि ये बहुत बड़ा है, ये छोटा है, ये मेरा नहीं है, ये पराया है, ये तो छोटे लोगों की भावनाएं होती हैं। संस्कृत के कवि ने कितनी सुंदर बात लिखी है, अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। अरे जो लोग उदार चरित्र वाले होते हैं उनके लिए तो सारा संसार कैसा है, एक परिवार के जैसे होता है। इसलिए प्रिय श्रोताओ, हम प्राणी मात्र को अपना समझें, किसी को हम ये न समझें कि ये पराया है, ये दूसरा है, हम सब उस अमृत ईश्वर के पुत्र हैं। ततो न विचिकित्सति, जब ऐसी भावना हमारे मन में आएगी तो हम किसी से कोई घृणा नहीं कर सकते, द्वेष नहीं कर सकते, और हम उसको सर्वत्र मान लेते हैं, अणु अणु में, कण कण में उस ईश्वर की सत्ता को जब समझने लगते हैं तो हमें सब जगह प्रभु दिखाई देते हैं। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए यह विशेष कार्यक्रम।
1: गहलोत राजपूत महासभा मॉरिशस द्वारा प्रस्तुत वेद मास और श्रावण मास के पावन अवसर पर विशेष कार्यक्रम वेद संदेश के श्रवण करने वाले आप समस्त श्रोताओं को आचार्य बिजुला का सादर सप्रेम नमस्ते। आए सुनते हैं वेद मंत्र पाठ अर्थ सहित। ओम त्वं स्त्री त्वं पुमानसि।

न वंचसि त्वं जातो भवसि विश्वतो मुख। जैसे परमात्मा में कोई लिंग विशेष नहीं है, वैसे ही जीवात्मा में चिन्ह नहीं है। वह शरीर के संबंध से स्त्री पुरुष लड़का लड़की आदि होता है और शत्रुओं का दमन करके सब ओर दृष्टि करता हुआ धर्मात्मा होकर स्तुति और कीर्ति योग्य है। ओम उतै अशां पितो तवा पुत्र ईशा मुतेषां ज्येष्ठ उत वा कनिष्ठ एको हदेवो मनसि प्रविष्ट प्रथमो जात्स स उगर्भे अन्त। नित्य जीवात्मा शरीर के संबंध से पिता पुत्रादि कहता है। इस जीवात्मा से भी सूक्ष्म ज्ञान स्वरूप परमात्मा सब में व्यापक है। ओम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णम् पूर्णेनसिच्यते उतो तदद्य विद्याम यतस्तत्परिषिच्यते। यह संपूर्ण जगत परमात्मा से उत्पन्न होकर वृद्धि को प्राप्त होता है, उसी परब्रह्म की उपासना सब लोग करें। ओम ईशा।

यशसो विभाति सैकेनैकेनमिषता विचष्टे। महान शक्ति परमात्मा सर्वव्यापक और सर्व प्रकाशक होकर अपने भक्तों की बढ़ती करता है और समस्त संसार में सधी रखता है। ओम अविर्वै नाम देवतर्।

हरिता हरित स्रज। ज्ञान स्वरूप परमात्मा सर्वरक्षक प्रसिद्ध हैं, उसी की दया से यह हरे हरे वृक्ष आदि प्राणियों को फल आदि से सुखदायक होते हैं। ओम शांति शांति शांति।

अश्वत्थः अर्थात पीपल का वृक्ष जो प्राण वायु का संचार करता है और सबको शीतलता प्रदान करता है, इस वृक्ष के सभी अंगों में पौष्टिक तत्व विद्यमान रहता है। दर्भः अर्थात कुशपवित्री एवं घास का तिनका जो दुख का विदारक है, चोट लगने पर उपयोग में लाया जाता है। विरुद्धाम राजा औषधियों का राजा, सोम अमृतम, सोमलता गिलोई आदि औषधियाँ जो साक्षात अमृत के समान बलदायक हैं। हवि भेषजौ रोगनाशक भय निवारक ग्राह्य द्रव्य जो यज्ञों में हवि के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ब्रीही यवह च चावल जौ आदि पुष्टिकारक अन्न जो हमारे जीवन को मृत्यु से बचाते हैं और हमें बल प्रदान करते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि पीपल दर्भ सोमलता चावल जौ आदि प्राकृतिक पदार्थों के गुणों को जानकर उनका सही उपयोग करें।

0: पृथ्वी के ऊपर पृथ्वी के नीचे जितने भी औषधियां हैं और जिस प्रकार की औषधियां हैं, चाहे गिलोई हो या तुलसी, ये सब औषधियां अलग अलग गुण वाले और प्रभाव वाले होती हैं। ये औषधियां हजारों पोषण शक्तियों से युक्त हैं। पौधे, लताएं, वनस्पति, जड़ी बूटियां हमें आलस्य, प्रमाद, कष्ट और मृत्यु से दूर रखें। इनके उचित सेवन से स्वास्थ्य की वृद्धि हो। अतः मनुष्य को चाहिए कि अन्न, कंद, जड़ी बूटी आदि स्वास्थ्यवर्धक औषधियों एवं पोषक तत्वों से बल बढ़ाकर सुखी जीवन व्यतीत करें।
1: ओम जीवालाम नघारीशम जीवंतिम ओषधिम अहम अरुधंतिम उन्दयंतिम पुष्पम मधुमतिम इह हवेस्मा अरिष्ठातये।
0: इस मंत्र में जीवंती, अघना और मधुमती जैसी कल्याणकारी औषधियों का वर्णन है। यह मंत्र कहता है कि कभी भी हानि न पहुंचाने वाली, नव जीवन देने वाली, रोगों को दूर रखने वाली और मधुर रस से युक्त वनस्पतियां हमारे शरीर के कल्याण के लिए आवश्यक हैं। अतः मनुष्यों को बहुत ही सावधानी पूर्वक परीक्षण के साथ उत्तम से उत्तम प्राकृतिक पदार्थों का सेवन करना चाहिए। जीवनदायी मधुरता से युक्त पापनाशक अन्न आदि औषधि एवं जड़ी बूटियां इस धरती में सदैव विराजमान रहें और इनसे सबका कल्याण हो।
1: ओ।

0: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आपने सुना यह विशेष कार्यक्रम।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो।

0: सभी को नमस्कार। आप सुनते हैं संक्षिप्त समाचार करुणा जी से। करुणा जी, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार पूनम, सभी को नमस्कार। मॉरिशस की साइक्लिस्ट किमले को पिनो ने टूर डी फ्रांस फार्म के छठे चरण में शानदार जीत दर्ज कर इतिहास रच लिया। उनकी इस उपलब्धि के बाद पूरी मॉरिशस में उनके समर्थकों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई। गणराज्य के राष्ट्रपति ने संविधान की धारा 73 के तहत सांसद चेतन आनंद बाबूलाल को कल 6 अगस्त को विपक्ष नेता नियुक्त किया। कल राष्ट्रपति ने विपक्ष नेता के पद से जूलियस ओंगाओ के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया। वहीं अद्रियन जुवाल ने भी ओपोजिशन व्हिप तथा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। रोजहिल की आजसू में कल सांसद वेरोनिक लेगोविन के साथ पूछताछ करने के बाद उन्हें जाने की अनुमति दे दी गई। उनके वकील शाफिक चतुर के अनुसार उनके खिलाफ कोई आरोप दर्ज नहीं किया गया है। और विदेश में अमेरिका के न्यू मैक्सिको राज्य की एक अदालत ने गुरुवार को मेटा को बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामले में 567 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अतिरिक्त हर्जाना अदा करने का आदेश दिया। और अब मौसम की रिपोर्ट। हमारे इलाके पर पूर्व की ओर से आने वाली तेज और अस्थिर हवा पाई जा रही है। अनुमान है कि सुबह के वक्त आसमान में बादल घिरे रहेंगे और रह रहकर बारिश होगी, खासकर पूर्व एवं सेंट्रल प्लाटू पर। कुछ इलाकों में कोहरे भी छाए रहेंगे, लेकिन दिन के दौरान धीरे धीरे मौसम में सुधार आएगा। ऊंचाइयों पर हल्की बारिश हो सकती है, अन्यत्र मौसम सुहाना रहेगा। तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम 16 से 18, अधिकतम 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच। साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 20 से 23, अधिकतम 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पूर्व की ओर से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, जिसके झोंके कुछ इलाकों में 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकते हैं। प्रवाह रेखा से परे समंदर चंचल रहेगा, लहरें 2 मीटर 50 तक हो सकती हैं। पूर्वी प्रांत में दूर समंदर में न जाने की सलाह दी जाती है। आज के लिए सूर्योदय 6:36 पर, सूर्यास्त होगा 5:54 पर। तो पूरा समाचार बुलेटिन 6:30, तब तक के लिए अनुमति दे, नमस्कार।
2: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

की बेला ताजगी भरी शुरुआत। भोर की बेला ताजगी भरी शुरुआत।

प्रणाम और सुप्रभात श्रोतागण, घड़ी मिलाते चलिए इस समय सुबह के 6:04 हो चुके हैं और इस शुक्रवार 7 अगस्त 2026 को सात नभा रही है पूजा। श्रोताओं, कहा जाता है

0: अच्छे लोग और अच्छी पुस्तक तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है, और समय से सबसे बड़ा बलवान और कुछ नहीं। आइए इसी सुविचार के साथ कार्यक्रम का आरंभ करते हैं सुधा वृष्टि से। आइए इसे सुनते हैं, इसे श्रवण करते हैं हिंदू महासभा की ओर से आचार्य गिरीश जी की प्रस्तुति में।
1: हिंदू महासभा द्वारा आइए सुनिए सुधा वृष्टि।
2: हरि ओम तत्सत् लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं त्वं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुत्तमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री श्री सीतारामचंद्राय नमः, श्रीरामदूताय नमः, श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम नमो भगवते सियाराम कृष्ण हरि नारायण। सभी मेरे श्रोताओं को सादर नमन करते हुए हिंदू महासभा की ओर से मैं बाबा जी गिरीश शर्मा आप सभी श्रोताओं का आज फ्राइडे 7 अगस्त 2026 के सुधा वृष्टि कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। पवित्र श्रावण मास चल रहे हैं, जिनको श्रीरामचरित मानस मास भी कहा जाता है, और इसी कारण से बहुत से भक्तगण श्री रामचरित मानस का मास परायण संपन्न कर रहे हैं अपने शिव पूजा के अंतर्गत। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे श्री रामचरित मानस का पाठ की महिमा। श्री रामचरित मानस, जिनको हम बोली भाषा में रामायण भी कहते हैं, यह केवल एक ग्रंथ नहीं है, यह सनातन धर्म का प्राण है। गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी ने कहा कि रामचरित मानस एही नाम सुनत श्रवण पाई विश्राम, यानी श्री रामचरित मानस का नाम सुनते ही कानों को शांति मिल जाती है, तो पाठ करने से कितना कल्याण होगा। वैसे मुख्य रूप से हम लोग चार प्रमुख रामायण को मानते हैं, वाल्मीकि रामायण, आध्यात्म रामायण, आनंद रामायण और श्री रामचरित मानस। आज घर घर में मुख्यतः श्री रामचरित मानस का ही पाठ होता है। रामायण का या फिर यूं कहे रामचरित मानस का पाठ क्यों करें? शास्त्रों में इनका अनेक फल वर्णित किया गया है। रामचरित मानस पाठ करने से कुछ एक दो फल मैं आपके सामने रख रहा हूं, शायद इससे प्रेरणा लेकर के आप श्री रामचरित मानस का पाठ करना आरंभ करें। बताया गया है कि इसका पाठ करने से सभी पापों का नाश होता है। पद्म पुराण कहते हैं रामायणे पाठ्यमाने तु पापम याति सहस्रधाः, अर्थात रामायण का पाठ होते ही हजारों जन्मों के पाप टुकड़े टुकड़े होकर नष्ट हो जाते हैं, जैसे सूर्य के निकलते ही अंधकार भाग जाते हैं। फिर कहा गया है इसका पाठ करने से पितृ दोष से मुक्ति। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति अपने पितरों के निमित्त रामचरित मानस या फिर यूं कहे रामायण का पाठ करता है, उसके 7 पीढ़ी के पितर तृप्त होकर मुक्त हो जाते हैं। यह भी माना गया है कि सुंदरकांड का पाठ पितृ दोष के लिए रामबाण है। फिर कहा गया है कि भय और रोग का नाश, भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। यह श्री हनुमान चालीसा का एक बहुत ही प्रसिद्ध चौपाई है, और श्री हनुमान जी राम कथा के

रक्षक है। जहां रामायण होती है वहां नकारात्मकता एवं भय दूर हो जाते हैं और स्वयं श्री हनुमान जी रक्षा करने के लिए पहुंच जाते हैं। एक फल यह भी बताते हैं कि संतान की प्राप्ति व रक्षा। बालकांड का पाठ निसंतान दाम्पत्य के लिए वरदान है। राजा दशरथ को पुत्रेष्टि यज्ञ के बाद 4 पुत्र मिले थे और इन सब का वर्णन बालकांड में है। इसलिए यदि बालकांड का निरंतर पाठ करें तो निसंतान दंपति को संतान की प्राप्ति हो सकती है, अथवा संतान के लिए हम लोग रामचरितमानस का सुंदरकांड पाठ करें तो बालक तेजस्वी एवं राम भक्त होता है। फिर बताया गया है दरिद्रता का नाश। यह कलिकाल मलायतन मन क्यरे देखु विचार श्री रघुनाथ नाम तजी नाहिन आन अधार। कलयुग में लक्ष्मी उन्हीं घरों में टिकती है जहां राम कथा अथवा रामायण का पाठ किया जाता है। अयोध्या कांड का पाठ आर्थिक समस्याओं को दूर कर सकते हैं। यह भी बताया गया है कि इसका पाठ करने से मुकदमे व शत्रु बाधा में विजय प्राप्त होते हैं। लंका कांड का पाठ कोर्ट कचेरी में विजय दिलाता है। आप सभी जानते हैं विभीषण ने श्री राम की शरण ली तो राम रावण का राज्य छिन गया। जो राम का होता है समय उसका होता है। एक लाभ यह भी बताते हैं कि इससे वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि होती है। सीताराम का विवाह आदर्श दाम्पत्य है। जिनके विवाह में देरी हो रहे हैं अथवा कलह हो रहे हैं वे बालकांड का सीताराम विवाह प्रसंग पाठ करें। जानकी मंगल का भी पाठ शुभ माना जाता है। मोक्ष की प्राप्ति भी होते हैं। जो यह कथा सुंदर करें बाँचें औ बचावें। तासु ना सही सब पाप सहज मुक्ति सिधावे। रामायण पढ़ने सुनने सुनाने वाले के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और वह सहज ही मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। यह भी बताया गया है कि इसका पाठ करने से वास्तु दोष समाप्त होते हैं। जिस घर में रोज रामायण की चौपाएं गूंजती हैं वहां का वास्तु दोष अपने आप शांत हो जाता है। कारण कि हम सब जानते हैं मंगल भवन अमंगल हारी। यह चौपाई यदि घर में पाठ किया जाता है तो घर का अमंगल दूर हो जाते हैं। मनोकामना की पूर्ति सुंदरकांड के 60 दोहे कल्प वृक्ष है। गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी कहते हैं सकल मनोरथ सिद्ध करें सुनो सुंदरकांड सट वचन। 40 दिनों तक सुंदरकांड का पाठ करने से हर इच्छा पूर्ण होती है। बुद्धि व विद्या की प्राप्ति। बुद्ध विश्राम सकल जन रंजनी राम कथा कली कलुष विभंजनी। श्री रामचरितमानस का पाठ बुद्धि को विश्राम देती है और कलयुग के पापों को नष्ट करती है। यदि छात्र जो है विद्यार्थी जो है किष्किंधा कांड पढ़े तो उनकी स्मरण शक्ति असिमिलेटिंग पावर बढ़ती है। यह भी बताया गया है कि इसका पाठ करने से काल सर्प दोष की शांति होती है। राहु केतु से परेशान अगर कोई व्यक्ति श्रावण मास में श्री रामचरितमानस का नवह पारायण पाठ करें तो काल सर्प दोष का असर 90% कम हो जाते हैं। यह भी बताया गया है कि परिवार में प्रेम बढ़ते हैं। राम भरत का प्रेम लक्ष्मण जी का त्याग हनुमान जी की सेवा भाव यह सब मानस में आते हैं। अयोध्या कांड पढ़ने से भाई भाई का जो मनमुटाव है वो समाप्त होता है। घर में श्री रामचरितमानस रखते ही कलह बंद हो जाते हैं। अकाल

0: मृत्यु का भय नहीं होता है। नाम पहारु दिवस निसी ध्यान तुम्हार कपाट। जो राम नाम का पहरा लगाता है यमराज भी उसके पास नहीं आते। श्री रामचरितमानस का पाठ करने वाले की अकाल मृत्यु नहीं होते। और शायद यह भी बताऊं आखिरी में कि जो रामचरितमानस का पाठ करता है राम जी स्वयं रक्षा करते हैं। मम भरोस ही हर्षन खेद। जिसने राम कथा का भरोसा कर लिया, राम जी कहते हैं कि उनकी चिंता अब मैं करूंगा। सो इस रामचरितमानस से अनेक लाभ भी प्राप्त होता है। वैसे श्रोताओं, इस रामचरितमानस की पाठ की 5 विधियां दिया है। एक नित्य पाठ, यानी रोज एक दोहा 5 चौपाई पढ़ें। ऐसा करें तो 2 साल में आप पूरे मानस का पाठ कर लेंगे। साप्ताहिक पाठ भी होता है, हर सप्ताह एक दिन एक कांड का पाठ कर लें। मास परायण, यानी 30 दिन में पूरी रामचरितमानस को पढ़ना, जो हम लोग आजकल श्रावण मास में कर रहे हैं। नवाह परायण का पाठ, यानी 9 दिनों में पूरे रामचरितमानस का पाठ करके, हवन यज्ञ आदि करके सबको भोजन आदि कराएं। इससे बहुत ज्यादा फल की प्राप्ति होती है। पूरी रामचरितमानस का पाठ ना कर सकें तो सुंदरकांड का पाठ करें। यह कलयुग में सबसे ज्यादा प्रचलित है। मासिक शिवरात्रि, मंगलवार या शनिवार को सुंदरकांड का पाठ श्री हनुमान जी के निमित्त किया जाए तो श्री हनुमान जी साक्षात फल देते हैं। रामचरितमानस के पीछे कुछ वैज्ञानिक लाभ भी होते हैं। जैसे ध्वनि विज्ञान कहते हैं कि इन चौपाइयों का, जैसे कहे वाइब्रेशन जब प्राप्त होते हैं तो इससे मन की शांति होती है। आयुर्वेद यह भी बताते हैं कि राम शब्द बोलते ही शरीर के करीब करीब 108 नारियां शुद्ध हो जाते हैं। और कलिकाल में तो विशेष रूप से इस रामचरितमानस का पाठ अवश्य करना चाहिए। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम को हम विराम की ओर लेके चलें और आखिर में आपको इतना ही बता करके विराम दें कि राम कथा सुंदर करताली संयम विहग उराव निहारी। राम जी का ये कथा हाथ की सुंदर ताली है जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। आपकी ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम सत्यम शिवम सुंदरम, ओम शांति ही शांति ही शांति ओम। श्री सीताराम चंद्रार्पणमस्तु। साधुवाद, जय श्री हरि।
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदू महासभा द्वारा सुधा वृष्टि।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: श्रोताओं, आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा एक विज्ञप्ति सुनिए। जरूरी मरम्मत कार्यों की वजह से वाकवा के रहने वाले निवासियों को खासतौर पर मिनिल सैंपल और गुतवायाल मिनिल बनाहाली लेन एपास खामजोन अबिंदनाथ टागो एवेन्यू जिंगोर लेन अली लेन सोना लेन और पारिसो ब्रांच रोड के कुछ हिस्सों में सितियाओ लेन गुलजाओ लेन अमीराली लेन कालीचन लेन पीटो लेन धनी लेन धनी लेन नंबर दो और आसपास के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि 9 अगस्त 2026 को सुबह के 8:30 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इस असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों से क्षमा प्रार्थी हैं। बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई को सामान्य रूप पर लाई जाएगी। श्रोताओं, अभी आप सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा एक विज्ञप्ति सुन रहे थे। ये रेडियो मॉरिशस है।
0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।

आदरणीय श्रोताओं को पंडिता ज्योति भोला रघुबीर की ओर से सादर सप्रेम नमस्ते। गहलोत राजपूत महासभा की ओर से प्रस्तुत विशेष कार्यक्रम में आप सभी जनों का हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, श्रावणी उपाकर्म वेद स्वाध्याय का पर्व है। वेद पढ़ने पढ़ाने सुनने सुनाने का पर्व है। वेद परमेश्वर द्वारा प्रदत्त दिव्य ज्ञान है। अतः वेदः सर्व सत्य विद्यानां ग्रंथो विद्यते। वेदस्य पठनं पाठनं श्रवणं श्रावणश्च समस्तानां आर्यानां परमो धर्मः। अर्थात वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। श्रोताओं, वेद संसार के पुस्तकालय में सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इतना ही नहीं, वेद संसार के साहित्य के मुकुटमणि है। वेद अनमोल रत्न है। वेद के एक एक अध्याय मंडल और सूक्त में रत्न भरे पड़े हैं। वेद के प्रत्येक शब्द से नहीं एक एक अक्षर से अमृत रस की धारा बहती है। वेद पढ़ने का बड़ा भारी महत्व है। संसार में वेद से बढ़कर कोई शास्त्र नहीं है। ऐसे उपयोगी ग्रंथ का हमें प्रीतिपूर्वक श्रद्धापूर्वक पाठ करना चाहिए। पाठ के पश्चात हमें अपने कर्तव्य का निश्चय करना चाहिए। जिस प्रकार अंधेरे में टॉर्च हमें प्रकाश देती है और ठीक मार्ग बताती है, उसी प्रकार वेद भी हमें हमारे कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान कराता है। वेद हमें सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार का ऊंच ज्ञान देता है। वेद का स्वाध्याय हमें पापों से बचाएगा, हमारे जीवन को उन्नत करेगा, हमारे जीवन में आशा और उल्लास का संचार करेगा, हमारे जीवन को शांत, पवित्र और निर्विकारी बनाएगा, हमें कुपथ से हटाकर सुपथ पर चलाएगा। जब हम सुपथ से विचलित होने लगेंगे तो हमें सचेत और सावधान करेगा। वेद ज्ञान और विज्ञान के अगाध भंडार हैं। त्रिन से लेकर ब्रह्म ईश्वर पर्यंत सभी का ज्ञान वेद में है। वेद अखिल विद्याओं के स्रोत हैं। वेद के पढ़ने में ही कल्याण है। श्रोताओं, सृष्टि की उत्पत्ति कारण रूप से कार्य रूप में हुई। ज्ञान की उत्पत्ति सूत्र रूप वेदों के द्वारा प्रकट हुई है। भौतिक व्यवस्था तो सब जीव मात्र के लिए परम तत्व के लिए होती है। आँख के लिए अग्नि, कान के लिए आकाश, नासिका के लिए पृथ्वी, स्पर्श के लिए वायु, जिह्वा के लिए जल, मन के लिए इच्छा, बुद्धि के लिए शिक्षा की उत्पत्ति की, लेकिन आत्मा के लिए क्या व्यवस्था की गई? इसका उत्तर, परम तत्व ने आत्मा के लिए ज्ञान की उत्पत्ति की, जिसे वेद कहा जाता है। अणु परमाणु से लेकर सूर्य आदि ग्रहों तक और जन्म मृत्यु से लेकर मोक्ष तक की अनुभूति को हम ज्ञान कहेंगे। ज्ञान सदा और सर्वत्र व्यापक है, अतः उसकी उत्पत्ति नहीं होती। मनुष्य उसका प्रकटीकरण और आत्म अनुभूति ही कर सकता है। जैसे आकाश में वायु अखंड रूप से बहता रहता है, हमें जितना आवश्यक है उतना इस भंडार से लेते हैं। सूर्य की उष्णता अथवा ऊर्जा सूर्य गोलोक से अखंडित रूप से निकलती रहती है। हमें जितनी ऊर्जा चाहिए हम लेते हैं। इसी तरह से परमात्मा ज्ञान का अपार भंडार है। आत्मा उस भंडार से ज्ञान के जितने अणु परमाणु लेना चाहे ले सकती है। यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि वह ज्ञान को ग्रहण तो कर सकती हैं, पर ज्ञान की उत्पत्ति नहीं कर सकती। श्रोताओं, वेद मानवता को परम ऊंच शिखर तक ले जाने

के साधन हैं। वेदों की शिक्षा किसी वर्ग विशिष्ट तक सीमित नहीं है। मानवता के कल्याण की जब बात आती है तो उसमें पूरे मानव समाज के कल्याण का संबंध जुड़ जाता है। मानव निर्मित संकीर्ण वर्ग का वहां कोई औचित्य नहीं रहता। अतः ज्ञान ग्रहण करने की जिसके पास क्षमता है वह वेद को पढ़ सकता है, सुन सकता है तथा आचरण में ला सकता है। विश्व के कल्याण में परमेश्वर की ओर से दिया जाने वाला ज्ञान सर्वप्रथम भारतीय उपखंड के हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों को प्राप्त हुआ। उनसे आर्यों को यह सम्मान सृष्टि के प्रारंभ में प्राप्त हुआ। यह उस सम्मान में चार चांद लगाने वाली घटना है। वेद स्पष्ट आदेश देते हैं, यथे माम वाचम कल्याणी मा वदानी जनेभ्यः ब्रह्मराजन्याभ्याम शूद्राय चार्याय स्वाय च चारणाय च। अर्थात यह कल्याणमयी वेदवाणी जितनी ब्राह्मणों के लिए है उतनी ही समाज के अन्य जनों के लिए भी है। ध्यान के लिए धन्यवाद। इति ओम शांति शांति शांति।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: साढ़े 6 बजे हैं, वक्त हो चला है समाचार बुलेटिन का।

0: नमस्कार, सबसे पहले आज की सुर्खियां। मॉरिशस की साइक्लिस्ट किम ले कोपियनो ने टूर डे फ्रांस फॉर्म के छठे चरण में शानदार जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया। उनकी इस उपलब्धि के बाद पूरे मॉरिशस में उनके समर्थकों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई। गणराज्य के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल ने संविधान की धारा 73 के तहत सांसद चेतन आनंद बबलाल को कल 6 अगस्त को विपक्ष नेता नियुक्त किया। कल राष्ट्रपति ने विपक्ष नेता के पद से जो लिजोंगाओ के इस्तीफे को स्वीकार किया। वहीं अद्रियन जवाल ने भी ओपोजिशन व्हिप तथा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। ब्राजील के आत्सू में कल सांसद वेरोनिक लेगोविन के साथ पूछताछ करने के बाद उन्हें जाने की अनुमति दी गई। उनके वकील के अनुसार उनके खिलाफ कोई आरोप दर्ज नहीं किया गया। और विदेश में अमेरिका के न्यू मैक्सिको राज्य की एक अदालत ने गुरुवार को मेटा को बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामले में 567 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अतिरिक्त हर्जाना अदा करने का आदेश दिया।
1: Can Giroud get the most beautiful victory in her hometown? Puck Peter hits them hard now in the polka dot jersey. Giroud doesn't have the legs. Through the centre, it's Kim Lacour. Kim Lacour, the Mauritian. Kim Lacour wins into Tournon-sur-Rhône. A beautiful stage win.
0: Tour de France femme, Kim Lacour, Pinot qui dit si, Mauritius met jashna ka mahal. मॉरिशस की साइक्लिस्ट किम ले कोपियनो ने टूर डे फ्रांस फॉर्म के छठे चरण में शानदार जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया। उनकी इस उपलब्धि के बाद पूरे मॉरिशस में उनके समर्थकों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई। इस शानदार प्रदर्शन ने पूरे देश को गौरवान्वित किया और एक बार फिर साइकिलिंग जगत में मॉरिशस का नाम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रोशन किया। उनको सुनती हैं।
2: Yeah, Elisa closed me down, but then when Liana Marcus made an attack from the back, I knew it was going to happen because that's the only way she can win a race like this. And I had to close the gap myself, and I was really, really dead. I was on the limit, and yeah, I can't believe I still had the legs to sprint. It was really hard. It was really this close before I could give up. But yeah, it's just. I will never give up after this big effort my team did. Of course, we've got GC ambitions, but winning a stage in a Tour de France is very special. You know, people don't really remember top 10, top 5 riders in Tour, but they do remember stage winners.
0: Champion cyclist Kim Le Coupiano ne kal Montbrison se Tournon-sur-Rhône ke beech ayojit chhathe charan mein jeet darj ki. Daur ke dauran yantrik kharabi ke karan उन्हें अपनी साइकिल बदलनी पड़ी, लेकिन उन्होंने शानदार वापसी करते हुए पहले मुख्य समूह को पकड़ा, फिर अग्रणी समूह में शामिल हुई और अंत में स्प्रिंट फिनिश में बाजी मार ली। ये उनके करियर की एक और प्रतिष्ठित जीत है। खबरों में आगे, गणराज्य के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल ने संविधान की धारा 73 के तहत सांसद चेतन आनंद बाबूलाल को कल 6 अगस्त को विपक्ष नेता नियुक्त किया। ये तत्काल प्रभाव से लागू हुआ। उनकी प्रतिक्रिया को सुनते हैं।
3: C'est sa responsabilité là, vous travaillez pour le pays, vous faites des affaires, vous travaillez comme un parlementaire, posez-moi une question et maintenant, travaillez pour la population, veuillez que le gouvernement fasse ce travail pour vous inscrire.
0: याद रहे कि बुधवार रात को फ्रों मिलिटों प्रोग्रेसिस द्वारा चेतन बाबूलाल को विपक्ष नेता बनाने के लिए प्रस्ताव रखा गया था। कल दोपहर एमएसएम के एकमात्र सांसद जो लेजोंगाओ ने विपक्ष नेता के पद से अपना इस्तीफा दिया, जिसे राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया। दूसरी ओर पीएमएसडी के अद्रियन जवाल ने भी ओपोजिशन व्हिप तथा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। प्रणव बिहारी, याचना मिश्रा।
4: चुनाव क्षेत्र नंबर 10 मोताई ब्लांश ग्रन रिवर साउथ ईस्ट के सांसद का मानना है कि उनके पास इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए आवश्यक योग्यता और क्षमता है। वर्तमान में एफएमपी यानी फोर मिलिटों प्रोग्रेसिव विपक्ष का वह दल है जिसके पास सबसे अधिक सांसद हैं। पार्टी के कुल 3 निर्वाचित सांसद विपक्ष में हैं। कल दोपहर जो लिजोंगाओ, जो विपक्ष में बैठने वाले एमएसएम के एकमात्र सांसद हैं, स्टेट हाउस पहुंचे।

0: पहुंचे वहां उन्होंने विपक्ष के नेता के पद से अपना इस्तीफा दिया। वे पिछले 20 महीनों से इस पद को संभाल रहे थे। वहीं पीएमएसटी के आदरिया जुवाल ने भी विपक्ष के व्हिप तथा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा एफएमपी और जोलीहोंगा दोनों शनिवार को अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करेंगे।
1: रोजिल की आजसू में कल सांसद वेरोनिक लेगोविन के साथ पूछताछ करने के बाद उन्हें जाने की अनुमति दे दी गई। उनके वकील शफीक चतुर के अनुसार इस स्तर पर उनके खिलाफ कोई आरोप दर्ज नहीं किया गया है। उनसे विशेष रूप से उनके नाम पर पंजीकृत एक वाहन के बारे में सवाल किए गए जिसे रीनियन टापू और मॉरिशस के बीच कथित 155.7 किलो कैनाबिस की तस्करी से जुड़े मामले की जांच के तहत जब्त किया गया है। लोविना सोफी, याचना मिश्रा।
0: वेरोनिक लेगोविन गुरुवार को सुबह लगभग 9:30 बजे के बाद रोजिल स्थित एंटी ड्रग एंड स्मगलिंग यूनिट के कार्यालय पहुंची। जांचकर्ताओं ने उनसे उनके नाम पर पंजीकृत एसयूवी वाहन के बारे में पूछताछ की, जिसकी पुलिस इस मामले के सिलसिले में जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि वाहन से कथित तौर पर गांजे के निशान मिले हैं। सांसद ने कथित रूप से बैंक से संबंधित दस्तावेज पेश किए, जिनसे ये साबित होता है कि उन्होंने वाहन खरीदने के लिए लोन लिया था। उन्होंने ये भी बताया कि वे इस गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करती हैं, क्योंकि उनके पास एक औपचारिक गाड़ी मौजूद है। वेरोनिक लेगोविन ने ये भी बताया कि कुछ समय से वे अपने पति के साथ एक ही घर में नहीं रह रही हैं, जिसका कारण वैवाहिक समस्याएं हैं। वहीं गुलशन गोविंद के साथ भी गुरुवार को दोबारा पूछताछ की गई। जांचकर्ताओं ने विशेष रूप से उनके घर से जब्त किए गए गांजे के पौधों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कथित तौर पर कहा कि वे गांजे का सेवन करते हैं, उसकी खेती नहीं करते। उनके अनुसार ये गांजा केवल व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए था और वे घर के अन्य लोगों की जानकारी के बिना अक्सर घर की छत पर इसका सेवन करते थे। गांजा तस्करी के इस मामले की जांच अभी जारी है। साथ ही इस दंपति की संपत्तियों की भी फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन द्वारा जांच की जा रही है।
1: सेंट्रल वाटर अथॉरिटी ने देश के कई क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति के समय में बदलाव किया है, क्योंकि जल संसाधनों की स्थिति अभी भी चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। अब उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति सुबह 4 बजे से 7 बजे तक और शाम को 4 बजे से 7 बजे तक की जाएगी। दक्षिणी क्षेत्र में पानी की सप्लाई सुबह 5 बजे से 8 बजे तक और शाम 5 बजे से 7 बजे तक की जाएगी। पोर्टली में जलापूर्ति का समय सुबह 4 से 8 बजे तक और शाम को 4 से 8 बजे तक निर्धारित किया गया है। इन नए प्रावधानों के तहत प्रतिदिन पानी की आपूर्ति की अवधि में 2 घंटे की कटौती की गई है। ये व्यवस्था अगली सूचना तक लागू रहेगी। साथ ही 17 जून से प्लेनविलहेम्स मोका तथा रिवियनवा के कुछ हिस्सों में लागू जल आपूर्ति संबंधी प्रतिबंध पहले की तरह जारी रहेंगे। सृजन करना, विकास करना और आगे बढ़ना, स्टार्टअप कंपनियों के लिए ये सफ़र अक्सर चुनौतियों से भरा होता है। वित्तीय संसाधनों की कमी, योग्य मानव संसाधनों का अभाव और सीमित साधनों के साथ लगातार नवाचार करने की आवश्यकता जैसी कठिन परिस्थितियों के बीच युवा उद्यमों को आगे बढ़ने के लिए हमेशा नए रास्ते तलाशने पड़ते हैं। इसी वास्तविकता को केंद्र में रखते हुए लाप्लाज फैक्ट्री ने अपने लेट्स मीटअप कार्यक्रम में उद्यमियों और स्टार्टअप इकोसिस्टम से जुड़े विभिन्न हितधारकों को एक साथ लाया। इस आयोजन की थीम रही डू मोर विद लेस। लाप्लाज फैक्ट्री के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिशेल कोडानी ने के अनुसार दूरदृष्टि और प्रेरणा वे मूलभूत शक्तियाँ हैं जो चुनौतियों और सीमाओं को अवसरों में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उनको सुनते हैं, विवरण अशिता रघु का है।
2: लाप्लाज फैक्ट्री के सीईओ मिशेल कोदानी कहते हैं, इसमें वास्तव में विरोधाभास है। सृजनात्मकता तब ज्यादा उभर कर सामने आती है जब एक विजन हो, प्रोत्साहन हो और साथ ही

0: बाधाएं भी हो। संसाधन की कमी एक तरह की बाधा है। इसी से हम योग्य ठेकेदारों की पहचान कर पाते हैं। वे हमेशा उचित और कारगर समाधानों की तलाश में होते हैं, जिससे वे बाधाएं पार कर पाते हैं। ठेकेदारी के लिए ये दृष्टिकोण और रवैया रखना सफलता के लिए अनिवार्य है। समस्याओं का सामना करने से उनमें ज्यादा सृजनात्मकता और इनोवेटिव विचार पैदा होता है। कुछ लोगों के लिए ऐसी चुनौतियाँ प्रेरणा की तरह होती हैं, जो उन्हें किसी भी हाल में सफल होने के लिए आगे बढ़ाती हैं।
1: तो ये विवरण अदिति गनवा अवतार का रहा। लिसालिन में पाई गई सील अभी भी अधिकारियों की निगरानी में है। बुधवार को कृषि उद्योग मंत्रालय के जूनियर मिनिस्टर फाफिज दावेद घटनास्थल पर पहुंचे। हालांकि उनके वहां पहुंचने तक ये समुद्री जीव समुद्र तट छोड़ चुका था। उनके अनुसार ये संभव है कि सील भोजन की तलाश या फिर आराम और स्वास्थ्य लाभ के लिए समुद्र और तट के बीच आवाजाही कर रहा हो। फाबुज दाविद ने बताया कि उनके मंत्रालय की टीमें लगातार इस समुद्री जीव की निगरानी कर रही हैं। यदि आने वाले दिनों में ये अभी भी उसी क्षेत्र में पाया जाता है तो अधिकारी उसे गहरे समुद्र तक सुरक्षित पहुंचाने पर विचार करेंगे, ताकि वो अपने प्राकृतिक आवास की ओर वापस लौट सके। आशी बेचू ने जूनियर मिनिस्टर फाफिज दाविद से बात की। विवरण याचना मिश्रा का।
2: On fait quand même tenir à venir sur les lieux pour voir effectivement l'éléphant de mer n'est pas là en ce moment. Il est possible qu'il y ait fait aller.
3: हम जब स्थल पर आए तो सील यहाँ पर नहीं था। वो शायद खाने गया होगा, जिसके बाद वो यहाँ आराम करने वापस आएगा। मैं फिशरीज के निदेशक और आल्बियों के रिसर्च सेंटर के एक विशेषज्ञ के साथ यहाँ आया हूँ। उन्होंने कहा कि निगरानी बरकरार है। यदि कुछ दिनों तक ये सील यहीं पर रहा तो हम उसे सागर तक जाने में मदद देंगे। जनता से मांग है कि वो सील के पास न जाएं। ऐसा हुआ तो वो डर जाएगा, तनाव में आ जाएगा। दूरी बनाए रखें ताकि समय आते सील अपनों के पास लौट जाए।
1: विदेशी स्तर पर अमेरिका के न्यू मैक्सिको राज्य की एक अदालत ने गुरुवार को मेटा को बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामले में 567 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अतिरिक्त हर्जाना अदा करने का आदेश दिया। अदालत ने माना कि कंपनी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बच्चों को होने वाले संभावित खतरों के बारे में जनता को पर्याप्त चेतावनी नहीं दी। ये बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामलों में मेटा के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा न्याय आदेश माना जा रहा है। न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा कि मेटा एक सार्वजनिक उपद्रव की तरह है, जिसकी तुलना वायु प्रदूषण से की जा सकती है। उन्होंने आदेश दिया कि ये राशि एक खास कोष में जमा किए जाए, जिसका उद्देश्य भविष्य में बच्चों को होने वाले नुकसान को कम करना होगा। ये आदेश पहले से लगाए गए 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर के जुर्माने के अतिरिक्त हैं। इस प्रकार मेटा पर कुल वित्तीय दंड 942 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। इस बीच मेटा ने इसके खिलाफ अपील करने की बात कही है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ से नाराजगी और हथियारों के घटते भंडार को लेकर दोनों के बीच विवाद की खबरों को पूरी तरह खारिज कर दिया। व्हाइट हाउस ने भी इन रिपोर्टों को 100% फर्जी बताते हुए कहा कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई। दरअसल वाशिंगटन पोस्ट ने पिछले सप्ताह दावा किया था कि कैंप डेविड में हुई बैठक के दौरान ट्रंप ने अमेरिकी हथियारों और गोला बारूद से घटते भंडार पर हेगसेथ से नाराजगी जताई थी। मौसम की रिपोर्ट। हमारे इलाके पर कुछ तेज़ और अस्थिर हवा चल रही है पूर्व की ओर से। अनुमान है कि सुबह के वक्त आसमान में बादल घिरे रहेंगे और रह रहकर बारिश हो सकती है, खासकर पूर्व एवं सेंट्रल प्लाटू पर। कुछ इलाकों में कोहरे भी छाए रहेंगे, लेकिन दोपहर में धीरे धीरे मौसम में सुधार आएगा। ऊँचाइयों पर थोड़ी बहुत

0: बारिश के अलावा मौसम सुहाना रहेगा। तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम तापमान जो है 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच, अधिकतम 22 से 24 डिग्री सेल्सियस। साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 20 से 23, अधिकतम जो है 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पूर्व की ओर से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, जिसके झोंके कहीं कहीं 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकते हैं। प्रवाल रेखा से परे समंदर चंचल रहेगा। पूर्व में लहरें 2 मीटर 50 तक हो सकती हैं। दूर समंदर में न जाने की सलाह दी जाती है। आज सूर्योदय हुआ 6:36 पर, सूर्यास्त होगा 5:54 पर। खबरों के अंत में सुर्खियां एक बार फिर से। मॉरिशस के साइक्लिस्ट किम ले कोपियनो ने टूर डे फ्रांस फॉर्म के 6ठे चरण में शानदार जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया। गणराज्य के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल ने संविधान की धारा 73 के तहत सांसद चेतन आनंद बाबूलाल को कल 6 अगस्त को विपक्ष नेता नियुक्त किया। कल राष्ट्रपति ने विपक्ष नेता के पद से जूलिया जागो के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया। वहीं अद्रिया जुवाल ने ओपोजिशन व्हिप तथा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। ब्राजील के आजसू में कल सांसद वेरोनिक लोगोविन के साथ पूछताछ करने के बाद उन्हें जाने की अनुमति दी गई। उनके वकील के अनुसार उनके खिलाफ कोई आरोप दर्ज नहीं किया गया। विदेश में अमेरिका के न्यू मैक्सिको राज्य की एक अदालत ने गुरुवार को मेटा को बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामलों में 567 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अतिरिक्त हर्जाना अदा करने का आदेश दिया। 6:47 हो चुके हैं। ये बुलेटिन आप तक पहुंचा जा रहा है कादेर के सहयोग से। जुड़े रहे हमारे साथ कुछ ही समय बाद शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: ब्रेंच रोड लालमाटी में 50 साल के 50-year-old श्री विनय जियाना, श्री विनय जियाना जो विकास से जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 11:30 इनकी पत्नी श्रीमती लीना जियाना के मकान ब्रेंच रोड लालमाटी से उठाकर दाह संस्कार के लिए गांधी रोड लालमाटी की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टू डिया था पास्ट 11 AM। F4 हाउसिंग स्टेट गोखुला में 64 साल की 64-year-old श्रीमती अनुराधा जिबना पैदाइशी नाम सीसरन जो आशा से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2:00 इनके पति रोहित जिबना के मकान F4 हाउसिंग स्टेट गोकुला से उठाकर दाह संस्कार के लिए लामिचे की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। रॉयल रोड NS फ्लोरो में 72 साल की 72-year-old श्रीमती निर्मला जदन पैदाइश नाम हरनोत जो लता से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2:00 इनके मकान गुटवायाल NS फ्लोरों से उठाकर दाह संस्कार के लिए बोशों की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। बॉम्बे रोड प्रोविडेंस कॉटेज मिलिटेयर में 24 साल के 24-year-old जनाब मोहम्मद शर्फी उल्ला सलमान जीतू जो सलमान से जाने जाते थे इंतकाल कर गई हैं। जनाजा आज सुपहर 3:00 जनाब फरीद जीतू बम के मकान बॉम्बे रोड प्रोविडेंस कॉटेज मिलिटेयर से निकाल कर दफनाने के लिए मेजिन कौडे मास्क का कब्रिस्तान ने जाएगा। फिनरल टुडे एट 3 PM। नंबर 73 अबाटवा स्ट्रीट ओशबुआ में 82 साल की 82-year-old श्री भेरिता प्रसाद बंसरोई श्री भेरिता प्रसाद

0: बंस रॉय जो जयराज से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2:30 बजे इनके बेटे अश्विन बंसरोई के मकान नंबर 73 अबाटवा स्ट्रीट खुशबुआ से उठाकर दाह संस्कार के लिए सिपाही भूले की स्मशान भूमि ले जाए जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:30 PM। कोपेगाचिव गली लाफलोगा में 58 साल की 58-year-old श्री देवराम बलिया जो संजय से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 12 बजे इनके मकान कोपेगाचिव गली लाफलोगा से उठाकर दाह संस्कार के लिए माघजानी रोजबेल की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट नून। ओट रॉयल मोटाई ब्लांश में पुलिस स्टेशन के करीब 68 साल के 68-year-old श्री परमानंद उबिलक जो तम से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 1:30 बजे इनकी पत्नी श्रीमती सुजाता उबिलक के मकान ओट रॉयल मोटाई ब्लांश से उठाकर दाह संस्कार के लिए मोटाई ब्लांश के ही स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टू डेथ 1:30 PM। बॉडवाजो लाखोजा में 52 साल के 52-year-old श्री सुखिवेन दालिदू जो सेयोम से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 10 बजे इनकी पत्नी श्रीमती कंदन के रानी कंदन के मकान बॉडवाजो लाखोजा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्लेनमानियों की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुडे एट 10 AM। फ्लैट सी 13 NHDC कापमालेरे में 33 साल की 33-year-old श्रीमती कृति भुनमुन पैदाइशी नाम मोहन जो पूजा से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सुपहर 3 बजे इनकी माँ प्रतिमा मोहन के मकान फ्लैट सी 13 NHDC कापमालेरे से उठाकर दाह संस्कार के लिए पोएतो पीमाओं की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। ओट रॉयल बोबोआ सेंट पियर में 70 साल के 70-year-old श्री गिरधारी भट्टू जो भाई गोली से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सुबह 9:30 बजे इनकी पत्नी श्रीमती देवी भट्टू के मकान ओट रॉयल बोबोआ सेंट पियर से उठाकर दाह संस्कार के लिए सिया कॉन्स्टेंस सेंट पियर की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 9 AM। अविनी बंगाली सुदना काठरबोन में 76 साल के 76-year-old श्री विनोद जयकरण की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 1 बजे इनके मकान अविनी बंगाली सुदना काठरबोन से उठाकर दाह संस्कार के लिए गांधी पालमा की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। और ओट रॉयल पेचित रिवियर में 72 साल के 72-year-old श्री क्रिया शक्ति कुमार ध्रुपद राव भूकन श्री क्रिया शक्ति कुमार ध्रुपद राव भूकन जो कुमार से जाने जाते थे और मुसलमान बुसित थ्रोसिया क्यूपिप रहते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी जो है आज दिन के 2:30 बजे मुगा ओट रॉयल पेचित रिवियर से उठाकर दाह संस्कार के लिए बिगाहा की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टू डेथ 2 PM। शोकग्रस्त इन सभी परिवारों के प्रति हमारी दिली हमदर्दी है।
1: सभी सुनने वालों को अरविंद का प्यार भर नमस्कार। स्पोर्ट्स बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर मॉरिशस का नाम रोशन हुआ। किम्बर्ली लेको साइकिलिंग की हमारी महारानी ने कल टूर डे फ्रांस का 6th stage जीता। एक मैकेनिकल समस्या के बावजूद किम्बर्ली की जीत हुई। फिनिश लाइन से 15 किलोमीटर पहले किम्बर्ली को बाइक बदलना पड़ा, पर किम्बर्ली स्प्रिंट में जीत पाई। किम्बर्ली को बधाई। ग्लासगो के बाद फ्रांस

0: में भी मॉरिशस का झंडा सबसे ऊंचा। यूईएफए यूरोपा लीग के थर्ड क्वालिफाइंग राउंड के लिए कल बेनफिका ने 6-1 के भारी स्कोर पर हार्ट्स को हराया। अन्य मैचों में क्रब्स 1 काउवा 1, यागलिलोना ने 2-1 से रेंजर्स को हराया। मकाबी तेल अवीव 0 सीएसके 3, हादेक 0 बेसिकतास 1, लेचपोजन 1 की 0, रेड इम्स 1 ओमोनिया 1, साल्सबर्ग 1 पाफोस 0, पीएओके 0 अंडेलेक्ट 1, टून 3 विकिंगू 0। इंग्लैंड के लीग कप में ब्रिस्टल सिटी को हराया वॉल्सॉल ने 1-0 से। विनिसियस जूनियर रियल मैड्रिड में ही रहेगा, नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया वो भी 6 सालों का। विनिसियस जूनियर के जाने के की बात हो रही थी, आर्सेनल और पेरिस सेंट जर्मेन तैयार थे, पर विनिसियस जूनियर ने कहा कि रियल मैड्रिड में 8 सालों का सफर कम है, अतिरिक्त 6 सालों का कॉन्ट्रैक्ट फिर आजीवन रियल मैड्रिड का हो जाएगा। रियल मैड्रिड में विनिसियस जूनियर 128 गोल स्कोर कर पाया है, 2 चैंपियंस लीग टाइटल, 3 ला लीगा टाइटल और 1 कोपा डेल रे। विनिसियस जूनियर रियल मैड्रिड में ही रहेगा। मैनचेस्टर सिटी का गोलकीपर जेम्स ट्राफोर्ड 45 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग पर लीड्स यूनाइटेड में गया, एक ब्रिटिश गोलकीपर के लिए नया रिकॉर्ड ट्रांसफर है। इससे पहले 2017 में एवर्टन ने 30 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग पर पिकफोर्ड को पिक किया था। वैसे गोलकीपर ट्रांसफर रैंकिंग्स में जुड़ गया है केपा अरिज़ाबालेगा, 68 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग पर खरीदा गया था, और अलिसन 62 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग के करीब था। पेरिस सेंट जर्मेन से इब्राहिम एम्बाए को साइन करने के लिए लिवरपूल तैयार हैं, बातें काफ़ी आगे पहुंची हैं। एम्बाए पेरिस सेंट जर्मेन छोड़ना चाहता है और लिवरपूल उसे खरीदने के लिए तैयार है। अफ्रीका के सबसे महंगे खिलाड़ी का नाम है आइवरी कोस्ट का यान जियोमांडे, 120 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग पर रियल मैड्रिड ने उसे साइन किया। अफ्रीका में नंबर 1 और सबसे बड़ा ट्रांसफर नेमार, एम्बापे और ईसाक का है, चौथे स्थान पर जियोमांडे। क्रिकेट, भारत की टेस्ट टीम श्रीलंका में है, 2 टेस्ट मैच खेले जाएंगे, पर आज एक 2 मैच होगा श्रीलंका 11 के खिलाफ। मॉरिशस में क्षेत्रीय स्तर पर रीजनल फुटबॉल रोशनॉय स्पोर्ट्स क्लब टूर्नामेंट में इस वीकेंड 2 मैच खेले जाएंगे। शनिवार को सैटरडे को बोनाको की रेड स्टार का मुकाबला रेनबो गांबे से हुए, और रविवार संडे को एसोसिएशन रोशनॉय वर्सेस स्पोर्टिंग बॉयज रिवेजुआ पर, सभी मैच 3:30 बजे रोशनॉय फुटबॉल मैदान में। सो एक बार फिर हमारे हमवतन मॉरिशस की आन बान और शान किम्बर्ली को बधाई और सलाम। टू डे फ्रांस में एक स्टेज जीतना हर एक साइक्लिस्ट का सपना होता है, पिछले साल की तरह इस बार भी किम्बर्ली लेकुपियना ने मॉरिशस का नाम रोशन किया। जीत के बाद फ्रांस में बसे कई लोग उसे बधाई देने आए थे और आनू नो वहां पर सुना गया, किम को बधाई, गर्व है उस पर। नमस्कार, आप सभी लोगों को अरविंद की ओर से शुभ दिन।
1: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: सुबह का नजराना लाए खुशियां हजार, रेडियो मॉरिशस पर।

0: 5 मिनट हो चुके हैं। सुबह का नजराना कार्यक्रम में आप सभी का दिल से स्वागत करती हैं पूजा। श्रोताओं, कहा जाता है कि स्थिर मन वाला व्यक्ति सुख दुख लाभ हानि और जय पराजय में सम्मान ही रहता है। जो होना है वो होकर ही रहता है। इसीलिए कल की चिंता आप छोड़ दीजिए, बस आज में अपनी ज़िंदगी को आप सार्थक बनाएं, अच्छा बनाएं। आइए इसी शुभ विचार के साथ कार्यक्रम का आरंभ करते हैं चिंतन से। आइए इसे सुनते हैं श्रीमती डॉक्टर शांति मोहाबेर जी की प्रस्तुति में।
1: सदाचार और आत्मिक संतुलन का संगम चिंतन, जहां विचारों में मिठास और मन में शांति। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
2: जीवन की कठिनाइयां इंसान की सबसे सच्ची शिक्षक होती हैं, जो हर चुनौती का सामना धैर्य और हिम्मत से करता है, वह हर ठोकर से कुछ नया सीखता है। इसलिए चुनौतियों का जीवन में खुशी खुशी स्वागत कीजिए।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: जी हाँ, जिंदगी के अनमोल लम्हे जो है रेडियो मॉरिशस पर कुछ पुराने गीतों के बहार लेकर आई है पूजा आप सभी के नाम। और जो भी हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, आप सभी का हम स्वागत करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और कहा जाता है कि हमारे इंडियन सिनेमा ने हमें ऐसे ऐसे गीत दिए हैं और ऐसे गायक भी दिए हैं जिनके गीत आज भी उतने ही सुनहरे हैं, उतने भी प्यारे हैं, जो लोग आज भी सुनना पसंद भी करते हैं। तो चलिए, एक ऐसा गायक भी आया था जिसके गीत आज भी उतने ही सुनहरे हैं और आज भी लोग पसंद भी करते हैं। चलिए, तलत महमूद जी की आवाज़ में सुनते हैं ये प्यारा सा गीत आप सभी सुनने वालों के नाम। साथ दे रही हैं शैला जी गौन हव्या सुदेश से और गीता जी हैं पोफिया से। सूरज शर्मा सजादा जी थ्रियोले से साथ दे रहे हैं, आपका स्वागत है। मदालबिया से अनीता जी हैं।

इंडियन सिनेमा ने हमें केवल सुंदर सुंदर गीत ही नहीं दिए हैं, बल्कि उस समय की अभिनेत्री भी बहुत ही सुंदर थे और उनकी अदाकारी उतनी ही लाजवाब जितना कि आज। और कहा भी गया है कि आज भी लोग जब भी उनके गीत सुनते हैं तो उनकी अदाएं, उनकी जो अदाकारी थी, याद आते हैं। आइए, मुमताज एक ऐसी एक्ट्रेस उस समय आई थी जिनकी अदाएं और जिनकी खूबसूरती इतनी सुंदर थी कि उनकी आंखें की काजल, आंखों की काजल और उनकी जो भी अदाएं थी, लोग उनकी मिमिक्री भी करते थे। जिस प्रकार से देवानंद जी आए थे उस समय, जिस प्रकार से अदाएं और नटखट अदा थे उनके, वैसे ही अभिनेत्री भी उस समय अपनी अदाओं से सबके दिल जीत ही लेती थी। चलिए, मुमताज के सभी फैंस के लिए ये प्यारा सा गीत और फिल्म है दो रास्ते। और अभी जो है साथ दे रही हैं सुरागिनी जी, धनी जी हैं बुआ शेगी से और रुमन जी हैं ख्वायाओं से। और जो भी लोग अभी रास्ते पर हैं काम की ओर जा रहे हैं, उन सभी को कहेंगे बुंकुहार, सुनते रहिए, गुनगुनाते रहिए। ये है रेडियो मॉरिशस, आपका अपना, जहाँ पर कुछ पुराने गीतों की बाहर लेकर आई हैं पूजा।

भाई दिल ने दिल को पुकारा और हाँ बुलाए हम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मुमताज भारतीय सिनेमा की वह मुस्कान जिसने सिर्फ अभिनय से नहीं बल्कि अपनी सादगी, चुलबुले अंदाज और दिल छू लेने वाली अदाओं से करोड़ों दिलों पर राज किया, आज भी उनका

नाम सुनते ही सुनहरी दौर की खूबसूरत यादें ताजा हो जाती है ना। तो आइए अब हम बढ़ेंगे एक और सिंगर की तरफ जिसने ना केवल दिल जीता है बल्कि अपने गीतों के माध्यम से बहुत कुछ जीवन के सीख सिखाए हैं। आइए उनको सुनते हैं। बोल मेरी तकदीर में क्या है, मुकेश जी और लता जी की आवाजों में। तकदीर में जो लिखा है वही तो होगा, पर मेहनत भी आवश्यक है। साथ दे रहे हैं अंगिरा दुबलाल जी, बड़े प्यार से सुन रहे हैं हमें, आपका स्वागत है अंगिरा जी। बॉम्बू से लक्ष्मी जी हैं और उनके पूरे परिवार के साथ आपका हार्दिक स्वागत है। न्यू ग्रोव से मिला जी हैं, उनके सभी बच्चों के नाम

और जीवन के दो पहलू हैं सुख और दुख, और जो दूसरों के दुख को देखकर उसकी सहायता करता है उसी को इंसान कहते हैं। जो इंसान इंसान को समझता है वही इंसानियत है, यही तो प्रदीप जी ने कहा है। दूसरों का दुख दूर करने वाला तेरे दुख करेंगे राम ही दूर ही करेंगे। चलिए साथ दे रही है सुरागिनी जी, अमृता जी हैं।

भाई किसी ने सच्ची कहा है कि जिंदगी के सफर में सुख के साथी तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन मुश्किल समय में साथ निभाने वाले ही सच्चे अपने कहलाते हैं, वही फरिश्ते कहलाते हैं। इसी खूबसूरत एहसास को बयां करते हैं मुकेश जी की आवाज में, और यह अमर गीत, ये जो गीत है मोहम्मद रफ़ी जी के आवाज़ में गोपी फिल्म से, आइए इसे सुनते हैं। और कहते हैं ना कि जब आपके पास पैसे होते हैं, काम होते हैं, सुख हैं, तो सभी आपके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, पर जब आप दुख होते, आपके पास केवल आप ही हैं और दुख हैं, तो कोई भी साथ निभाने नहीं आते। कहते हैं ना कि ये संसार मतलबी है, अपने मतलब के लिए जीते हैं, पर जब आप अकेले हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है, जो साथ निभाने आता है वही सच्चा दोस्त कहलाता है। तो आइए मोहम्मद रफी जी की आवाज में इस गीत को हम सुनते हैं। फिल्म है गोपी और साथ निभा रही हैं अभी गायत्री जेनुवल फ्रांस से, शांता सुकारी जी हैं और साथ में हैं आरती जी त्रियोले से, कमला दिनू जी हैं मोताबा से। आइए ये गीत आप सभी सुनने वालों के नाम।

0: झलकियां
1: तो श्रोताओं, अभी आप सुबह का नजराना कार्यक्रम सुन रहे हैं और 8 बजे आप भोजपुरी में समाचार सुन पाएंगे। समाचारों के उस पार गर्मा गर्म नाश्ता कार्यक्रम और नाश्ते के बाद हमारी धरोहर कार्यक्रम लेकर आएगी प्यारी किरण जानकी जी। फिर आप सभी के नाम एक भोजपुरी गीत चलाएंगे। 9 बजे समाचार होंगे, समाचारों के उस पार आज की चर्चा कार्यक्रम, और 10 बजे समाचार फिर से आप सुन पाएंगे। 10:03 पर भक्ति धारा कार्यक्रम रोशनी द्वारा और ज्ञान चक्र, आप इस कार्यक्रम को सुन पाएंगे 10:10 पर। और 10:15 भक्ति धारा कार्यक्रम जारी रहेगा। 11 बजे फिर से समाचार होंगे, समाचारों के उस पार 11:03 पर शम्मे फरोजा सायदा के तरफ से। 12 बजे आप तेलुगु भाषा में कार्यक्रम सुन पाएंगे कृतिका द्वारा। तमिल भाषा में आरसी द्वारा दिन के 1 बजे कार्यक्रम होंगे। और आप रंगारंग कार्यक्रम सुन पाएंगे रत्ना द्वारा। गुजराती भाषा में 1:45 पर 2 बजे आप चाइनीज कार्यक्रम सुन पाएंगे होंग होंग के साथ। 2:30 आपकी पसंद लेकर आएगी सुमिता। और आप फिर से समाचार सुन पाएंगे दोपहर के 3 बजे। और आपकी पसंद कार्यक्रम जारी रहेगा 3:03 पर और 3:45 से लेकर शाम के 4:40 पर उर्दू कार्यक्रम अनवर के तरफ से आप सुन पाएंगे गीत गंगा, गीत और गज़ल, क्षमा कीजिए, गीत और गज़ल कार्यक्रम परविजा लेकर आएगी शाम के 5 बजे। और शाम के 6 बजे आप पूरा समाचार बुलेटिन सुन पाएंगे। शाम के 6:20 पर चंद फिल्मी गीत आप सभी के नाम। 6:30 आप चाइनीज कार्यक्रम सुन पाएंगे जिन के तरफ से। और रात के 7 बजे आप तमिल भाषा में कार्यक्रम सुन पाएंगे। 7:30 आप तेलुगु भाषा में विश्वा जी द्वारा आप कार्यक्रम सुन पाएंगे गीत गंगा कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे बापू मराठी भाषा में रात के 7:50 पर। और रात के 8 बजे भोजपुरी, रात के 8:10 पर भजले प्रभु का नाम रोशनी द्वारा इस भक्ति कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे रेडियो मॉरिशस के लहरों पर। और महफिलेश अब परवजा के तरफ से आप 8:40 पर सुन पाएंगे भोजपुरी तड़का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे रात के 9 बजे सुरेखा द्वारा। और 11 बजे आप सुनहरे पल कार्यक्रम सुन पाएंगे गिनिशा के साथ। और गिनिशा आपको ले जाएगी पुराने दौर के गीत। और 12 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक चंद प्यारे पुराने गीत आप सभी के नाम रेडियो मॉरिशस के लहरों पर।
0: रेडियो मॉरिशस,
2: रेडियो मॉरिशस,
0: झलकियां,
2: झलकियां।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: श्रोताओं, आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा एक विज्ञप्ति सुनिए। जरी मरम्मत कारों की वजह से लालोगा के रहने वाले निवासियों को खासतौर पर शिवाला रोड, लालोगा विलाज, रोजलिन कॉटेज, शुमे सैवियत, जोंदें और आसपास के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि शनिवार 8 अगस्त 2026 को सुबह के 8:30 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इस असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों से क्षमा प्रार्थी हैं। बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई को सामान्य रूप पर लाई जाएगी।
0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: चलिए अब हम बढ़ते हैं कुछ 90s के गीतों की ओर, जहाँ पर रोमांटिक गीतों का चलन था। मान लीजिए आपके लिए कोई ऐसा गीत गाए तो कैसे लगे आप सभी को। तो चलिए अभी जो है आशा जानू जी कुतेज से साथ निभा रही हैं और अपने पूरे परिवार के साथ, खास तौर पर उनके नेफ्यूज हैं शुभम, ऋषभ और दीदी हैं आरती, जीजू जी हैं राज और सभी जानू परिवार के नाम, और साथ में है उनकी मामा कुमारी। और साथ में है लक्ष्मण सी गोविंद, उनके पूरे परिवार जो क्लेफो वाकवा से हमें सुन रहे हैं, उन सभी के नाम। तो चलिए प्यारा सा गीत उदित नारायण जी की आवाज में, फिल्म है दर। कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक से ही हमें पता चल जाता है कि गीत कौन सा है ना। आइए आप सभी के नाम, जादू तेरी नजर।

0: सुबह का नजराना लाए खुशियां हजार, रेडियो मॉरिशस पर।
1: किरण तो नहीं पर साथ निभा रही है पूजा सुबह का नजराना कार्यक्रम में, और इसी के साथ हम इस कार्यक्रम के पहले भाग के अंत तक आ पहुँचे हैं, और साथ रहिए आप 8 बजे में भोजपुरी में समाचार सुन पाएंगे, और समाचारों के उस पार फिर से मिलेंगे गर्मा गर्म नाश्ता कार्यक्रम में। तब तक आप सभी को शुभ दिन, और मैं तो कहूँगी अभी करीब फिल्म से प्यारा सा गीत आप सभी सुनने वालों के नाम कुमार

सानू और संजीवानी की आवाज़ों में आइए इस गीत को हम सुनते हैं। कहते हैं कि रूठना मनाना भी एक अदा है और फिल्म है करीब, इसमें नजर आए थे बॉबी देओल। जी हाँ,

8 बजल बा पेश बा भोजपुरी समाचार। सबको के नमस्ते। शुरुआत ई निमन खबर संगे टुडे फ्रांस फार्म में मॉरिशस के साइक्लिस्ट किम ले को पियनो इगो और ऐतिहासिक उपलब्धि अपन नाम कर लग। मॉरिशस के चैंपियन काल मोब्रिजों से टूर शेरोन के बीच आयोजित छठा चरण जीत ले लग, जबकि ई दिन उनकर खातिर कईन गो चुनौती से भरल रहल। दौड़ के दौरान यांत्रिक खराबी आय के कारण उनका अपन साइकिल बदले के पड़ल। एक बावजूद उ शानदार वापसी कर

0: के मुख्य समूह के फिर से पकड़ लेलक, अग्रणी सवार के समूह तक पहुँचलक और अंत में स्प्रिंट फिनिश में जीत हासिल करलक। ई किमले कोपियनो खातिर गो और प्रतिष्ठित और यादगार विजय है। इस शानदार प्रदर्शन से पूरा देश के गौरव प्रदान करलन और एक बार फिर साइकिलिंग जगत में मॉरिशस के नाम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रोशन करलन। गणराज्य के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल संविधान की धारा 73 के तहत सांसद चेतन आनंद बाबूलाल के काल 6 अगस्त के विपक्ष नेता नियुक्त करलन। इस तत्काल प्रभाव से लागू होल। याद रहे कि बुधवार रात के फोमिलित फोगसी द्वारा चेतन बाबूलाल के विपक्ष नेता बनाए खातिर प्रस्ताव रखल गया रहा। इस बीच काल दोपहर में MSM के एकमात्र सांसद जोले जोंगा विपक्ष नेता पद से अपन इस्तीफा दे दिलन। दूसरी तरफ PMSD के आद्रियन जिवाल भी ओपोजिशन व्हिप और रिपब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिलन। रोज हिल के आजसू में काल सांसद वेरोनिक लेगोविन संगे पूछताछ करला के बाद उनका राजाय के अनुमति दे देवल गल। उनकर वकील शफिक चतुर बुलन की स्तर पर उनकर खिलाफ कोनो आरोप दर्ज नहीं कर लगल बा। उनकर से खास रूप से उनकर नाम पर पंजीकृत एगो वाहन के बारे में सवाल करल गल, जिकरा रीजन टापो और मॉरिशस के बीच कथित 155.7 किलो कैनाबिस के तस्करी से जुड़ल मामला की जांच के तहत जब्त करल गल बा। सेंट्रल वाटर अथॉरिटी देश के कई गो क्षेत्र में पानी की आपूर्ति के समय में बदलाव कर लेबा, कहे कि जल संसाधन की स्थिति अभी भी चुनौतीपूर्ण बनल बा। अब उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र में पानी की आपूर्ति फजीरे 4 बजे से 7 बजे तक और सांझ के 4 से 7 बजे तक करल जाए। दक्षिणी क्षेत्र में पानी की सप्लाई फजीर के 5 बजे से 8 बजे तक और सांझ के 5 बजे से 7 बजे तक करल जाए। पोर्ट लुइस में जलापूर्ति के समय फजीर के 4 बजे से 8 बजे और सांझ के 4 बजे से 8 बजे तक निर्धारित करल गल बा। इनवा प्रावधान के तहत प्रतिदिन पानी की आपूर्ति की अवधि में 2 घंटा के कटौती करल जाए। ये व्यवस्था आवत सूचना तक लागू रही। साथ ही 17 जून से प्लेनविलहेम स्मोका और विगिवेनवा के कुछ हिस्सा में लागू जलापूर्ति संबंधी प्रतिबंध अक्टेनियर जारी रही। लेसालिम में पाल गलसील अभी भी अधिकारी के निगरानी में वाते। बुध के कृषि उद्योग मंत्रालय के जूनियर मंत्री फाब्रिस दाविद घटनास्थल पर पहुँचलन। हालांकि उकरा होजा पहुँचे तक इस समुद्री जीव समुद्र तट छोड़ दिले रहल। उनकर अनुसार इस संभव है कि सील भोजन के तलाश या फिर आराम और स्वास्थ्य लाभ खातिर समुद्र और तट के बीच आवाजाही करता। फाब्रिस दाविद बतेलन कि उनकर मंत्रालय की टीम लगातार इस समुद्री जीव की निगरानी करता। यदि आय हुआ दिन में ई अभी भी उही क्षेत्र में पाल जाए तो अधिकारी ओकरा गहरा समुद्र तक सुरक्षित पहुँचाए पर विचार करियन जा, जिमें वो अपन प्राकृतिक आवास की ओर वापस लौटी सकी। दूसरे देश के समाचार में अमेरिका के न्यू मैक्सिको राज्य के उग अदालत गुरुवार के मेटा के लेखा की सुरक्षा से जुड़ल मामला में 767 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अतिरिक्त हर्जाना अदा करे के आदेश दिलक। अदालत के अनुसार कंपनी अपन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेखा के होई हुला संभावित खतरा के बारे में जनता के पर्याप्त चेतावनी नहीं दे लेबा। ई लेखा के सुरक्षा से जुड़ल मामला में मेटा के खिलाफ अब तक के सबसे बड़ा न्यायिक आदेश मानल जाबा। और ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रक्षा मंत्री पीट हेक्सेट से नाराजगी और हथियार के घटते भंडार के लिए के दोनों के बीच विवाद की खबर के पूरी तरह खारिज कर दिले हुए। व्हाइट हाउस भी ये रिपोर्ट की 100% फर्जी बता के बोलला कि ऐसन कोनो घटना नहीं हो बाती। एक संगे भोजपुरी समाचार समाप्त भेल। धन्यवाद।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV.

बिलर रोड नोवेल दी कुवैत में 58 बरिस के 53 तो के श्री वीर सिंह जवाहर, श्री वीर सिंह जवाहर जिनकरा लोग वीर सिंह से जानित रलन जा की मृत्यु हो गलबा। अर्थी आज दिन के 2 बजे इनकर बेटी नेहा बमा के मकान बिलर लेन नोवेल दी कुवैत से उठा के दाह संस्कार खातिर मेजिन का दिमास्क की स्मशान भूमि ले जल जाए। रॉयल रोड अमोगी में 86 बरिस के 88 के श्री बालकरण भरत जिनकरा लोग सितवा से जानत रलिंजा की मृत्यु हो गलबा। अर्थी आज दिन के 2:30 कर मकान रॉयल रोड अमोगी से उठा के दाह संस्कार खातिर लावाउचुए के शमशान भूमि ले जाल जाए। गुटवायार पेचित गिविया में 72 बरिस के 62 के श्री क्रिया शक्ति कुमार ध्रुपद राव भूकन जिनकरा लोग कुमार से जानत रलंजा और जिनकी अक्ति मोसल मो बुसित थोसिया क्यूपी प्रहत रलन की मृत्यु हो गल। अर्थी आज दिन की 2:30 मोहा साउथ फिनेरिया मोहा गुटवायाल पेचित रिविया से उठा के दाह संस्कार खातिर बिगाहा के शमशान भूमि ले जल जाए। अविनी बंगाली सुदना काठरबोन में 76 बरिस के 86 के श्री विनोद जोईकरण की मृत्यु हो गलबा। अर्थी आज दिन के 1 बजे कर मकान अविनी बंगाली सुदना काठरबोन से उठा के दाह संस्कार खातिर गांधी पालमा के शमशान भूमि ले जल जाए। गुटवायाल बोबुआ सैंपियर में 70 बरिस के 86 के श्री गिरधारी भट्टू जिनकरा लोग भाई गोलित से जानत रलंजा की मृत्यु हो गलबा। अर्थी आज फजीर के 9:00 कर पत्नी श्रीमती देवी भट्टू के मकान गुटवायाल बोबुआ सैंपियर से उठा के दाह संस्कार खातिर सिया कोंस्टांस सैं पियर के स्मशान भूमि ले जल जाए। फ्लैट C13 NHDC कप मालोरे में 33 बरिस के 33 के श्रीमती कृति भुनमुन पैराशिना मोहन जिनकरा लोग पूजा से जानत रलिंजा की मृत्यु हो गलबा। अर्थी आज सांझ के 3 बजे कर्मा प्रतिमा मोहन के मकान फ्लैट C13 NHDC कप मालोरे से उठा के दाह संस्कार खातिर पोइंटो पीमा के शमशान भूमि ले जल जाए। बोआडवाजो लागोजा में 52 बरिस के 70 के श्री सुक्रिवेन डालीडू जिनकरा लोग सेयोम से जानत रलिंजा की मृत्यु हो गलबा। अर्थी आज दिन के 10 बजे कर पत्नी श्रीमती रानी कंदन के मकान बोआडवाजो लागोजा से उठा के अंतिम संस्कार खातिर प्लान मानियों के शमशान भूमि ले जल जाए। गुटवायाल मोटाई ब्लाउंस में पुलिस स्टेशन के करीब 68 बरिस के 63 के श्री परमानंद उबिलक जिनकरा लोग टॉम से जानत रलंजा की मृत्यु हो गलबा। अर्थी आज दिन के 1:30 कर पत्नी श्रीमती सुजाता उबिलक के मकान गुटवायाल मोटाई ब्लाउंस से उठा के दाह संस्कार खातिर मोटाई ब्लाउंस के ही शमशान भूमि ले जल जाए। कोपरेटिव गली लाफ्लोरा में 58 बरिस के 53 के श्री देवराम बलिया जिनकरा लोग संजय से जानत रलिंजा की मृत्यु हो गलबा। अर्थी आज दिन के 12 बजे इनकर मकान कोपरेटिव गली लाफ्लोरा से उठा के दाह संस्कार खातिर मारिजानी रोजबेल की शमशान भूमि ले जल जाए। नंबर 73 अबाटवा गली खुशबुआ में 82 बरिस के 93 के श्री भेरिता प्रसाद बंसरोई जिनकरा लोग जयराज से जानत रलंजा की मृत्यु हो गलबा। अर्थी आज दिन के 2:00 कर बेटा अश्विन बंसराज के मकान नंबर 73 अबाटवा गली

छुआसी उठा के दाह संस्कार खातिर सिपाही बोईले के शमशान भूमि ले जाल जाए। बॉम्बे और प्रोविडेंस कौचे मिलिटेर में 24 बरिस के वेनकाथों के जनाब मोहम्मद शर्फी उल्ला सलमान जीतू जिनकरा लोग सलमान से जानत रलन जा इंतकाल कर गल हवन। जनाजा आज सांझ के 3 बजे जनाब फरीद जीतू के मकान बॉम्बे रोड प्रोविडेंस कौचे मिलिटेर से निकाल के दफनावे खातिर मेदिन कौडिमास्क के कब्रस्तान निजाल जाए। गुट वायाल एन एस फ्लोरों में 72 बरिस के स्वासंदूजों के श्रीमती निर्मला जदन पैदाइश नाम हरनूत जिनकरा लोग लता से जानत रलंजा के मृत्यु हो गलबा। अर्थी आज दिन के 2 बजे इनकर मकान गुट वायाल एन एस फ्लोरों से उठा के दाह संस्कार खातिर बोशों के शमशान भूमि ले जाल जाए। एफ 4 हाउसिंग स्टेट गोकुला में 64 बरिस के स्वासन काथों के श्रीमती अनुराधा जिबना पैदाइश नाम सीसरन जिनकरा लोग आशा से जानत रलंजा की मृत्यु हो गलबा। अर्थी आज दिन के 2 बजे इनकर पति श्री रोहित जिबना के मकान एफ 4 हाउसिंग एस्टेट गोखुला से उठा के दाह संस्कार खातिर लामिचे के शमशान भूमि ले जाल जाए। और ये ब्रेंच रोड लाल माटी में 50 बरिस के सैकौतों के श्री विनय जियाना जिनकरा लोग विकास से जानत रलंजा की मृत्यु हो गलवा। अर्थी आज दिन के 11:30 इनकर पत्नी श्रीमती लीना जियाना के मकान ब्रेंच रोड लाल माटी से उठा के दाह संस्कार खातिर गांधी रोड लाल माटी के शमशान भूमि ले जाल जाए। तो शोक में डुबल इस सब परिवार लोगन के प्रति हमने की गहरा सहानुभूति बातें।

0: गर्मा गर्म नाश्ता कार्यक्रम में आप सभी का दिल से स्वागत करती हैं पूजा। और अभी के लिए चलिए आप सभी के नाम कुछ प्रश्न, कुछ गर्मा गर्म नाश्ता और इस नाश्ते को तैयार किए हैं, और वो हैं नवीन लक्ष्मण जी। और बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे उनको कितना बढ़िया नाश्ता भेजने के लिए। और अभी जो है हम भरेंगे पहला जो प्रश्न की ओर, तो मैं आपको बताते चलूँ कि 4028085 पर आप भाग ले सकते हैं, या फिर 5251705 पर आप हमें मैसेज भी भेज सकते हैं। पहला सवाल कुछ इस प्रकार है, ध्यान से सुने। संसार में ऐसा कौन सा जूस जिसे कोई पी नहीं सकता? संसार में ऐसा कौन सा जूस जिसे कोई पी नहीं सकता? 4028085 पर। सुबह हो गई है, उठना तो चाहिए, नाश्ता तैयार है।
1: लीलावती हॉस्पिटल आ रहे लाओ, लीलावती हॉस्पिटल जा रहे लाओ, जे हॉस्पिटल आ रहे लाओ, मेरे बाप, अरे किधर किधर, अरे ब्रीच कैंडी, होल्ड मैन होल्ड, आई एम बिजी।

0: जी, व्हाट्स योर नेम? हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: मुन्ना भाई,
0: भाई लाइन कट भी गई, कोई बात नहीं, एक और श्रोता को हम लेते हैं लाइन पर। कौन है? हेलो हेलो।
2: हेलो आदाब,
0: आदाब जी, आपका शुभ नाम?
2: फैजा।
0: फैजा जी, आपका स्वागत है। और फैजा
2: शुक्रिया।
0: जी के पास क्या जवाब है?
2: जूस जो मनी ऑर्डर पे करते हैं।
0: नहीं फैजा जी, गलत जवाब है। फिर भी आपने कोशिश की, उसके लिए बहुत
2: ओके
0: बहुत
2: ओके,
0: धन्यवाद।
2: बाय
0: बाय।
2: बाय।
0: चलिए, लाइन पर कमला जी आ गई हैं। आपका ही फोन मैंने लिया, आपने काट दिया। हाँ जी कमला जी, आपका
2: सॉरी
0: स्वागत
2: सॉरी,
0: है।
2: बहुत इंतजार है ना। हाँ, नमस्ते आपको, आप सबको
0: नमस्ते।
2: गरम गरम नाश्ता की तैयारी की स्वागत है। और चाचाला चुमन जी को बहुत बहुत धन्यवाद जो इतनी सुंदर सुंदर प्रश्न खोट खोट के लाती हैं हमारे लिए।
0: हाँ,
2: हाँ, तो मेरा जवाब पता नहीं ठीक है या नहीं, शायद ये बिजली होगा, नहीं तो और क्या कैसे तेजाब।
0: नहीं, बिजली
2: सही
0: कैसे
2: बात है।
0: जूस
2: तो
0: है? बिजली तो जूस नहीं है। नहीं जी, गलत जवाब है।
2: ओके
0: कोई बात नहीं,
2: ओके,
0: भाग लेने के लिए
2: धन्यवाद
0: बहुत बहुत धन्यवाद कमला जी।
2: धन्यवाद, शुभ
0: धन्यवाद,
2: दिन,
0: आपको भी शुभ
2: धन्यवाद,
0: दिन।
2: शुभ।
0: बाय।
1: हर तरफ लव का माहौल होगा,
0: लव का तो माहौल नहीं है
1: ट्रोल
0: यहाँ पर, नाश्ता तो गर्मा गर्म है।
1: करो हमको, दुनिया जलेगी पर अपनी लाइफ मजे में चलेगी।
0: हेलो, नमस्ते।
3: हेलो, नमस्ते चेतन।
0: आपका स्वागत है। और आपके पास क्या जवाब है?
3: कंजूस।
0: कंजूस। और ये सही जवाब है। सही जवाब दिया है आपने, और उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो आपको, और
3: थैंक यू,
0: शुभ दिन।
3: सेम टू यू, बाय।
0: बाय बाय। कौन सा जूस है जो हर कोई नहीं पी सकता है? वो है कंजूस। और किसी ने व्हाट्सएप के माध्यम से भी सही जवाब दिया है, और उनको भी हम कहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्दी।
1: चलिए अपना ही चलाते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या है? 4028085 पर 4285 पर आपका इंतजार है।

0: मस्का
1: मस्का नहीं, यहाँ पर गोलमाल है।
0: नो टेंशन,
2: अरे बोला ना फिकर नॉट, नो टेंशन पप्पू।
3: दिन में 10-20 बाईपास।
1: हेलो
4: हेलो हेलो,
1: नमस्ते जी।
4: हाँ नमस्ते।
1: नमस्ते, आपका शुभ नाम?
4: शिवमद।
1: और आपका स्वागत है, और आपके पास क्या जवाब है?
4: प्रेम रोग।
1: प्रेम रोग नहीं, गलत जवाब। आपने भाग लिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको शुभ दिन।
4: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
1: अच्छा नमस्ते। अमृता जी आपका स्वागत है, नमस्ते। हेलो जी, नमस्ते।
5: नमस्ते,
1: आपका स्वागत है।
5: धन्यवाद आपको।
1: चलिए बताइए, आपके पास क्या जवाब है? दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या है?
5: दो है, एक है कैंसर, अब एक जावेद।
1: नहीं, ये भी गलत जवाब।

0: अमृता जी, कोई बात नहीं,
1: कोई बात नहीं, आपको धन्यवाद
0: धन्यवाद और शुभ दिन। गीता जी, आपका स्वागत है, नमस्ते।
2: दिल से प्यार भरा नमस्कार मेरी प्यारी प्यारी लेडी सी पूजा जी, कैसे हो जी?
0: मैं ठीक हूँ, अपनी लवली लवली आ गई है, लवली लवली मैं भी हो गई हूँ। चलिए बताइए आपके पास क्या जवाब?
2: मैं कोशिश कर रही हूँ, एंगर या जालूजी?
0: एंगर या जालूजी? नहीं, ये भी गलत जवाब है। कोई बात नहीं, आपको कहेंगे शुभ दिन, बाय।

0: चलिए एक आखिरी श्रोता जो है वो मैं लाइन पर लेती हूँ और चलिए देखते हैं कि उनके पास क्या जवाब। हेलो
1: हेलो,
0: नमस्ते जी।
1: नमस्ते, कैसी हैं आप?
0: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
1: मैं भी ठीक ठीक हूँ।
0: और आपका शुभ नाम? अच्छा,
1: मैं त्रियोले का राजकुमार बोल रहा हूँ।
0: त्रियोले का राजकुमार। चलिए, आपका स्वागत है
1: धन्यवाद
0: राजकुमार जी। और
1: धन्यवाद
0: आपके पास क्या जवाब?
1: जी। मेरा जवाब, मैं कोशिश करता हूँ, ये सबसे बड़ा रोग के क्या कहेंगे लोग।
0: क्या कहेंगे लोग? नहीं, ये भी गलत जवाब। कोई बात नहीं,
1: अफसोस।
0: और आपको कहेंगे शुभ दिन।
1: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, धन्यवाद।
1: बाय।
2: सेंसेक्स इंडेक्स ऑफ रोमांस एंड सक्सेस किस बिटवीन फ्री इकोनॉमी थर्ड वर्ल्ड कंट्री ऑन वैलेंटाइन डे विद पूरन मासी एंड आंद्रे अगासी।
0: चलिए मैं ही जो है जवाब दे देती हूँ। दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या है? और वो है शक, शंका। इसका कोई इलाज नहीं है। जो इंसान अपने दिमाग में कुछ ठान लेता है, शक पैदा कर लेता है, तो उसका कोई निवारण नहीं है, है ना? बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर, ध्यान से सुने।

0: वह क्या चीज है जब सारी दुनिया सोती है तो उसे आराम मिलती है? वह क्या चीज है जब सारी दुनिया सोती है उसे आराम मिलती है? भाई ये तो रोज का है, हमारे हाथों में हमेशा होता है। क्लू मैंने दे दिया आप सभी को, वह क्या चीज है जब सारी दुनिया सो जाती है उसे आराम मिलती है। आजमा लीजिए 4028085 पर। और बोल दिया। नमस्ते श्यामा जी।
1: नमस्ते,
0: कैसी हैं आप?
1: पूजा जी मैं स्वास्थ्य उतना ठीक नहीं है, बाहर बैठी थी तो कुछ सुना कुछ नहीं सुना। प्रश्न क्या था आपका?
0: जब सारी दुनिया सो जाती है तो उसे आराम मिलती है, वह क्या है?
1: जब सारी दुनिया सो जाती है तो क्या आराम मिलती है? वो नींद है।
0: नींद?
1: हाँ।
0: नहीं ये गलत जवाब है, कोई बात नहीं, आपने कोशिश की उसके लिए
1: धन्यवाद। सारी दुनिया सो जाती है ना,
0: हाँ हाँ,
1: तो जो हमारा दिमाग है वो तो सोता नहीं है ना।
0: हाँ हाँ नहीं, वो कौन सी चीज है? एक चीज है जब सारी दुनिया सोती है तो उसे आराम मिलती है, ये तो रोज का है हमारा, हमारे हाथों
1: पैसा
0: में
1: ही है।
0: नो, पैसा? नहीं, एक और
1: पता नहीं।
0: इसके बिना अब सारा दुनिया जो है नहीं रह सकता।
1: इसके बिना सारी दुनिया नहीं,
0: नहीं
1: रह
0: नहीं
1: सकती।
0: नहीं रह सकता जी।
1: तो कौन सी चीज है वो? चिंता?
0: नहीं, वो चीज है, चीज है हम इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं इसका।
1: तो मेरे ख्याल से तो पैसा ही है पूजा, जो जिसका इस्तेमाल होता है।
0: नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं श्यामा जी, आपको
1: बुद्धि
0: कहेंगे
1: है,
0: शुभ दिन।
1: बुद्धि हो सकती है बुद्धि।
0: नहीं नहीं,
1: कोई
0: तो कोई
1: बात
0: बात
1: नहीं, जवाब आप ही देना, हम सुनेंगे।
0: जी जी, चलिए आपको मैं
1: देती।
0: अच्छा, धन्यवाद, शुभ दिन
1: आपको।

0: और माला जी ने भी सही जवाब दिया है और वो है मोबाइल फोन। एक ऐसी चीज है जब हम सोते हैं तो उसका आराम मिलती है। चलिए एक और प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। इंसान के कदम से कदम मिलाकर चलने वाली चीज का नाम बताइए। इंसान के कदम से कदम मिलाकर चलने वाली चीज का नाम बताइए। 4028085 पर। इंसान के कदम से कदम मिलाकर चलने वाली चीज का नाम बताइए।
1: मुश्किल भी नहीं और ये आसान भी नहीं, नहीं, नहीं।
2: ओके, नहीं, नहीं, नहीं, मगर आगे क्या?
3: वजी उल कमरदा में हूला करीना। ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क, ये इश्क इश्क है, इश्क,
2: ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क, ये इश्क इश्क है, इश्क।
0: हेलो।
4: हेलो पूजा जी।
0: नमस्ते राधा जी।
4: नमस्कार,
0: आप कैसी? मैं ठीक हूँ।
4: और मैं भी अच्छी हूँ।
0: ठीक होना चाहिए। चलिए बताइए राधा जी, आपके पास क्या जवाब?
4: मेरे पास जवाब है रास्ता।
0: रास्ता?
4: रास्ता या चप्पल?
0: चप्पल नहीं, दोनों।
4: हमारी परछाई
0: या हमारी
4: परछाई?
0: परछाई। सही जवाब दिया आपने।
4: धन्यवाद।
0: परछाई ही है जो हमारे साथ साथ हाँ। चलता है, है ना?
4: हाँ हाँ, धन्यवाद। तो, शुभ दिन आपको।
0: शुभ दिन आपको भी। मैं बड़ी जोरों तोरों से यहाँ पर लोग जो हैं साथ निभा रहे हैं, सभी को मैं अवसर दूंगी। एक और प्रश्न है आप सभी के नाम, आइए सुनिए ध्यान से। क्या चीज है वह जो चलती ही रहती है मगर कभी भी उसे दर्द महसूस नहीं होता? क्या चीज है वह जो चलती ही रहती है मगर कभी भी उसे दर्द नहीं होता? 4028085 पर। महेंद्र जी आपका स्वागत है। नमस्ते।
5: नमस्ते। नमस्ते जी।
0: नमस्ते महेंद्र जी, कैसे हैं आप?
5: अच्छा है।
0: चलिए बताइए महेंद्र जी के पास क्या जवाब है?
5: परचाही बोलना था, परचाही
0: बोल दिया। किसी ने बोल दिया। चलिए अभी जो प्रश्न है कुछ इस प्रकार है कि वह क्या चीज है जो चलती ही रहती है मगर उसे दर्द महसूस नहीं होता?
5: सोचना पड़ेगा।
0: चलिए सोचिए, फिर से फोन कीजिए। चलिए नमस्ते और शुभ दिन आपको।
5: धन्यवाद, शुभ दिन
0: आपको भी। चलिए लाइन पर रूपा जी हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। हेलो।
6: नमस्ते, कैसे
0: हैं? मैं ठीक हूँ रूपा जी, कैसी हैं आप?
6: मैं ठीक हूँ।
0: और आपके पास क्या जवाब?
6: घड़ी।
0: घड़ी? नहीं नहीं नहीं, गलत जवाब। चलिए आपको कहेंगे शुभ दिन रूपा जी।
6: आपको भी शुभ दिन।
0: बाय
6: बाय।
0: एक और श्रोता है लाइन पर, आइए उनको सुनते हैं। हेलो।
7: हेलो, नमस्ते पूजा जी।
0: नमस्ते जी, कैसी हैं आप?
7: अच्छी हूँ, आप कैसे हो?
0: मैं भी ठीक हूँ। और आपका शुभ नाम?
7: मेरा नंदिनी निपुल हूँ।
0: नंदिनी जी आपका स्वागत है। और नंदिनी जी के पास क्या जवाब?
7: मेरा जवाब है आत्मा।
0: आत्मा?
7: हाँ।
0: नहीं, ये भी गलत जवाब है नंदिनी जी। कोई बात नहीं, आपको कहेंगे शुभ दिन।
7: धन्यवाद।
0: धन्यवाद आपको भी। चलिए मैं ही जवाब दे देती हूँ और वो है हमारा जीभ। जीभ जो है चलती रहती है मगर उसे दर्द महसूस नहीं होता। तो चलिए इसी के साथ हम गर्मा गर्म नाश्ता कार्यक्रम के अंत तक आ पहुंचे हैं।
8: गर्मा गर्म नाश्ता।

0: तो चलिए नवीन लक्ष्मण जी को तहे दिल से हम धन्यवाद कहेंगे इतने बढ़िया नाश्ता तैयार करने के लिए। और जिन जिन लोगों ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिए हैं उन सभी को कहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह सुबह दिमाग की कसरत भी हो गई। और इसी के साथ हम कार्यक्रम के अंत तक आ पहुँचे हैं। अब हम बढ़ेंगे हमारी धरोहर कार्यक्रम की ओर किरण जानकी जी की प्रस्तुति में। फिर आप सभी के नाम एक भोजपुरी गीत चलाएंगे। 9 बजे समाचार होंगे, समाचारों के उस पार आज की चर्चा कार्यक्रम। पूजा को अनुमति दीजिए मेरी ओर से। सभी को नमस्ते, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।
1: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर।
2: नमस्ते, हमारी धरोहर में आपके स्वागत बा। गलहला बात करत रही जा हैंडलूम साड़ी के। तो आज देखी जा कैसे हमने के देश में ई धरोहर के उतना ही सराहल जाला जितना कि भारत में। साड़ी हमने के एगो महत्वपूर्ण धरोहर है। 1834 से जब से हमने के पूर्वज लोग मॉरिशस आइलन जा, तब से मॉरिशस में साड़ी पहने की परंपरा कायम बा। और भारत के विभिन्न राज्य से आयल हमने के परदादी लोग के ई परंपरा, ई धरोहर आज भी कायम बा। और ई कायम रही काहे कि हर परंपरा में, हर हिंदी, हर हिंदू रीति रिवाज विधि में साड़ी आंचरा, सिर पर साड़ी के पहलू रखे के रिवाज चल ले आवता। और ये बहुत महत्वपूर्ण मानल जाला। भले ही साड़ी पहने के स्टाइल अलग बा और साड़ी के जो मटेरियल है ओकर में भी बहुत दिग्गत वेरिएशन बा, अलग अलग हवन सा। और हर एक साड़ी मटेरियल के अपन अपन एगो स्थान है, अपन अपन एगो विशेषता है। हर एगो मौका पर चुन के एगो विशेष साड़ी मटेरियल पहना जाला। भारत में हैंडलूम साड़ी एगो जाना माना राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय धरोहर है। मानल जाला कि 8वीं सदी से ये परंपरा कायम बा। राजस्थान, कर्नाटक और महाराष्ट्र के विशेषता है हैंडलूम के साड़ी। हैंडलूम साड़ी हाथ से बनावल जाला और भारत में हाथ के इस साड़ी के बुनाई और कढ़ाई पुराना जमाना आदिकाल से चल ले आवता। अलग अलग रंग, अलग अलग डिजाइन, सूर्य नारायण, तुलसी के पत्ता, पान के पत्ता, हाथी के पाँव जैसन परंपरागत डिजाइन हैंडलूम के विशेषता है। हैंडलूम के ये भी विशेषता है कि उस साड़ी के ब्लाउज भी संगे आवेला, ओकर में जुड़ल रहेला। दूसरा साड़ी में भले ही अलग मटेरियल के ब्लाउज पहन लेबा, लेकिन हैंडलूम साड़ी के ब्लाउज हैंडलूम के ही चाही। अब त अलग से खाली हैंडलूम के ब्लाउज भी कढ़ाई बुनाई ओकर होवेला और बाजार में उपलब्ध बा। साड़ी भारतीय औरत के सुंदरता ओकर पहचान से जुड़ल है। और जितना भी भारतीय डायस्पोरा देश बा, जैसे मॉरिशस उतर एगो बहुत ही बढ़िया उदाहरण है, हियाँ पर भी साड़ी के महत्व उतना ही है जितना कि भारत में। और सब डायस्पोरा देश में भी साड़ी के महत्व उतना ही बा जितना कि भारत में। भारत के पुराना मंदिर में जोन मूर्ति बा हुआ पर भी भारतीय पहनावा साड़ी के अलग अलग स्टाइल और डिजाइन बा। और हुआ भी देख बा कि साड़ी पहने के प्रथा और मैचिंग ब्लाउज पुराना समय से चल ले आवता। भारत में हैंडलूम उद्योग कृषि उद्योग के बाद सबसे बड़ा उद्योग है। एकदम परंपरागत, मजदूरी से भरपूर और गांव के इलाका से भारी संख्या में लोक कला गुण और ज्ञान से निपुण औरत लोग के भर्ती करल जाला। भारत के डिसेंट्रलाइज्ड उद्योग सेक्टर में हैंडलूम उद्योग के एगो महत्वपूर्ण स्थान है। चाहे आज कितने मॉडर्न साड़ी और साड़ी स्टाइल चला बा, फिर भी हैंडलूम साड़ी हर एगो औरत के अलमारी में जरूर

0: उर चाही रहे के और विशेष विधि में ई पहनल जाला। हैंडलूम के परंपरागत डिजाइन शुभ मानल जाला और आज भी भारतीय महिला एकर पर पूरा विश्वास करेला और कोनो भी खास मौका पर कितना भी पुराना हैंडलूम साड़ी पहनला वो कभी आउट ऑफ स्टाइल नहीं होवेला, वो कभी भी फैशन के पीछे नहीं छोड़ेला। कार्यक्रम के ध्यान से सुनला, बहुत धन्यवाद, नमस्ते।
1: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर।

अरे गुनी बुलाने से क्या होगा, जब देवता देवी आसन छोड़ दिया तो खीर पूरी चढ़ाने से क्या होगा। आ भर पेट जब भात खा लिया तो अब खुदी चुनने से क्या होगा, अरे गंदे पानी पीकर

अपने घर के कुत्ता जब काट दिया तो पुलिस को बताने से क्या होगा। अरे सफेद चादर में दाग लग गई तो अरे नदी में जाकर धोने से क्या होगा। जब घर की चौकट साफ किया नहीं तो आंगन झलकाने से क्या होगा। जब दूध से मुंह जल गई तो अरे माठा फूंक कर पीने से क्या होगा। जब दूध से मुंह जल गई तो अरे माठा फूंक कर पीने से

0: मिनट्स, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस,
1: नमस्कार। घर मिलाते चलिए, सुबह के 9 बजे हैं। देश विदेश के समाचारों के साथ स्टूडियो में आ गई हैं करुणा लालू। चलिए उनसे मिलते हैं, सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। नमस्कार करुणा।
2: नमस्कार वेदिता, सभी को नमस्कार। मॉरिशस की महिला साइक्लिस्ट किम ले कोपियनो ने टूर डे फ्रांस के 6वें चरण में शानदार जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया। दौड़ के समय यांत्रिक खराबी के कारण उन्हें अपनी साइकिल बदलनी पड़ी। फिर भी मॉरिशस की इस चैंपियन ने मोब्रिजों से टूनो शोन के बीच आयोजित 6ठा चरण जीत लिया। इस शानदार प्रदर्शन ने पूरे देश को गौरव प्रदान किया और एक बार फिर साइकिलिंग जगत में मॉरिशस का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया। गणराज्य के राष्ट्रपति

0: राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल ने संविधान की धारा 73 के तहत सांसद चेतन आनंद बाबूलाल को कल 6 अगस्त को विपक्ष नेता नियुक्त किया। ये तत्काल प्रभाव से लागू हुआ। याद रहे कि बुधवार को फॉर्मिलिटा फोकसिस द्वारा चेतन बाबूलाल को विपक्ष नेता बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। कल दोपहर MSM के एकमात्र सांसद जो लेजांगा ने विपक्ष नेता के पद से अपना इस्तीफा दे दिया, जिसे राष्ट्रपति ने स्वीकार किया। दूसरी ओर PMSD के आर्यन जुवाल ने भी ओपोजिशन व्हिप तथा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। ब्राज़ील के आत्सू में कल सांसद वेरोनिक लेगोविन के साथ पूछताछ करने के बाद उन्हें जाने की अनुमति दे दी गई। उनके वकील शफीक चतुर के अनुसार इस स्तर पर उनके खिलाफ कोई आरोप दर्ज नहीं किया गया है। उनसे विशेष रूप से उनके नाम पर पंजीकृत एक वाहन के बारे में सवाल किए गए, जिसे रीनियन टापू और मॉरिशस के बीच कथित 155.7 किलो कैनाबिस की तस्करी से जुड़े मामले की जांच के तहत जब्त किया गया। सेंट्रल वाटर अथॉरिटी ने देश के कई क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति के समय में बदलाव किया है, क्योंकि जल संसाधनों की स्थिति अभी भी चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। अब उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति सुबह 4 बजे से 7 बजे तक और शाम 4 बजे से 7 बजे तक की जाएगी। दक्षिणी क्षेत्र में पानी की सप्लाई सुबह 5 से 8 बजे तक तथा शाम 5 बजे से 7 बजे तक की जाएगी। पोटू में जलापूर्ति का समय सुबह 4 से 8 बजे और शाम 4 बजे से 8 बजे तक निर्धारित है। इन नए प्रावधानों के तहत प्रतिदिन पानी की आपूर्ति की अवधि में 2 घंटे की कटौती की गई है। ये व्यवस्था अधिसूचना तक लागू रहेगी। राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका के न्यू मैक्सिको राज्य की एक अदालत ने गुरुवार को मेटा को बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामले में 567 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अतिरिक्त हर्जाना अदा करने का आदेश दिया। ये बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामलों में मेटा के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा न्यायिक आदेश माना जा रहा है। और इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद। नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV.

0: आज की चर्चा।
1: सभी श्रोताओं को एक बार फिर विनीता की ओर से प्यार भरा नमस्कार। आज की चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हैं। जी हाँ श्रोताओं, आज शुक्रवार है और आपको पता है कि आज हम बात करेंगे उन कानूनी बातों के बारे में जिससे शायद आप नहीं जानते हैं, जिसके बारे में शायद आप बहुत सारे सवाल अपने मन में रखे हुए हैं। आज का वैसे हमारा शीर्षक है अडॉप्शन, किसी को गोद लेना, किसी बच्चे को गोद लेना। अब अडॉप्शन क्या होता है, कैसे होता है, कौन करता है, ये सब जानने के लिए चलिए हम स्वागत करते हैं आज के हमारे मेहमान का हमारे स्टूडियो में। वैसे मैं आपको बता दूं कि हमारा ये जो कार्यक्रम है MBC TV3 पर आप देख रहे हैं, साथ में इसका प्रसारण जो होगा इसको रिब्रॉडकास्ट किया जाएगा रेडियो मनोरंजन पर, जो होगा शाम के 3 बजे। अभी के लिए चलिए मिलते हैं हमारे आज के मेहमान से, और आप हैं हमारे वकील कपिल देव रघुवंदन जी। कपिल देव जी नमस्ते
2: जी,
1: कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत पा।
2: शुक्रिया।
1: तो आज के जो इन कार्यक्रम बायकर में हमने शीर्षक रख ले हैं जा अदुप्शो।
2: हाँ जी,
1: कैसे बोल जाएगा लड़का गोद लेवल जला हमने के अदुप्शो यही है एगो लड़का के गोद लेवे की।
2: हाँ, ओकर नमो है अदुप्शो गोद ले के हैं हमने की। देखिला सर बहुत सारीसो है एगो आदमी के गोद लेवेला एगो लड़का के। तीन कार जो हमने के सोसाइटी बा रहल आ तक बा दूसर देश से भी आवेलन सन, हमेशा एगो लड़का ही के अदुप्ते करे खोजेलन सन। बड़ा आदमी के भी देखब सा कैसे सगबा दुप्ते करे।
1: हाँ, सवाल आज हमने करब जा कि खाली लड़का जब होइला बोलीला जा अदुप्शो, तो अदुप्शोवा जो है पहला तो ओकर जो शब्द बा लादुप्शो गोद लेवे के, एकर मतलब कुछ है अपन नाम दे के, एगो घर दे के, ओकर जिम्मेदारी उठाए के, कौन ची आवेला ई अदुप्शो
2: वाले। अभी थारिल देखब सब पहला स्प्लिके करब सब कौन ची अदुप्शो में और ओकर रीजन काहे आदमी अदुप्ते करे, तब देखब सब तू कैसे बोलता काहे गो अदुप्ते करेला एगो आदमी। जब अदुप्ते करेला कैसे ओकर नाम मिलेला जोन आदमिया अदुप्ते कर ले ओकर नाम, बस ओकर बाप के दूसर नाम रहल कब अदुप्ते वेला सखी ओकर नाम सहजे करे या वही नमो सखी रखे, कैसे उ मेम के दूसर लड़का के जन्म ले ले बा जोन आदमिया के अदुप्ते करी, कैसे कैसे सब चीज धन दौलत सिक्सेशियों माटी घर सब में पैसा में कैसे एगो जेगचिए बनेला। एकरा ई सब देखब स मैं अभी के लिए
1: एकर पोसेजिया है एगो कैसे चलेला
2: देखब स ओकर पोसेजिया एगो आदमी के काल होई हमनी के भाई या बहन के मन हईक मजे एगो आदुप्ते करे के एगो लड़का कौन छी करे के चाहेला ओके कौन कौन पापिए चाहेला कहाँ जाए के चाहेला ओकर कौन डिमांड है ओकर एकरे नाम एगो पोसेजिया जोन आदुप्शो करल जाला।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: अभी के देखिला स कौन रीजन है अभी कौन मजे एगो है आदमी आदुप्ते करेला एगो लड़का के या एगो खूब आदुप्ते करे एगो लड़का के छोकड़ा हो या छोकड़ी हाले जोन एगो है एगो खूब है एगो है शादी कर ले वंसन बहुत बरिस से होल बा कोनो के दे 5, 6, 7 बरिस हो गल बा 10 बरिस हो गल बा देख बा उ ओके लड़का नहीं होता। अब मेम की देख बा अभी के लिए है बा हमने के सब कालिते मजे मोडर्न साइंटिफिक बा एगो आदमी के मन बा लड़का हो के कैसे मजे दे महसूस करे लन सन आके जाके बस ओके फर्टिलाइजेशन कम बोते हैं जाके वो देख बा वो आदमी ओके मजे को लड़का
1: आजकल IVF हुएला आजकल देर कुछ हुएला
2: हाली। तो हमने देखी

0: सा बहुत सी की कुमा जे बरिसन चल जाला एगो आदमी के कुमा जे लैका नहीं हुएला। लैका कुमा जे काहे ओकर बियोलॉजिक में आर ओकर लाज उ आदमिया आवांसे हो गल बा। बस एगो सेतन लाज हो जाला तो एगो आदमी के देखबा एगो सेतु गो मैडम के ओके लैकवा नहीं हुएला। बस के एक बार आदमी तो बोले ला कुमा जे पहले तो रहल एगो जमाना कैसे 50 बरिस हो गल एगो आदमी के ऊपर तो के मुश्किल हुए एगो लैका हो के। मैं अभी के बा कोनो के दबी एगो मिशे के भाई को बोले लनसन परी के कुमा जे कैसे सुसंता हो जाला। बोले ओकर कुमा जे सांस हो के बाद बड़ी जी विशील बा। कोनो के दे देखबा सुशांत सिंह में हमके दही ले कही देख लिया सुशांत जी सा के एगो मैडम ओ ओके लैका हो गल। आ मिसिल में हम देखते हैं से आदोपशो के आदोपशो में देखबा बियोलॉजिक में ओकर शरीर के लिए ओ मैडम नहीं सकेला कुमा जे एगो लैका पैदा करे। बस ये ओकर लाज आवांसे हो गल बा। अब हमने देखेला सर मालगवे ट्रीटमेंट बा मेजिकल ओ में भी आदमिया के कुमा जे कभी नहीं होवेला ओके कुमा जे नहीं कि कुमा जे गाँची है। हम एक बार थे मैडम के कुमा जे का बतिया लें सन इन्हें उन्हें कल आदोषों के विषय में तो बोली सकता कुमा जो अभी तो आजकल बहुत सा सक मान्य कुमा जे मिजिकाल स्वीप करे एगो लड़का हो के। बोले ना ये सही है कर ली भैया मिसिल में कुछ नहीं मिलता तो उसन आदमिया के ओके मन बा एगो लड़का आदोपते करे के। तो देखे लो हिया मेम की बियोलॉजी मेम के ओकर ट्रीटमेंट बा जो मेजिकाल वो सब बा देख हुआ ओके लड़का नहीं हुएला। मिशे और मैडम कौनसेव कंसीव जैसे हमने बोलिया सर नहीं होता हिंदी में ओके देखभा नहीं हुएला। पुते को पे फुल्ली कुमा जे लासते सब उब्लिमन से बा तो ऊ आदमिया के लड़का नहीं हुएला। जब लड़का नहीं हुएला तो उसे ओकरो इच्छा कोनो के तो देखब से देखर तारे घर बा धन बा दौलत बस ओके भगवान सभी चीज दे ले बा
1: छोड़ के जाके कर खातिर।
0: हाँ के कर खातिर ना सोचेला अरे ये मरी गो बिचारी देखब सब कैसे वो देखी है
1: और के नाम आगे बढ़ाए खातिर।
0: हाँ और दूसरा देखब का होला एगो आदोपते करेला एक बान आदमी ओकर लासते नहीं बा जो है जो आदमियों के आदोपते करता ओकर लासते एगो हो गल बा एगो या फिजिक में ए कैपेसिटी बा या ओकर शरीर कोरेक नहीं बा या ओकर खून उन बा या कोई माला दूध हो या कौन लासते हो फिजिक में मेजिकल में जैसे मैंने बोलिया सर ओकर लासते खातिर उ देखब स्त्रिया के लड़का नहीं सकेला हुई तो ओकर खमेस पूछेला अरे तब हम एगो ओकर सपना हो कब हम के कुमा जो ओके कुमा जे एगो लड़का हुई आर तो देखबा बहुत के जोन पोष बा परिवार में बा भाई बहन बा तो ऊ देखबा बहनिया के सी बुझो लड़का नहीं होता तो एगो लड़का बा ऊ भैया या बहनिया के दूसरा के
1: दे देवेला।
0: हाँ नहीं ओके का से ऐसन प्यार बतावेला ऊ लड़का या ऊ बतावेला ऐसन प्यार ओके रहेला लीमन से कौन देख लेवेला देखभाल करेला तो सोचेला ये लड़का के हम काहे नहीं आदोपते कर देला हमरे लैका कुमा जे हो बापस हमारे लैका नहीं बा।
1: हाँ।
0: देख ला मैं अभी देखब सो कर कौन सातमा कैसे आवेल है नहीं कि सकबत थोड़ा मन भाई लैका के आदोपते करे के आलो अनमन कुमा जे ऐसने आदोपते कर ले बा ओकर एगो पोसे जे वो अभी देखब सो तो हिया पहले रह इसे हैं देखब कुमा जे एगो है फूफू रही या एगो मौसी रही तो वो मौसी रही बोली मैं जाए का जी हम जाने मर तो लैका नहीं बा तुर तो लैका बा उतना तो लैका बा पाँच गो बा देखभाल नहीं तू सकबे करे सबे के काहे ना हम के एगो आ दे देवे थे हम आदोपते करे तो अब बोले कहानी लैका लोग मानी कि नहीं मानी बस गो लाज अभी देखब सभी तो हुआ अब लैका के कब होई मैं छोटा रही तो ऊ तो बोली नहीं जाने ले हमके बड़ी प्यार बतावेला हमके बड़ी मोहब्बत बा ओकर संगे हम खुशी रहती काल जे हम मर जाते तो ऊ लैकवा के मजा आ रहा ओकर नाम देखब सभी कैसे हो या? तो हिया देखब जोन ओकर परिवार में एगो लैका बा ऊ लैकवा के आदोपते करेला बस कि ओकर माँ बाप ओके पेमिशवा देवेला। जैसे हमने बोले ना कोनो बहुत बा एगो बहन
1: भाई बहन के बीच
0: भाई बहन में ओके देखा था वो आदोपते करता ओकर नेवे के या ओकर नियस के ओके मन
1: घर के लड़का घर में रही
0: घर के लड़का घर में रही तो हिया सोचल था टाइम में बड़ा हुई तो चल जाए बा फिर नहीं मैं अभी के लिए तो उ सोचा था कि ये हमर मजा घर के है खंबा है चाहेला एक दिन बड़ा हो हमके देखी आर हमने के देखी ना सर पहले के हमने के रहल दादा दादी दादा दादी के कुमा जे कोई नहीं बुरा हो गल वंशन तब बोले काहे न कुमा जे हई कभी हो जला ओकर कुमा जे माँ या बाप गुजर जला तब बोले जाओ अकेले कैसे जिए कोई का करी मैं तो कर माँ बाप के नमुआ में रहल ना और से तो कर बाप के नमुआ में रही तो हिया बोली नहीं देख तो नाम दूसर बा हमार नाम दूसर बा अभी तो हमार बेटी रहल सिपका रहल गुजर गल हम

0: दुपते कर देला हमर नाम में देला ओकर नाम में मतलब कर पति के नाम में अबाई तो देखला इहो हुएला जहाँ हमने की दादा दादी वो लोग भी आदुपते करेला एगो लड़का के जो पलिवर
1: हुए लेकिन कपिल देव जी एगो एगो सवाल बा अभी हमने बताया थी जैसे आगे के जमाने में लड़का के आदुपते करता था तो वो आदुपशो वो पापी वो नहीं हुआ था जैसे मान ला एगो घर में आगे तो धीरे धीरे लड़का होता है 10-12 का लड़का होता है तो मान ला जब कोई के लड़का नहीं बा 10-12 का लड़का बा और में से एगो लड़का जोन बा कोई संगे आबिची हो जाला तो संगे रहते रहते रहते दुलार करते करते करते लड़का चल जाला हुए रहे तब सबको जाने ला कि हाँ इतना हमने के लड़का है लेकिन फिर भी उ लड़का के छोटा से पोसले होवन कोई माने को कोनो दादी पोसले बा तो लड़का छोटा से जाने ला कि वो कर माँ है लेकिन लड़का हुए बड़ा होला ओकर नाम अलग रहेला सब कुछ अलग रहेला वो खाली हुआ जाने ला ओकर माँ है बाद में जब बड़ा हो के जाने लग जा कि जब लीगल जब देखीला जा हमने कानूनी तौर पर तब पता चलेला कि है लड़का जोन बा ओकर माँ बाप हुआ बा और उसके आदुपते भर ले बा कोई और तो आगे में इस सब आदुपशों के पापियो नहीं रहत हल उतना
0: तो जाने ला काहे हमने के कानून जिजवीच विच से बा आज से नहीं हमने के कुछ सिविल मोशियाँ जोन रखल तो हमने ला फ्रांसे को मजे हई अनले हई स ई देशवा में मैं आमेजिया कब आल बा सांसे होते गल बा तो प्लीटार आदुप्शों कब आल तो जाने ला एक बार आदमी जैसे रहल हमने के हई माँ पर हई रहल दादी या नानी सब रहल तो उतना लेकुल उल्लेकुल नहीं करल सन तो अपन कानून नहीं जान रहल सन खाऊ ले कोई की कौन दिमाग करे के चाहेला कौन लेफे है कौन ची करे अरे कैसे तो अभी प्रोग्राम तो ऐसे करत हई एक बार भाई बहन लोग नहीं जानत हुई कौन ची कैसे करे कौन प्रोसीजर है एगो को
1: शादी कर लेना घर में रहता तो बाद में पता चलल कि उकर असली माँ हमके हमके पता चलल कि हम जहाँ पर रहलन उकर माँ माँ माँ बोलत रहा बाद में पता चलल कि मती तो है चचवा के उकर उकर उकर जो चेहरा बा एगो दूसर दादी से मिलल जुलता था तब उकर बहिन सब कोई परिवार में तब बाद में पता चलल कि लड़का जोन रहल उ दूसर जना के रहल मैसलमा उकर नाम जोन बा उकर हवे नाम बा जोन माँ बाप दे लेबा और बाद में बहुत साल के बाद तब दादी वा जाके लीगल जो काम रहल अपन जितना घर ओकर नाम नहीं पर नाम में दिखला के नहीं कर घर द्वार ओकर नाम कर लन नाम ओकर होवे रहल जोन रहल मैं समा घर द्वार उनकर नाम कर लन लेकिन छोटा से उनकरे मामा ना तलन
0: हाँ ई खूब बोल रहा तो पहले कब नहीं रहते ओकर नाम में नहीं डाले खाली जाके कुमा जो सब चीज जोन रहल ओकर नमुआ में डाली कि कुम को आज के लड़कवा में मैं सिलमा हई मऊआ जो ना डूबते कर ले या दादी हो या कोई भी ओकर नाम जी फिर बा लड़कवा से
1: हाँ।
0: खाली ओकर रगल बा सिलमा हमने देखब से ओकर एप्लीकेशन कौन सी है कभी माफ करियो एगो आदमी के आदुपते करब तो कैसे ओकर हक दे के चाहे
1: अभी तो अलग बात अभी तो सब कुछ कागज से होला
0: ना यार अभी तो सिर्फ ये भी नहीं हमने के देख बा का हुआ था हमने के कानून अभी हमने के मिनिस्टर दे ला फार्म है एन एगालिते लालवा ना था है आदुपशो में नया नया चीज आवा था अली को बोली के वो भी है नहीं बा हमने दूसर प्रोग्राम में आपसे यही में बता सको लंबा प्रोग्राम है तब कैसे अभी के हमने के मिनिस्टर के है जुन बा अली पहला चीज अभी वो लड़का के तोरा मन बा आदुपते करे के कहां जाई बोले को के खोजे एगो चीज है मतलब खोजे के बोले का हमने के नहीं बा एगो हजिस अनमन की कुमा जे लिखल बा एगो जाने रे हई घरवा में आउतु ये एगो लालिस बा उ लइका के तो के मन होई अदुपते करे के हां हमने के बा शेल्टर हमने के बा क्रश तो कितना आदमी शेल्टर के लइका कुमा जे अदुपते करता और कितना कर कुमा जे कभी तो के देख लेन में एक बार आदमी तो बोले लइका क्रश में या शेल्टर में बहुत मत नहीं माफ करिए बोले मूवे नहीं अरबा तो नहीं जाके आदुपते करे खोजेला तो कैसे भी कानून नया आना था कौन कौन प्रोसीजर करे के चला कैसे आदुपशों सगब करे और कौन ओकर हक था जोन लड़का हुआ बा मैं हमने के लालिस आज तक नहीं बा आका तू एगो आदमी के ओकरे खोजे के एगो लड़का जोनों के मन बा आदुपते करे के फासिल नहीं है फासिल नहीं है कहाँ बा उ लइकुआ ओके जोन मन बा ओके आदुपते करे के
1: चाहना जाके लइकुआ के खोजे के कैसे खोजब चा
0: अरे कैसे खोजब एगो लइका
1: के एक जना के एगो लइका चाहला हो सकेला उ लइकुआ में कुछ चीज खोजता जैसे कि खोजता कि लइकुआ के जोन ओकर ओकर ओकर ओकर शक्ल सूरत बा ओ लोग से मिलल जुलल रही ऐसे ऐसे भी रहला ढेर कोई छोकड़ी खोजेला ढेर कोई छोकड़ा खोजेला तो ये सब ढेर कुछ है
0: हाँ नहीं यार जैसे हम तो बोलिए पहला चीज एगो लड़का खोजे के आदुपशे करे के फासिल नहीं है बस की पहला चीज यही हमने के कानून में है कहाँ बा लइकुआ यार एगो आदमी तो इसने खाली थे लड़का नहीं खोजे ना
1: तो हम तो

हाँ कहाँ वाले कुआ तो तब ना ओके आदुपते करी तो बड़ी मुश्किल होला। यही से देख तीन कार जो आदमी के मजा आदुपते करे वो लड़का अपने के परिवार में। मैं दूसरा चीज हम देख सपोगवा में आज नहीं कब एगो आदमी दूसर देश से बा दूसर देश से आके हिया आदुपते करत हो सन एगो लड़का जो मवेशिया बा।

0: लड़का लालिस्ता नहीं बाजे से तोरा बोली कि हियाँ जेंसन और खर्श के लड़का तो वो शायद रिलेक्टेंट हुई तनी नहीं हुकुमा जे मन हुई के खुदते रहला जी परिवार में एगो मिली तो ओकी तकुमा जे हई हई हुकुमा अद्युपते करी अभी दूसरा अद्युपियों के देखा खावेला हियाँ रहेला माँ हई माँ बाप शादी कर ले रहा सिबुजो मोरिशस में अब का हो गल एगो आ चल गल हई दूसर देश में या दोनों चल गल देश में वहाँ जाके एगो लड़का हो गल अब एगो लड़का हो गल अली को बोली कि बपोई मर गल अब सिबुजो अनंग लेती में वनसन माँ बाप रहल लड़का रहल बपुआ मर गल तो वो लड़कुआ की आदुप्ति करे के या रह के या देखभाल करे के या माफ करिए दोनों ही मर गल बपो मऊआ तो लड़कुआ तो वहाँ कहाँ जाई भागुवन माँ हुआ ओके कुमा जा उसने लिखा कि लेवे ला कुमा जा है ये ओकर लागौ दिखला खश में डाल दी है ने उन्हें डाल दी पर हुए ला तब एक बड़ा हुई सिबा कैसे हुई मैं एक बार बाहिया ओकर दादा दादी ओकर परिवार बोलिए जाने ले मर लड़का बेटा है पतु पत्नी रहल दोनों से बोझो हुआ मर गल अब एगो लड़का रहल हम के मन बा ऊ लड़कुआ के हियाँ से ओके आदुपते करे के ऊ जो हुआ से बोझो नंगले तेर में बा आदुप्शियों नहीं एगो चीज खाली हमने बोलते एक आदुपते कर ले या नहीं अब ओकन ओकर पोसे जिया कौन चीज कैसे चला कौन मेकानिज्म बोलता है बा कौन ओकर पोसे शिष्य बा ओके चाहे ला को मजे उ लैको के भय करे के आदुपते करे के यो एगो चीज फासिल नहीं है आलू तो दिखिला सर जब एगो आदमी आदुपते करेला एगो लड़का के ओकर अंतरिक्ष के ओकर खाए पिए के सोचेला एक दिन कब ऊ बड़ा हुई तब ऊ लड़कुआ ओके देखी ऊ लड़कुआ देखी ओके खाए पियाए के सब देखे के बस ओकर माँ नियर है माँ मेम की बियोलॉजिक माँ के मजे नहीं बा ओकर लड़का नहीं है मैं ऊ लड़कुआ के ई खातिन बोले अरे जाने ले एक दिन हम पर गई ली मलाद हो गई ली तो के हमके देखी तो ऊ लैकुआ के सोतले बा जोन के एलवे कर ले बा देखभाल कर ले बा खियाले बा लेकोल भेज ले बा सिबा बड़का आदमी बन गल बा पर बड़का बड़का देख गए होके तो ऊ लैकुआ ओके देखी मैं कोनो गांवची नहीं बा आजकल के लैको में देख बा ये सब नहीं मैं सोच ऐसा है कि मजे ऊ लैकुआ उदमिया के जोनों के आदोपते कर ले बा ऊ लैकुआ ओके देखी तो हियाँ देखे ला एगो मुआये है आदोप्शो करे के एगो लैका के एलवे करे के एगो लड़का के गोद में लेके ओकर देखे के चाहला अरे दूसरा नहीं देखे ला सर जो प्यार जैसे नहीं बस लामू उबा है के कुमा जे दोनों में मावा में बपुआ के भूल रही सर एक खूब तारे देखो मावा के लैकुआ के ओकर कुमा जे देखब कौन है बा है ओकर लामू जब ई देखब मावा अपन हौ लैकुआ के सेगे करेला ओकर गोद में जैसे हमने बोले गोद लेवे लन सर और अदुप्शन तो गोदवे है ओके कुमा जा कितना प्यार से अभी तुम्हें एगो है अपन एगो परिवार के एगो मैडम के सेगे करत हो ओकर से तो ओकर दिल से जोन बा ओकर प्यार जोन बा कुमा जे ओकर से लैकुआ के बतावत हो कि हे बेटा हमार तो बेटा ही नहीं हुए कुमा जे जन्म से मैं आज तू तुम्हार बेटा से ज्यादा हुए तो दिखला उस सीगे करी ओकर लैकुआ के इतना प्यार बताई इतना मोहब्बत बताई कि ऊ लैकुआ अपन एगो एगो लैका एगो माँ के ओकर है लामू देवता ओकर है प्यार देवता कितना ऊ मऊआ ओके खुशी हुई आर ऐसन प्यार जो ऊ मऊआ आर है लैकुआ में कभी नहीं भुलाई एगो आदमी सोची लिमन से तो उजुन ओके आदुपते कर ले बा अरे हमार माँ के तो बहुत लड़का रहल नहीं लोकाशन लग देखे के
1: गले लगाए के प्यार करे के
0: हाँ हाँ नहीं वाले बोलो तो हियाँ देखा करो का हुआ था मावा कितना प्यार मोहद्दे होता जहाँ जाता वो ओकरे हई करी तो हियाँ देख
1: लाड दुलार में से बजाय गो माँ के ममता जन रहे लाएगो लड़का आवेला था वो अपने आप वो छलक जाला
0: हाँ और दूसरा दिखेला सर का हुआ आदोपन सिर्फ परिवार ही में नहीं रहे कि ओकर लड़कुआ के लिए एक बार आदमी का करेला ओकर एगो लड़का दिखेला ओकर बाप आर माँ जैसे बोली से तेरे जो नेतांसे में बा वो गुजर गल बा अब कहाँ जाई ऊ लैकुआ अत जाने अभी के दुनिया में जो आदमी जीवत आ वो तो नहीं कोत ले खोजी कि अरे कहाँ हमारे तो लैका बा कहाँ हम जाके एक मजे आदुपते करब दूसर लैका के देखब मे बा जो उनके माँ बाप नहीं बा लैका नहीं बा ओकर परिवार में ऊ माँ बापुआ जाने ला ऊ लैकुआ के तो बोले नहीं हम ओके आदुपते कर दिल्ला काहे हमार लैका तो नहीं बा बस वो गोली मन परिवार से आवेला एगो देखे ये सब भी आवेला बोले देखेलन सन कौन कालती परिवार में कुमा जे उ लैकवा के जोन आदुप्ति कर ले वो ना विनीता नहीं सक बने को आदमी के आदुप्ति करे तो ई देखेला सा हमने बोला

0: पहला बात करत हली सत वर्षे अब एगो लैका आदुप्ति हो गल बा आदुप्शियों हो गल बा तो ओ लैकवा के नाम होवेला जोन आदमियों के आदुप्ते कर ले बा आदुप्त जैसे मने बोली
1: यानी कि मान ला हम कोई के आदुप्ति करत है गो लैका के तो लैकवा के कोनो नाम रही जब हम आदुप्ति कर ली तो लैकवा के जोन कर सियानो हा ओ बदल जाए लेकिन ओकर जो बर्थ सर्टिफिकेट बा ना जन्म पत्री ओकर में ओकर हवो नाम बा जे ओकर माँ बाप जो जन्म दिले बा
0: नहीं अभी पहला चीज एगो चीज जब हम देखब सर आदोप्शन के पोष जिया जे मैं रिपोर्ट कर दिला सर अभी एगो कुमा जे है अरे हम एगो लैका के कुमा जे आदोप्ते करत हई लैका तो हमर नहीं है ना मैं उ दूसर नाम में पैदा हो रहा ओकर कुमा जे आग देने सांस दूसर नाम में बा जब हम पोष जिया कर लियो के आदोप्ते करे के तो ओके दुआ मिले के हमर नाम सिर भी करे के अब सकी रघुनंदन के हो जाए सुबह सुमा जो राम खेलावन के लैका रहल अब हम आदुप्ते करत हैं ओके तो उ तो है होदा अब रघुनंदन बन गल बा सब अब हुआ लेता सिविल सब बा देखब सब पोषे जो में तो कैसे सोजे करेला ओकर कुमा जे ओकर नम हुआ तब उ लैका देख ला अब आज से हमर लैके ही अन बियोलॉजी नहीं हमरे लैका नियर सब कोई जानी कोई पूछे ना ओके एक दिन नहीं जानी तो उकमा जा दुपशे होल बा तो के पूछी तोर नाम कौन छे तू तो बोलबे करी रघुनंदन बोली हाँ तोर बापुआ के जानी रहु एंथिल रह रघुनंदन तू तो नहीं बोली नमर आदुपते कर ली रे मर वो कहाँ कहाँ नहीं हमें जाए तो कर नाम मिली वो जो है लैकवा के जो आदुप्त रहल हाली तो हमने देखी ना सर जब वो लैकवा आदुपते हो गल बा नमुआ तो हो गल बा हमर नमुआ में अब सब चीज जोन बा हमर मेन की यार लैका बा हमर है एगो बोली के अकेले रही तो धन दौलत के विषय में आवत है
1: अच्छा
0: ओके देख बा सब चीज जोन हमर रखल
1: लैकवा के हुई
0: लैकवा हुई घर हुई जमीन हुई पैसा हुई एक दिन मरियो गईली तला बैंक में जो पैसा हुई तो ओकरे ही हुई बस कुत्ता नमुआ हमर नाम में कुमा जे देखला रे हो गलबा सब हो गलबा और जब उ कुमा जे हाई हो गलबा उ पसी उसे विचे हो जाला हमारे को जीविचे दला पसी हमार नाम में बा मेम की हमार दस गो लैका बा और ओके हम आदुप्ते कर लें जब हमार नमुआ ले ले ले बा तो उ एगो जीविचे होला हमार अभी तारेल देखब सकर बपो बगल से मिली का हुई जहाँ से आलबा बियोलॉजी के यहाँ देख ला ओके लैकवा के ओकर सांस हो गल पैसा कुछ मिले के एगिचे बने के हमर तेगो लैका का बात उठे कर देव तो तोहर जिगिचे बन जाए मेम की तोहर ई लैका नहीं है आलू तो ई देखिला सर लैक माँ बाप जो ना दुपते करेला गो लैका वो ज्यादा नहीं सोचेला ओकर जमीन बा के देव सिपा हा,
1: हा, हा।
0: ये सब नहीं ना। सोचेला एक गो चीज अरे ये लैकवा कब बड़ा हो
1: हम के देखी
0: हम है बोल देला तू
1: हमका ख्याल रखी हम के देखी काल के हम के जरूरत पड़ी
0: हां वो रेत रेते हुई मतलब मा जो लाज हो जाए अभी तो लाज के लिए एक मजे रेत रेते तो नहीं बा पहले तो रहल सो सोता पेंशन मिले अभी तक मैं सब नहीं में रेत रेते तक मा जे आदमी काम करते बा तब लेक जीते ही बा आले तो देख ले हिया उ सोचेला कब एक दिन कमुआ छोड़ उड़ दे तो उ लैकवा ओके देखभाल करी ओके खाई पियाई के देखी काले गो बोली के कुमा जे लुपिताल जाए के चाहें या कहूँ जाए के चाहें दुखतेर के देखे देखभाल करे के कोनो तो होम में डाल दे एगो है बा कोई ओके देखे के और ओकर लासते के या कुछ के यही सबसे बड़ा चीज कब एगो आदमी देखेला कब आदुप्ते करेला एगो लैका नहीं सोचला कि अरे हमारे धन दौलत बा ओके मिली नहीं कि एक दिन काजनी हम मजे मलाद गिर गईली कोई नहीं रही आजकल तो के तोरा देखा था मलाद
1: नहीं वैसे गया। जब कोई आदुपते वो करेला हाँ। तो उनका यहाँ इतना कुछ रहेला सोचल हम काल पर से मर जब सा कोई नहीं बा देखे के कोई हाँ। नहीं बा कोई के नाम करे के देखर से तो अच्छा भाई को लैका आदुप्ते कर लियो अब सा लैकवा हमने के नाम से चली हमने के नाम भी चली और जितना कुछ बा लैकवा के हो जाए
0: और देखभाल करी हमने के
1: बिल्कुल
0: दिखला दिखला आदुप्शों के एक मजा है एक मतलब का हुए रहो कर उकर मजा लोबजे ऑब्जेक्ट कौन सी है एगो आदमी
1: अभी अभी ये बतिया आप जाके एगो लैका के कौन लाज से कौन लाज है आदुप्ते करके ही बात
0: नहीं कौन थी नहीं अभी आप सभी
1: अच्छा
0: जैसे हमें कि भाई सुनत हुई तभी जानते काहे पहला एगो लैका है करा अब दिखिला सब बात कर ली सा ये सब कौन रीजन है एगो आदमी आदुप्ते करेला एगो लैका के मैं कितना खा लीते आदुप्शों बा ये जाने
1: आदुप्शों में
0: भी देखिला सा कितना खा लीते आदुप्शों बा

0: एक आदमी खाली अदूप ते कर दिलक था तो ओके से पूछी भी कौन करती है अदूप शो कर ले बोले नहीं नहीं जानी ला हम हम तो क्या अदूप ते कर लें खाली जानी ला हमें हम माँ बाप सिपाया कहूँ से सीख ले बात अदूप ते गुड ले ले हुए पहला एगो बोली ला सा अदुप्शों सैप जिसे तरलवा बोल रहा कि ई जाने ला मजा माँ बाप पहले के मजा अदुप्ते करते ले गुजाफे अदुप्ते मैं भी सिल यहाँ नहीं फिनी बना है मैं एगो अदुप्ते अदुप्शों सैप बा दूसरा बा एगो अदुप्शों प्लेनियर प्लेनियर वो भी देखा से एक्सप्लिके कर अब सही फ्रांसे के है हमने की तो कुछ सिविल फ्रांसे ही है जो मन हुई तुरा देखे के तो खाली अभी हमने के वो चीज़ बा, बा हमने के एगो लीव है नहीं बा हमने के कुछ सिविल बा मैं एगो लीव नहीं बा जो कोई आ वो का हो या कोई भी हो आ वो लिख ले बा हमने के दुआ सिविल मोशन नहीं बा खातिन में सेलमा तोरा खाली कुछ सिविल देखे के चला मैं उनमें तो नहीं स्प्लीके करेला सब आँचे होकर पोसे जो तक आ वो सब करेला तो हिया देख लग अदोप्शन सैम बा अदोप्शन प्लेनियर बा आज लेजिटिमेशन प अदोप्शन कैसे एगो आदमी अभी जैसे हो लैकवा के हम ले ले ली तो हमार लैका नहीं हो गल लेजिटिम हमार लैका अभी देख अभी तीन गो ऊपर ऊपर बतैली सब हमने अब स्प्लीके करब सब पहला शुरू करेला सर एगो अदोप्शन जो सैप अदोप्शन सैप ये बड़ी कुआं है मॉरिशस में तीन कार भाई बहन जे लड़का गोद में ले हुए खोजा था तो वो था करी एगो अदोप्शन सैप में बा कौनजिशों कौनज कौनजी चाहेला एगो अदोप्शन सैप में ये अब पहला दिक्कत है सर अदोप्शन ये तेरे लोग हम के वो केशों पुतल है हाँ। कौन लाल साही कई ना उकर भरी
1: हाँ एगो लड़का के जब बोले से लड़का के अदुप्ति कर ले वंचा तो हाँ। लड़का के लाल कितना ले सकी रहे बस कि एगो एगो लड़का जब 18 बरिस के हो गल तब तमाशे हो गल ना
0: हाँ तमाशे की भी सकबा अदुप्ति करी है
1: हाँ तो वही तो बोले थे तो एगो लड़का जब अदुप्ति कर पा तो कितना बरिस के लड़का चखना रहे के
0: पहला चीज एगो अदोप्शन जब एगो आदमी मांगी हम मांगत हैं हौ लैकवा के अदुप्ते करे के सिपोजो तो चाहेला हर आदमी जोन अदुप्ते करे खोजता एगो लैका के ओके चाहेला थ्रांता नहीं रहिया कैसे हमके थ्रांता बा तब सकब हम एगो लैका के अदुप्ते करे मैं सिपोजो हमार बा 25 ans सिपा मुएस हुए हो 30 के तब हम नहीं सकब मैं बाय एक्सेप्शन अभी देख सकून हा मिस हर आदमी के जेनेरल में जो अदुप्ति करे खोजता तो के चाहला थौता अब 30 बरिस के होई तो चलो वो सकी एगो क्वालिफिकेशन फुलफिल करी रिक्वायरमेंट हुआ
1: यानी कि 30 बरिस होगा तो सकबा को लेकर के अदुप्ति करे
0: हाँ आलू मैं ई लाजुआ थौता लि नहीं एग्जिजे है नहीं नेसेसर चाहे जब देखब वो आदमिया जो मांग करता हो अदुप्ते करे के लैकवा पति पत्नी नियर रहत वंशन संगी पति पत्नी से बुझो हम
1: ये कपल
0: है वो कपल जो वंशन मेरे लड़का तो नहीं हुआ था ना जब वो कुमा जे मांग करे खो जाता तो नहीं नेसेसर बाव के तीसे बरिस होई के तब वो लैकवा के मांग करे के
1: सखी को लैका अदुप्ते करे
0: सब की
1: एगो लैक पत्नी काम करता संगे हवन स घर द्वार बा सब कुछ बा सखियन जे को लैका के रिस्पांसिबिलिटी ले त सखियन छ लैकवा के अदुप्ते करे
0: जोली ह ओकरे नाम नो सेपरेशन दु को सब ये पति पत्नी नियर संगे वंशन त उ देख उसकी मेम की 30 ans नहीं होल बाऊ के उसकी कुमा जे मोस की 30 ans अदुप्ते करे उ लैकवा के खाली एगो खूब जो शादी कर ले बा ओके चाहेला मिनिमम पति पत्नी नियर कब शादी कर ले हवन सन कुपवा जो अदुप्ते करता के 15 ans दे मोयास 15 बरिस चाहेला
1: हो जाए के
0: रहे के उ लैकवा से ज्यादा जो शादी कर ले बात ऐसे बोली सर कुमार यहाँ शादी कर ले वंशन कुमार जी को खूब शादी कर ले वंशन
1: 15 बरिस होगल बा लेका नहीं होल बा
0: हाँ हाँ नहीं होल बा तब उस सकी 15 बरिस की शादी के कुमार जी होवल उ लैकवा के अदुप्ते करे पहले तो बोली सर 30 ans ना जब भाई कुमार रहल तो उ हिया एगो खूब वंशन शादी कर ले वंशन एगो लैका के 8

0: दिए में मजपन रस बरिस हो गल उ लोग के लड़का नहीं होल। हाँ सखियन सन अब कुमा जया एगो लड़का खोजे ओके कुमा जया आदुपते करे के एगो चीज बड़ी है जब ओके मन हो प्रोपोजे करे के। मैं देखा कानून कितना ओका डिफरेंस मैं ये लाज के डिफरेंस हुआ रेजुए हो जाला।
1: अच्छा
0: सब आर रेजुए करे तांतों से कैंजों से अब दस बरिस से।
1: अच्छा यानी हाँ। एगो एगो एगो, एगो कुप जेकर शादी के दस बरिस हो गल बाल लड़का हाँ। नहीं बाद उपते सकी करे।
0: हाँ अब लड़कमा जे ओ अदमिया जो उके मन बाई करे के डिफरेंस हुआ लजुआ में सके पहला तो दिखले सब शादी कर ले हवन सन तो पंद्रह बरिस के कुमा जे चाहला हो जाए सदिया रहे के मैं सके ये डिफरेंस हुआ लजुआ में रेजुए करे दस बरिसे तक जे ये एगो लड़कुआ जो आदोपते हुआ था वो या एगो पति के हो या पत्नी आके अरे फिर से बोली ना पति पत्नी तो शादी कर ले हो अंसन
1: हाँ।
0: मैं एगो उ लोग के अपन लड़कवा नहीं होल बा
1: हाँ।
0: मैं कभी हो जाला या मैं सेवा शादी कर ले लागे
1: हाँ।
0: या कुमा जो है मदमुआ शादी कर ले रहल
1: ओकर लड़का
0: एगो लड़का बा नमुआ तो नहीं बना मैं सेवा के नमुआ में लड़कुआ अब उ लड़कुआ जाए कहाँ अब तो यहाँ तो शादी कर ले मदमुआ से बुझो तो उ लड़कुआ तक मजे नहीं अब ओके मन बा आदुपते करे के उ लड़कुआ के पसी लड़कुआ के काली कब ने हो रहल तो ओकर नाम से बुझो माँ के नाम में बा या बाप के नाम में बा अब ओके मन बा गोद ले के उ लड़कुआ के बपुआ बस बोले अरे कुमा जे के कर यहाँ हमरो तो नहीं हो तो से तो लड़का नहीं होल मैं हूँ तो शादी कर ले रहे एगो लड़का हो गल बा दूसर में सेवा से तो उ लड़कुआ के कुमा जे अब तक तोरे नाम में रही मैं सलमान नाम मामजेल में रहल ना अब तो हमारे से शादी करके था तू तो हई मिशे के नाम हो गल तोर
1: और सकी लड़कुआ क्या आदुपते करी
0: आदुपते करी मिशेवा ओके हौ लड़कुआ के जोन मदमुआ के हो रहल मेम की जीजा मजुआ जीजा के मजे रहल तो ये देख ला बड़ी बड़ी मजे हई आदुपसों के ओकर लाज मजे तो हमारे से पुटले रहल कौन सी था कैजा जीजा होवल बा हालूस हमने देखिला सर आ सकेला जहाँ ओकेर कुमा जे ओकर कुमा जे लड़कुआ बा मिसेलम ऊ कब कुमा जे है ओके कुमा जे आदुपते करता तो मिसेवा ओके कुमा जे चाहे ओकर कुसंतमा दे के कि ऊ लड़कुआ के आदुपते करी नहीं एक्सेप्ट हुई कुसंतमा नहीं दे तो कुसंतमा में तो नहीं बा पसी काहे सके मदमुआ जो नौकर संगे रहता ओकर पत्नी से बोले ना तो गे और फिर सोचत हुई मोवे चीज में शिवा के कि नहीं हम नहीं चाहते हमारे लड़का तू आदुपते करके तोर नाम में डाले एक बान बा ये है एक बान भी है बा हमने के किस तक है लाकोड में तो हाँ से हमने सीखिला सर ऐसने न जोन जोन का आवेला लकुरुआ में तो यहाँ देख हई बपुआ ओकरो कुसंतमा दे के चला मदमो के दे के चला ओकर कुसंतमा कि हाँ ओके हम के ओके भिक्षु नहीं बा तू हमारे लड़कुआ के आदुपते कर रहे तू हम में हमर नाम दे तो हलो हमने बोली ला सर आदोपसों करे के हाउ जोन बुगुआ के आदुप्त एगो आदमी के जोन एगो लड़का के आदुपते करता कोनो लाज रही हो लाज नहीं देखल जाला आदुप्त के समझला लड़कुआ के लजुआ में डिफरेंस हुआ देखी ला सर कैसे आवेला हम पंद्रह बरिस दस बरिस आवेला एगो चीज बड़ी है एपोत हम अब जे लड़कुआ एगो बोली के सब आदुपते करे एगो लड़का के बता रहे कितना लाज तक मैं ऊ लड़कुआ जोन बा आदुपते करे खोजत हो ऊ चाहे ओके पंद्रह बरिस बा
1: लड़कुआ के
0: हाँ सिबूसो पंद्रह बरिस बा या ज्यादा बा एगो बोली के
1: अच्छा।
0: अरे पति पत्नी हवन सन अब देखलन सन एगो है अरे कहाँ दूर जाब सर एग्जाम दे रहा सर जब बोलब तू जन बतू मिशे मैडम शादी कर ला
1: हाँ।
0: तो काहुल एगो लड़का ओकर संगे जिलन सन पसी नहीं रहल लड़का मिशे मैडम के लड़का नहीं हुए
1: हाँ।
0: एगो लड़का जो ओकर बहन के रहल
1: हाँ।
0: उ लड़कवा से उमाजा गोद में ले लेलक अभी कुछ नहीं कर ले वन सन है कुमाजा खाली ओकर संगे जियता खाता पियता ये दोनों देवता कुमाजा खाई पियाई के तो उ लड़कुआ बा न मजे हई संगे जीते होल बा बड़ा होलते बा ओकर से
1: ओकर लिए ओकर माँ बाप एलोगे हो मन
0: ओकर लिए मा मिसलमा कब देखला रे हो रल पपीवा में ता लाग देने सांस में
1: ओकर माँ के माँ बाप के
0: बा का अब का होल पतिया मर गल पतिया

0: रगल सोचत हुई अरे मवा माजे जोन पत्निया तो रगल बा और लैकवा बोत हुई ए माँ आज तक कुमा जो हमके आदुप्ति नहीं कर ले हुए तुर नाम में तो नहीं है खाली नाम के तू कुमा जे है हुए मैं हमर लाज जाता दिन दिन तक जाता 15 बरिस से ज्यादा है एगो 20 बरिस हुई वैसाइका हुई एगो बोली के तो ऐसा कवा में मवा अब ओके मनबा आदुप्ति करे के हौ लैकवा के तो नहीं ने से शेर कभी भूलिया सा कि खाली एगो लैकुए के सक बतवा दुपते करे मेम क्यों कर लाई का के 15 बरिस के ऊपर बा उस सक बा आदुपते करे उ लैकुआ के मिसिलमा उ लैकुआ के ओके चाहे ला ओकर कंसेंटमेंट दे के कि एक्सेप्टे बा या नहीं एक्सेप्टे बा कि ई मामा से जोन कुमा जा बड़ा होल बा खियाई ले पिए ले बा ले कुल भेज ले बा ओक एक्सेप्टे कुमा जा संगे रहल बा या कुछ बा नहीं सके कुमा जय ओके कुमा जय हई करे आ दुपते करे ये देख ल हाली ये देख ले ली सर कुसंत मामा में बा हमने के जीज ये सब लजुआ में देखे के 15 बरिसवा के ऊकर कुसंत मामा दे के मैं सकी उजीज कभी को किस सुने ला लैतेरे ऊ लैकुआ के सकी रेजुए कर दे 15 जवा से ऊपर का नीचे ओके बाऊ पची देखा था मामा बपुआ दिखले बा खूब कुमा जा ओकरे से बड़ा होल बा आलू के कहाँ अभी पंगार ही मर जाए मामा
1: हाँ
0: तो का हुई तो सोची एगो किस कब कर ले बा हुआ लकुरुआ में अदुप्शों के नहीं बोला था जिजुआ कब कंसीडरे करी कि ए रेजों वालिद बा जहाँ ई लैतेरे लैकुआ में के उ कंसेंट मामा के लजुआ रेजुए करे के तो हाँ लैकुआ के ओकर लाज रेजुए है कर दिलक बे आलो तो उसकी कुमा जे आदुपते करे ई मामा आदुपते कर दे बपुआ तो मर गल बा
1: यानी कि लैकवा के जुन बा ओकर ओकर माँ के जो नाम बा ओकर नाम लैकवा सकी ले ले और अब जैसे बोला पिता तो नहीं हवन मामा अपन नाम पर ले ले
0: हाँ आले अब देखी ला सर तेरे लोग पूछ ला तेरे हमर से कौन लिफे है एगो आदुप्शों सैप में कौन लिफे का हुए ला कभी एगो आदमी के एगो लैका के से तू बहुत आदमी है ओके कुमा जे तू आदुपते कर ले वो ओकर लिफे का है पहला चीज शुरुआत से बोलते गल वो हमके कि ओकर पहला चीज ओ जोन आदमी ओके आदुपते कर ले बा ओकर नाम मिलेला ओके तर लो ये ये से बोतल यहां आदुपतवा के ओकर नाम मिलेला मैं सिलमा जीज सकी वो डिसीडे करी कि जो नमुआ एक मिले के चाहेला उकर माँ बपुआ जोनों के है करे था उकर नाम नहीं डाल उकर नाम नहीं डाले के नहीं कुमा जो उकर नमुआ है करे के है रखे के समझ लो का बोल लिया तो सकी कुमा जो हम आज थे किसी बोली कब आदुपते होल तो हमर नमुआ होलो के ना
1: हाँ।
0: तो नहीं नेसेसर ओके कुमा जो हमर नमुआ अब है ओके ले एगो नाम सकी कुमा जय दूसर नाम जीज बोली नहीं हम नहीं चाहते हैं कि कुमा जय आदुपते कर ले
1: यानी कि जरूरी नहीं बात कि आज कोई के आदुपते कर ला तो हर नाम छहरा के देखी
0: हाँ इजी से मैं देख ला गई करे ना नॉर्मल माँ का हुए ला वो तो मिलवे करी ओकर नमुआ जो माँ बापुआ जो के आदुपते कर ले ओकरे नाम में मिली मैं जे रेजों रही वालिद इजिजवा डिसीडे करे ला जिस रेशों ओकर है वो देखे ला कब किसवा आवे ला और मांग कर ले हुई कि मऊआ ओकर नमुआ में दही करे के लैकवा के हई डाले के तो देखता कुंजिशों सब चीज बा तो सकी बोले नहीं इकावा में हई लैकवा ओकर नाम नहीं चाहेला सी बुझो जैसे थरुआ बोली हमारे नाम है रघुनंदन में डाले के हम ओके आदुपते करते हैं सकी जी बोले नहीं एकर नमुआ में नहीं ओ देसी दे करी से ओके मन हो वही नमुआ रखे के जोन ओकर माँ बाप ओके दिले रल बायोलॉजिकल मदर आ फादर ओकर नमुहे रखे के
1: नहीं आदुप्शो में ऐसे होला ना कि एगो एगो जोन कुप हो अपन अपन नाम लेकवा के देवेला
0: हाँ ये देवा था ये मिलेला मैं नहीं कि कुमा जी स्ट्रिक्ट रूल है एक्सेप्शन है
1: यानी कि आदुप्शो में खाली नाम नहीं देवल चला
0: हाँ
1: सगबा नाम नहीं देके लेकवा के औसने देखे जैसे तो हर लेका
0: हाँ ओकरे देखबा अनमन नहीं नेसेसरी जोन आदमी आदुपते करी ओकरे नाम में रही

0: जैसे तेरे बोला ना शुरुआत में, तू भी बोला कि कभी आदमी आदोपते वेला तो ऊ नाम ले वेला जोन आदमिया जोनों के आदोपते कर लेबा तो नहीं नेसेसरा ई नहीं है। जीज दे सीधे करी ऊ के नमुआ ऐसकी जोन आदोपते करता ओकर नमुआ में होई या अपने नमुआ में जोन रही।
1: अच्छा तो जीज दे सीधे करी अभी
0: जीज दे सीधे करेला जब एको रीजन रही वैलिड। अब किसे एक मजे
1: अब मान लो एगो लड़का बड़ा हो गल बा एगो छोटा लड़का रही पांच बरिस के दस बरिस के तो अलग बात बा। अब एगो लड़का अठारह से ज्यादा हो गल बा और ऊ बोला था कि हम चाहते हैं कि हमार बाप के जो नाम बा ऊ हमके मिली। तब यहाँ पर तो जीज के रिक्वेस्ट कर बोली नहीं हमार मन बा कि हम अपन बाप के नाम रखब।
0: हाँ।
1: यानी कि जो आदुपते कर ले बा
0: ओके मन बा
1: ओकर नाम में जाब। तो जीज के ओकर दुआ है कि लइकवा जो बोले बा ऊ ओकर पर
0: भाई के एक्सेप्ट हुई के। हाँ।
1: तो यहाँ पर जीज नहीं सके बोले कि नहीं नहीं हम चाहते कि तू अपन जो माँ बाप तुके पैदा कर ले बा ओकर नाम रखे के नेसेसरी है। लइकवा बोली नहीं हमार अठारह साल होकर बा बीस साल के हो गए हमार मन बा कि हई जो माँ बाप हमके छोटा से देख ले बा बड़ा कर ले बा हम पालन पोषण कर ले बा हम बड़ा हो गए हम तो काम सब करते है हमार मन बा कि आप आदर्शो में हमार जो नाम बा उ हमके चाहता कि जो हमके देखभाल कर ले बा ओकर नाम ले बा। तो एक मैं जूस कुछ नहीं सके करे चाहे ना उबरी से बा देख के
0: ऐसन काम दे रीजन जस्टिफिए नहीं बा ना कि ऊ कुमा जे जोन हौ जोन आदुपते कर ले बा ओके बड़ा से छोटा से ओकरे संग जियता में ओकर माँ बायोलॉजिक दूसर है तो ये जीज हुआ ऐसा कुछ नहीं करी तो फिर न यो कि देबे करी जोन आदुपते करता ओकर नाम में जी रीजन जस्टिफिए बा गुड रीजन जैसे हमने बा कि ऊ लड़का बोलता नहीं हम हमरे हमार माँ बाप जोन पैदा कर ले रहा ओकर नाम में रह नाम ओकरे माँ बाप वो के नमुआ में रखे के नहीं नेसेसरी बा जोन आदोपते करता ओकर नाम में डाले के।
1: बहुत बढ़िया।
0: हाँ ना यही सब देखकर कानून कैसे आली। अब एगो लड़का वो तो आदोपते रहल एगो दूसर परिवार से हियाँ तब बा एगो दूसर परिवार ओके आदोपते करता समझ ला ना। अब वो लड़कुआ ओकर माँ बाप जोन पैदा कर ले रहल जैसे हमने बोल सब पागं बायोलॉजिक जो जन्म दिले रहल और कुमा जे है लड़कुआ के मेम कि ई दोनों अब कुमा जे ओके आदोपते कर ले बा ओ कुमा जे कोचिनिए करी ऊ लड़कुआ ओकरो परिवार के नाता रखे के ओकर हसीन जोन बा माँ बपुआ जोनों के जन्म दिले बा ओ कभी है हसीन हुआ ओ टूटी वो कुछ नहीं ओ रही कुमा जे हुआ ओकर माँ बपुआ बगल के दोनों के ओ फॉर्म पची जैसे हमने बोलिया सा पारेंट बायोलॉजिक और ओ एगो लियन रखेला नहीं फिनी होएला नहीं कि मतलब ही आदुपते कर देलक हमके तो हो कुमा जे हमार माँ जोन भाई जन्म देलक ओके भूल गईली सा नहीं जन्म से एक मरक तक मेम के कर नाम में बा ओ भाई कुमा जे हो जोन जन्म दिले बा आर ई बाहियाँ ऊ लोग के होला शो नहीं फिनी होएला जो रहते रहेला तब ले कुछ आज मर जाए कि का
1: यानी कि लड़कों के छाना याद दिलाते रहे कि तो जे माँ बाप तो के पैदा कर ले बा ये लोग हमन सा।
0: हाँ।
1: और हमेशा छाना लड़कों के बताते रहे कि हाँ है तोर माँ है तोर भाई तोर बहन यानी कि वो लोग के जो रिश्ता बा वो हमेशा औसते रहेला।
0: हाँ टूटेला नहीं लाखों दूसर को रहे ओकर हसीन और ओकर कोटाक जोन रहल उ लइकवा जोन आदोपते होल बा दूसर परिवार से ओकर माँ बाप भाई बहन से ओकर हसीन रहेला। देखेला नहीं कि सब आदोपते कर देला उ लइकवा के और जगह तोहर लइकवा उ तोहर लइका हो गल।
1: हाँ तो यानी कि हमनी जहाँ तक हमने जाना थे जाकि आज एगो लड़का के आदुपते कर दिला लड़कवा तोहर लागे चलाल बा। अब तोहरा चाहेला कि हौ जोन लड़कवा बा ओके याद दिलाई के कि ओकर परिवार बा
0: को। हाँ नहीं हो नहीं हो याद दिलाई ला एगो बोली के मैं तो कैसे बड़ा होई तो पूछे ला ना
1: नहीं तो कबो कबो छोटा लेकर के आदुपते करेलन सा ना।
0: हाँ नहीं नहीं तो होवे ला लड़का कब बड़ा हो जाला तब ऐसा ऐसा केशों पूछे सवाल पूछे नहीं बात तो आगे पहुँच ऐसा के बा तू तो जाने लाई मऊआ रही।

0: ना कि जाने रे तो है तो कोई है तो माँ बाप तो ऊ रहल हम तो क्या दुपते कर ले हैं।
1: अच्छा एक सवाल करत है मान ला एगो लड़का क्या दुपते कर ले रहन से छोटा रहल लड़का बड़ा होल तो लड़का बड़ा होल तो जाना था कि ओकर माँ कोई और ओकर बाप कोई और बा तो लड़का लड़का के मन नहीं बा ए लोग संगे रहे के मन लड़का के मन अपन माँ बाप लगे जाएगी तब कुछ होला।
0: हाँ वो भी ओके कुमार अब तो बड़ा हो गल बा अभी है रहल नहीं करना
1: मान ला लड़का 10 बरिस के हो गल जान गल कि नहीं हमार माँ बाप तो हुआ बा हम तो यहाँ नहीं मन पा रहे कि और यहाँ पर ते लोग सब पापी होकर के हाथ उपते कर ले ले वन सब लेकिन नाम पर हो गल बा
0: तो सकी जायू हाँ अब हाँ अपन अपन माँ बाप वाज जो आई बायोलॉजिक रगल जो जन्म दे ले रल
1: हाँ
0: वही कर खाए अब तो नाम खाली खाती नहीं कर हो गल बा लेको मैं तीन अब तो हुआ ओकर संग जाता। अरे नहीं देखा तो एक बार है आदमी माँ माँ बाप बा ओकर लड़का बा मैं कहाँ करेला कभी मऊआ बपुआ के देखेला कुमार जे सास ससुर के ज्यादा माँ बन जलन सन।
1: हाँ
0: नहीं ये वो सच बात है ये बात करते हैं सर
1: जस्ती दादा दादी से लोग के लगाव रहला
0: नहीं कहाँ करी जो नौकर कुमार जी रखल हाँ दादा दादा दादी से या कुमार जी देखभाल कुमार जी अरे ये बोली हमार माँ हाँ हमार माँ हाँ हाँ करी मेरे को सस से ज्यादा बा कुमार जी है कुमार जी ओकर नाता जस्ती कुमार जी हो जाला ये तो आज के दुनिया में कुमार जी आज के नहीं हमेशा भी होते जाला अपन माँ के छोड़ के दूसर होकर सास की बोली ओकर माँ है मैं नहीं मुझे चीज नहीं है मैं वो देखे वो चीज करेला हर आदमी तो बराबर चीजें नहीं करेला ना अरे अब देखेला सब ये लैकुआ जोन कुमार जे ओकर माँ बाप संगे दूसर भंग से आर हियाँ बा ओकर माँ जोन आदुपते कर ले बा तो वो कहाँ करेला दोनों बगल से हियों से हुओं से एगिचे बनेला।
1: हाँ इतना हमने बात कर रही सब बोले रही जाके हाँ। लैका जोन बा आदुपते करबो करल तो लैकवा जोन बा जे के आदुपते कर ले बा
0: हाँ।
1: काल परसों कुछ हो जायो के तो जोकर घर द्वार माटी जैसे बोला लाभ पर पैसा जितना कुछ रहला सब कुछ वो लैकवा के मिलेला
0: हाँ।
1: अब आज लैकवा के ओकर जो असली माँ बाप लोग बा ओलो के जिबिया वो जैसे बोलना चाहे लोग के जायदाद वो रहला तो लैकवा के पागे अधिकार ह कि जितना ओकर हुआ भाई बहन के मिलता उकरो हक हुआ मिलेला।
0: हाँ तो देख ला यहाँ दो पार मिलता एक मिलता हुआ जो ओकर माँ बाप बगल से और जो हियाँ जो ना दुपते कर दे बापो के तो लुथरी है बात सभी तो मिलता हाँ। हियाँ हुआ तो गुपार मिली हियाँ तो सब मिलता मैं दोनों में ए भी थे करेला और तो देखिए काल तोरा कोई आदुपते करे खोज था दो बगल के पार तोरा मिल जाए नहीं देखा कानून है नहीं एगो वो है एगो झोंक नियर बतियाते हैं सर मैं कैसे कानून है करेला तो मैं यही से कुमार जा कभी सोचब जो नदमिया कुमार जा आदुपते हो गल बा एगो दूसर परिवार से और ओकर माँ बा दोनों बगल से गीते करता और हाउ भैया तो बोली न कि हाँ तू के दोनों बगल से मिलल हमके तो खाली माँ बगल से मिलल बा ये भी बोले लन सन कब हो गला अरे ये छोड़ देला सर अभी हमने देखिला सर दुआ उतोगीते पाहताल बोले रही सब पहले एगो माँ बाप जो जन्म दिले बा ओकर लैकुआ में ओकर हक बा जो लैकुआ के ओके चाहेला देखले रही सर कि लैकुआ के ओकर माँ बाप जो जन्म दिले बा ओके खाई पियाई के दे के लेकुल बढ़े अले जाई के बढ़ाई करे के सब चीज करे के मैं अरे तू लैकुआ के चाहेला वो तो बीते पाताल में ओकर माँ बाप के देखे के कुमा जा खाई पियाई के कब नहीं रही कब लाज हो जाए तो सब जे ओकर एगो दुआ बा दोनों के खुशी तो माओ बापुआ के ओकर देखे के कुमा जे हई में अले इतब तो बोल ली सर एगो ताज तो देख ले ली सर कौन सी के मिलल बड़ी खुश बा एसकी उ जोन बा एगो कुमा जे लैकुआ ओकर माँ जोन के बियोलॉजिक बा और हियाँ अपन साथ हई कर लेवा आदुपते उल बा एगो दूसर परिवार ओकर लैका बा सिबोजे को छुकड़ी बा
1: यानी कि जे आदुपते कर लेवा ओकर आगे से को लैका बा फिर भी एगो लैका आदुपते कर ला
0: हाँ आले सिबोजो आदुपते हाँ ये हो जे ला और सिबोजो अब ये जो आदुपते कर ला खाऊ लैकवा के ओकर बा बेटी
1: अच्छा
0: ओकर बा बेटी
1: हाँ
0: ऐसके ऊ छोकड़वा जोन के आदुपते कर ले बा सकी शादी करे है ओकर बेटिया से नहीं समझ ला का बात है यानी फिर से बोली जाते गोजा फैम पोटा हा ये जो ओके आदुपते कर ले बा हाउ सी बुझो छोकड़वा के आदुपते कर ले बा वो छोकड़वा बड़ा हो गल बा मैं सेलमा जोन भाई माँ बपुआ आदुपते कर ले रखल हाउ लैकुआ के छोकड़वा के ओकर बा है लैका और पमी एगो बा एगो छोकड़ी है हाउ छोकड़वा जो आदुपते कर ले बा उसकी शादी करे है छोकड़िया के
1: बताओ

0: खून के नहीं हो सन ना तो हिया कानून बोले ला कि नहीं सकी उ जोन हई आदुप्ति कर ले बा आर हई ओकर परिवार में ओके शादी करे के या कोनो देशों दो के ओकर परिवार में हई देखा नहीं हो सकी करे ओकर भाई के बहन के या कौन सी के हई में तो नहीं सकी शादी करे। शादी मना है जब ऊँचो कड़वा शादी करे को जाता जोन आदुप्ति कर ले बा जो ओकर लड़का हो ओकर लड़का से शादी करे ऊ छुकड़िया से शादी करे अब तक दोनों घर में मवन सन ना आदुप्ति करके तो चलाल बा हियाँ ओकर मामा हियाँ ओकर संगे जिया था तो ओकरो तो बा एगो हो बहन घरवा एक बार तो बोला कट बहन अरे तो कट बहनिया से सकी स्टेप मजे है सिस्टर से शादी करे बहन तो ये कानून मना करे।
1: चला तो अभी हम जा रहे थे कि हमने के जो आज के जो विषय बा अदुप्शों कैसे कि गोद लेवल चला ये काफ़ी लंबा बा हमने अगले हफ्ते भी एकरे पर बात करब चा और जो हमने के सवाल छूट गल बा हमने हमने के वकील हमने के मेहमान कपिल देव रघुनंदन जी से अगले हफ्ते फिर जानब जा। तो कपिल देव जी बहुत बहुत धन्यवाद आज के हमने के इस विषय में इतना विस्तार से बतेला अगले हफ्ते के फिर से जारी रखब जा। तो प्रिय श्रोताओं हमारा कार्यक्रम आज की चर्चा यहाँ पर समाप्त होता है। अडॉप्शन जो आज का हमारा विषय है इस पर हम अगले हफ्ते फिर बात करेंगे और आप लोगों ने बड़े प्यार से हमारे इस कार्यक्रम को सुना आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आप सभी को शुभ दिन नमस्ते।
2: आज की चर्चा।

कल दोपहर एमएसएम के एकमात्र संरक्षक पद से इस्तीफा दे दिया। मॉरिशस की महिला साइक्लिस्ट किमले को पियनो ने टूर डे फ्रांस के छठे चरण में शानदार जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया। दौड़ के समय यांत्रिक खराबी के कारण उन्हें अपनी साइकिल बदलनी पड़ी, फिर भी मॉरिशस की इस चैंपियन ने मोब्रिजों से टूनो श्योगोन के बीच आयोजित छठा चरण जीत लिया। इस शानदार प्रदर्शन ने पूरे देश को गौरव प्रदान किया और एक बार फिर साइकिलिंग जगत में मॉरिशस का नाम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रोशन किया। विदेशी स्तर पर अमेरिका के न्यू मैक्सिको राज्य की एक अदालत ने गुरुवार को मीटा को बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामले में 567 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अतिरिक्त हर्जाना अदा करने का आदेश दिया। अदालत ने माना कि कंपनी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बच्चों को होने वाले संभावित खतरों के बारे में जनता को पर्याप्त चेतावनी नहीं दी है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय बाद शोक समाचार। बिलो रोड नोवेल डी कुवैत में 58 साल के 58 ईयर ओल्ड श्री वीर सिंह जवाहर जो वीर सिंह से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है।

0: कि आज दिन की डूबे जी इनकी बेटी नेहा बामा के मकान बिलौलिन वेल्डी कुवैत से उठाकर दाह संस्कार के लिए मेजिन का दिमास्क की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टू डी आर 2 PM। रॉयल रोड आमोगी में 86 साल की 86 ईयर ओल्ड श्री बालकरण भरत जो सितवा से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2:30 बजे इनके मकान रॉयल रोड आमोगी से उठाकर दाह संस्कार के लिए लावाचुया की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टू डे एट 2:30 PM। रेलवे रोड सैन मिशेल बेलियारिवियासेश में 77 साल की 77 ईयर ओल्ड श्रीमती इंदुमती भवन पैदाइश नाम विदेशी की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 1 बजे के बेटे धर्मदेव भवन के मकान रेलवे रोड सैन मिशेल बेलियारिवियासेश से उठाकर दाह संस्कार के लिए बुशों की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। गुटवायाल एनएस फ्लोहो में 72 साल की 72 ईयर ओल्ड श्रीमती निर्मला जदन पैदाइश नाम हरनोद जो लाता से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2 बजे इनके मकान गुटवायाल एनएस फ्लोहो से उठाकर दाह संस्कार के लिए बुशों की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टू डी आर 2 PM। और रॉयल रोड बोबासम में 47 साल की 47 ईयर ओल्ड श्री विरासोमी युवराज जो बॉब से जाने जाते थे और दिनेश परमेश विरासोमी के बेटे थे की मृत्यु हो गई है। ये पहले एबोनी कोच फिनिक्स रहते थे। अर्थी आज दिन के 1:30 बजे लाशापेल और दो तेलियन सनसो रॉयल रोड बोबासे से उठाकर दाह संस्कार के लिए शिबेल की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टू डेथ ऑफ पास 1 PM। शोकग्रस्त सभी परिवारों के प्रति हमारी दिली हमदर्दी है।
1: News on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: 819 kHz, ये है रेडियो मॉरिशस।

0: चलिए श्रोता, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये रेडियो मॉरिशस है, मीडियम वेव 19 किलोहर्ट्ज़ पे हमारा प्रसारण हो रहा है। भक्ति धारा कार्यक्रम को हम जारी रखेंगे दिन के 11 बजे तक। तो चलिए, आप के समक्ष हम लाए हैं ज्ञान चक्र। ये कार्यक्रम आप हिंदू महासभा की तरफ से सुन पाएंगे और इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करने वाले हैं आप हैं आचार्य गिरीश शर्मा जी।
1: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।

सत्लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं त्वं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुत्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिनो याभ्यां वीना न पश्यन्ति सिद्धस्वान्तः स्थमीश्वरं श्री श्री सीतारामचंद्राय नमः श्रीरामदूताय नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः भगवते श्रीसांब सदा शिवाय नमः ओं नमो भगवते सियाराम कृष्ण हरि नारायण। अति पावन श्रावण मास के उपलक्ष में प्रसारित इस विशेष ज्ञान चक्र कार्यक्रम में मैं बाबा जी गिरीश शर्मा हिंदू महासभा की ओर से आप सभी का अभिवादन नमस्कार एवं स्वागत करता हूँ। भगवान शिव इनके चरित्रों से प्राणियों को नैतिक सामाजिक कौटुंबिक अनेक प्रकार की शिक्षा मिलती है। समुद्र मंथन में निकलने वाले कालकूट विष का भगवान शंकर ने पान किया और अमृत देवताओं को दिया। जो मुख्य होता है एवं जो समाज को चलाने वाला होता है, जो कुटुंब के स्वामी है, उनका यही कर्तव्य है उत्तम वस्तु अन्यों को देना और अपने लिए परिश्रम त्याग तथा तरह तरह की कठिनाइयों को ही रख लेना चाहिए। विष का भाग राष्ट्र या बच्चों को देने से वैमस्य या सर्वनाश हो सकता है। शिव जी ने न विष को पेट में उतारा और न ही उसका वमन किया, अपितु कंठ में ही रोक रखा। इसलिए विष और कालिमा भी उनके आभूषण हो गए। जो संसार के हित के लिए विषपान करते हैं वही संसार में जैसे कहे सर्वश्रेष्ठ और वास्तविक ईश्वर माने जाते हैं। परंतु जब कुटुंब विष वमन करने से फूट और उपद्रव ही हो सकता है, साथ ही उस विष को हृदय में रखना भी बुरा माने जाते हैं। अमृत पान के लिए सभी उत्सुक होते हैं परंतु विष पान के लिए शिव है। वैसे ही फल भोगी के लिए सभी तैयार रहते हैं परंतु त्याग और परिश्रम को स्वीकार करने के लिए महापुरुष ही प्रस्तुत होते हैं। जैसे अमृत पान के अनुचित लोभ से देवी देवता विद्वेष स्थिर हो गया, वैसे ही अनुचित फल कामना से समाज में द्वेष स्थिर हो जाते हैं। इसलिए भगवान शिव के समस्त लीलाएं जैसे कहें उनके समस्त परिवार ये सब हमें अनेक अनेक शिक्षाएं देते हैं। इसलिए साधक को चाहिए कि मात्र पूजा पाठ तक ही सीमित ना रहे अपितु भगवान शिव के चरित्र से जो भी हमको सीखना चाहिए, जो भी अपने जीवन में उतारना चाहिए, हमें उसका प्रयत्न अवश्य ही करना चाहिए। भगवान शिव के कुटुंब इनके परिवार भी अनेक ऐसी शिक्षाएं हमारे सामने रखते हैं जो हमारे परिवार हमारे समाज और हमारे राष्ट्र के उन्नति के लिए उपयोगी है। इसलिए भगवान शिव की आराधना हमें पूरे श्रद्धा भक्ति के साथ संपन्न करना चाहिए। आज के मानस विचार में किष्किंधा कांड के मंगलाचरण

0: का एक दोहा मैं आपके सामने रख रहा हूं। तुलसीदास जी लिखते हैं, जरत सकल सुर बृंद विषम गरल जेहि पान किए तेहि न भजसी मन मद को कृपाल शंकर सरिस। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जिन भीषण हलाहल विष को सब देवतागण जला रहे थे उनको जिन्होंने स्वयं पान कर दिया, हे मन तू उस भगवान शंकर को क्यों नहीं भजता, उनके समान कृपालु और कौन है। आपकी ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कार्यक्रम को यही विराम दूं। ओम सत्यम शिवम सुंदरम, ओम शांति ही शांति ही शांति, ओम श्री सीताराम चंद्रार्पणमस्तु, साधुवाद, जय श्री हरि।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम।
2: तो चलिए श्रोताओ, 10:18 हुए हैं स्टूडियो की घड़ी में। भक्तिधारा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपके लाए है शास्त्र नवनीतम। ये कार्यक्रम आप डॉक्टर आचार्य सुनील जी की प्रस्तुति में सुन पाएंगे।
3: वेद दर्शन पर आधारित कार्यक्रम शास्त्र नवनीतम।
4: ओम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सभी श्रोताओं को सादर नमन। आज का विषय है संध्योपासना, एक वैदिक चिंतन। मनु महाराज ने दो संध्याओं का विधान किया है। पूर्वा संध्या जपस्तिष्ठेत सावित्रीम अर्क दर्शनात् पश्चिमां तु समासीन सम्यक ऋक्ष्वी भावनात्। प्रातः काल की संध्या में गायत्री को जपता हुआ सूर्य दर्शन होने तक स्थित रहें और सायंकाल की संध्या में तारों के चमकने तक बैठा हुआ ठीक ठीक जप करें। सत्य सनातन वैदिक धर्म के अनुसार ब्रह्म यज्ञ अर्थात संध्या और स्वाध्याय करने का विधान प्राचीन काल से लेकर अब तक विद्यमान है। पंच महायज्ञों में ब्रह्म यज्ञ का पहला स्थान है। ब्रह्म यज्ञ में परमात्मा की स्तुति और उपासना करने का विधान है। इसी को संध्योपासना कहते हैं। संध्यायति इति संध्या, संध्यायति इति संध्या, परब्रह्म परमेश्वर का ध्यान करना संध्या कहलाती है। संध्या संधि बेला में करना चाहिए, रात और दिन अथवा दिन और रात के मिलने का नाम संधि है। यह प्रकाश और अंधकार का संयोग है। न दिन हो न रात का जो समय हो, इसी समय को सुबह और शाम कहते हैं। उसी समय जो ईश्वर की उपासना की जाए वही संध्या उपासना कहलाती है। पंच महायज्ञ विधि के प्रकरण में महर्षि दयानंद का कथन है, रात और दिन के संयोग समय दोनों संध्याओं में सब मनुष्यों को परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना करनी चाहिए। संध्या वंदना करने से पहले महर्षि दयानंद ने शुद्धि की ओर ध्यान दिलाया है। शुद्धि का अर्थ है पवित्र होना। उन्होंने दो प्रकार की शुद्धि का उल्लेख किया है, पहले बाह्य शुद्धि और दूसरा अंतः शुद्धि अर्थात अंदर की शुद्धि। जलादि से शरीर की शुद्धि और राग द्वेष काम क्रोध लोभ आदि दुर्गुणों के त्याग से भीतर की शुद्धि करनी चाहिए। अंतःकरण की शुद्धि अवश्य करनी चाहिए क्योंकि यही सर्वोत्तम और परमेश्वर प्राप्ति का एक साधन है। संध्या मन को ईश्वर की ओर प्रेरित करने का समय है। दिन शुरू होने से पहले तथा दिन समाप्त होने से पहले परमात्मा का ध्यान करना हर मनुष्य का धर्म है। मनु महाराज ने लिखा है, ऋषयो दीर्घ संध्यात्वाद दीर्घम आयुर आपनयोः प्रजाम यशश्च कीर्ति च ब्रह्म वर्चस्व

सम एवच, अर्थात सब स्त्री पुरुष को शांत भाव से एकाग्रचित हो प्रातः और सायं की संध्या को करते रहें, क्योंकि प्राचीन वैदिक ऋषियों ने निरंतर

भक्ति में लीन होने के लिए संध्योपासना करना आवश्यक है। नित्य स्वाध्याय तथा संध्योपासना द्वारा ज्ञान प्राप्ति से आत्मा की उन्नति होती है। ब्रह्मोपासक मनुष्य ही संपूर्ण सुख को प्राप्त करता है। संध्योपासना भक्ति रूपी बीज है। इस भक्ति रूपी बीज को बोने से अध्यात्म रूपी वृक्ष उत्पन्न होता है। अध्यात्म रूपी वृक्ष का अमृत फल मोक्ष है। संध्योपासना करने से पहले शरीर और मन की शुद्धि आवश्यक है। अद्भिर गात्राणि शुद्ध्यन्ति, शरीर की शुद्धि जल से होती है। मनः सत्येन शुद्ध्यति, मन की शुद्धि सत्य के पालन करने से होती है। महर्षि मनु ने पवित्रता को सर्वोपरि स्थान दिया है। सर्वेषाम एव शौचानाम अर्थ शौचम परम स्मृतम। पवित्रता के अभाव में हमारी संध्या वंदना धारणा ध्यान ठीक से नहीं हो पाते। मन चंचल हो जाता है, बुद्धि स्थिर नहीं रहती। शारीरिक शुद्धि के लिए स्नान एक नित्य कर्म है। जब शरीर स्वच्छ हो जाता है तो शरीर हल्का हो जाता है और मन में प्रसन्नता की अनुभूति होती है। संध्योपासना करते रहने से मानसिक शांति और एकाग्रता प्राप्त होती है। ध्यान और मंत्रोच्चारण से मन शांत हो जाता है, जिससे कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। हम अधिक से अधिक कार्य पूरा करने में समर्थ हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि आंतरिक ऊर्जा का विकास होता है, अर्थात संध्योपासना से आंतरिक ऊर्जा का विकास होता है। इससे ओज बल और तेजस्विता बढ़ती है। और वह मुनि राजा सगर से कहते हैं कि हे राजन, बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि सायंकाल के रहते हुए और प्रातः काल तारागण के चमकते हुए ही भली प्रकार आचमन आदि क्रिया करके विधिपूर्वक संध्योपासना करें। कोई भी बाधा हो तो भी प्रतिदिन ही संध्योपासना करनी चाहिए। रोग व बीमारी की अवस्था को छोड़कर जो कोई भी व्यक्ति सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सोता है वह दोष और प्रायश्चित का भागी होता है। अतः संध्या के समय निद्रा नहीं लेना चाहिए। अतः और वह मुनि ने कहा कि हे राजन, गृहस्थ स्त्री पुरुष सूर्योदय से पहले उठकर प्रातःकालीन संध्या करें और सायंकाल में भी संध्योपासना करें। उस समय सोना नहीं चाहिए, नहीं आलस्य प्रमाद करना चाहिए, अन्यथा स्वास्थ्य में बुरा प्रभाव पड़ता है, मन तमोगुण से युक्त हो जाता है। संध्योपासना करने से मन और आत्मा में दिव्य गुण और दिव्य शक्ति प्रवेश करती है। पूर्व की ओर मुख करके संध्या व ध्यान करना चाहिए। विष्णु पुराण के तृतीय अंश में यह उल्लेख है कि संध्योपासना से ओज बल आयु आरोग्य धन धान्य आदि की वृद्धि होती है। सत्य सनातन वैदिक धर्म कर्मकांड और नित्य कर्म में संध्योपासना को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। इसलिए हमारे प्राचीन ऋषि मुनि संध्योपासना संधि बेला में अवश्य करते थे और अन्यों को भी करने के लिए प्रेरणा देते थे। प्रभु राम योगेश्वर श्री कृष्ण गुरु विरजानंद महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विवेकानंद स्वामी श्रद्धानंद इत्यादि सभी महापुरुषों ने संध्योपासना को अपने जीवन के साथ जोड़ा, क्योंकि संध्योपासना मोक्ष की ओर बढ़ने के लिए प्रथम सोपान है। संध्या कब करना चाहिए, क्यों आवश्यक है संध्या उपासना, क्या मिलता है संध्या करने से? संध्या नित्य प्रति करनी चाहिए, यह शास्त्र सम्मत विधान है। नित्य नियम पूर्वक संध्या करने से मन की चंचलता समाप्त होती है, धीरे धीरे एकाग्रता में वृद्धि होती है। संध्या करते समय मन की एकाग्रता आवश्यक है। संध्या करने से

0: प्रकाश स्वरूप सर्वशक्तिमान परमात्मा के प्रति आस्था, श्रद्धा, भक्ति और अपनापन उत्पन्न होता है। संध्या करने से अंतः प्रेरणा जागृत होती है, जो जीव को प्रतिपल सत्य पथ पर चलने की प्रेरणा देती है। संध्या करने से अंतःकरण के जन्म जन्मों के कुसंस्कार जलने लगते हैं और समस्त विकार समाप्त तो होने लगते हैं। नित्य प्रति संध्या करने से मुख पर अनुपम तेज, आभा और गंभीरता आ जाती है। नित्य प्रति संध्या करने से वाणी में मधुरता, कोमलता और सत्यता का वास हो जाता है। नित्य प्रति संध्या करने से मन में पवित्र भावनाएं, उच्च विचार एवं सबके प्रति सद्भाव, प्रेम आदि सात्विक गुणों की वृद्धि होती है। नित्य प्रति संध्योपासना करने से संकल्प शक्ति सुदृढ़ होकर मन की आंतरिक शक्ति को ईश्वर की ओर केंद्रित कर देती है। संध्योपासना करने से हृदय में अहिंसा, शांति, संतोष, क्षमा, दया, प्रेम आदि सद्गुणों का उदय होता है और हिंसा, लोभ, क्रूरता, अभिमान आदि दुर्गुणों का नाश होता है। संध्योपासना करने से प्राप्त आध्यात्मिक बल के कारण संसार के प्रति दीनता नहीं रहती और परमात्मा की कृपा से बल प्राप्त होने से व्यक्ति का अहंकार भी नष्ट हो जाता है। संध्या करते समय जो आनंद प्राप्त होता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हृदय में जो रस की धारा प्रवाहित होती है उसे हृदय तो पान करती ही है, प्रायः सभी इंद्रियां तन्मय होकर शांति लाभ भी प्राप्त करती हैं। संध्या करने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। संध्या के समय किए गए आचमन, अंग स्पर्श, प्राणायाम, अघमर्षण, मनसा परिक्रमा, गायत्री पाठ, समर्पण और नमस्कार मंत्र महाऔषधि के समान शरीर और मन को स्वस्थ बनाते हैं। संध्योपासना से आत्मा की उन्नति होती है, क्योंकि यह आत्मा का भोजन है। संध्योपासना के पश्चात स्वाध्याय करने का विधान है। स्वाध्याय का अर्थ है पढ़ना, पढ़कर विचार करना, पढ़कर जानना। स्वाध्याय के दो अंग हैं। प्रथम अंग है अध्ययन, अर्थात आत्मनिर्माण की रुचि जगाने वाली उत्तम पुस्तकों का नियमित अध्ययन करना, नियमित रूप से पढ़ना। दूसरा अंग है स्व अध्ययन, अर्थात अपना निरीक्षण करना, अपनी कमियों दोषों को देखना और कमियों व दोषों को दूर करने का संकल्प लेना। तैतीय आरण्यक में उल्लेख है कि स्वाध्यायान मा प्रमदः, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, अर्थात हे मनुष्य पढ़ने में प्रमाद न करें, आलस्य से रहित होकर अध्ययन करते रहें। इसलिए अपने अध्ययन, आत्मचिंतन और कर्तव्यों के पालन में कभी लापरवाही या आलस्य न करें। स्वयं पढ़ने और दूसरों को सिखाने या विद्या का प्रसार, प्रचार करने व प्रवचन करने में कभी असावधानी नहीं बरतनी चाहिए। अच्छी पुस्तकों, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन और आत्मचिंतन करते रहने से मनुष्य की बुद्धि तीव्र होती है। अतः संध्योपासना और स्वाध्याय से आत्मा का कल्याण और सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है। आज का वक्तव्य यहाँ विराम लेता है। अब हमें अनुमति दीजिए। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।
1: अभी आप सुन रहे थे वेद दर्शन पर आधारित कार्यक्रम शास्त्र नवनीतम।
2: एट हंड्रेड एंड 19 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस।

10:32 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में। शुक्रवार का दिन है आज, और आज का दिन जो है समर्पित है माँ दुर्गा को। और आपको पता है आज का दिन जो है बहुत ही शुभ माना जाता है। बहुत सारे लोग जो है व्रत धारण करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और माँ दुर्गा के अनेकों रूप को पूजते भी हैं। तो चलिए आपके लिए है बहुत ही प्यारा सा भक्ति गान अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की स्वरों में।

चलिए श्रोताओ, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कार्यक्रम है भक्ति धारा। आप हमारे साथ जो है दिन के 11 बजे तक रहने वाले हैं। श्रावण मास का पावन महीना चल रहा है, तो चलिए आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा भक्ति गान जो है इस कार्यक्रम में हम शामिल कर रहे हैं। और कहते हैं शिव जो है बहुत ही दयालु है, कृपालु है, बहुत ही जल्द जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन श्रद्धापूर्वक हमें उनको पूजना है और उनको मनाना इतना भी कठिन नहीं है। वो सरलतापूर्वक जो है हमारी बात जो है सुनते हैं, हमारी पुकार जो है सुनते हैं। तो चलिए अगला जो है गीत जो है, अगला जो भक्ति गान जो है अनूप जलोटा के स्वर में हम सुन पाएंगे।

0: चलिए श्रोताओं, भक्तिधारा कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। वैसे हम शिव के बारे में बात कर रहे हैं। वैसे भगवान शिव हमें धैर्य रखना सिखाते हैं, क्योंकि जीवन में परिवर्तन जो है, जहाँ जीवन में परिवर्तन हमेशा चलता रहता है और परिवर्तन के साथ सबको चलना होता है। जो व्यक्ति अपने मन को शांत रखता है और सत्य के मार्ग पर चलता है, वह हर परिस्थिति में भी आगे बढ़ सकता है। तो चलिए इसे शुभ विचार के साथ कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे।
1: जो भी प्राणी भगवान शिव की भक्ति सच्चे मन से करता है, उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। वो मन वांछित फल पाता है। ब्रह्मा और विष्णु भी जिनका ध्यान लगाते हैं, वो महातपस्वी भवभंजन स्वयं भवसागर पार कराएंगे। वो बड़े भोले हैं, बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं।

चलिए श्रोताओं, भगवान शिव जो है केवल एक आराध्य नहीं बल्कि जीवन जीने का एक सुंदर सीख है। शिव का अर्थ है कल्याण, शांति या शुभता। उनका स्वरूप हमें सिखाता है कि सादगी में भी महानता छिपी होती है।

श्रोताओ, भक्तिधारा कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले आइए सेंट्रल एक्सिस बोर्ड की तरफ से ये विज्ञप्ति सुनिए। रॉजबेल के रहने वाले निवासियों को जिनमें है जेबे रोड, गया रोड, बागामिया, मुंफेचिल के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि शुक्रवार 7 अगस्त 2026 को सुबह 9 बजे से लेकर दिन के 12 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इस असुविधा के लिए सेंट्रल एक्सिस बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है और बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई सामान्य पर लाए।

जाएगी। तो श्रोताओं, अभी आप सेंट्रल एक्ट्रेस बोर्ड की तरफ से एक विज्ञप्ति सुन रहे थे, ये रेडियो मॉरिशस है। आइए भक्ति धारा कार्यक्रम का समापन हम करेंगे। कुछ ही घड़ी में 11 बजने वाले हैं, आप समाचार सुन सकेंगे। समाचारों के उस पार उर्दू कार्यक्रम सायदा की पेशकश में आप सुन पाएंगे। आप सभी को शुभ दिन, मिलेंगे वापस 2:30 बजे आपकी पसंद कार्यक्रम को लेकर।

0: चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार एक बार फिर आपसे करुणा जी। नमस्कार।
1: नमस्कार नीलमणि, सभी को नमस्कार। गणराज्य के राष्ट्रपति धर्म गोकुल ने संविधान की धारा 73 के तहत सांसद चेतन आनंद बाबूलाल को विपक्ष नेता नियुक्त किया। ये तत्काल प्रभाव से लागू हुआ। फ्रों मिलिटेंट प्रोग्रेसिस के चेतन बाबूलाल ने विपक्ष नेता का दायित्व यथासंभव पूरा करने की बात कही। गौरतलब है कि जोले जोंगाओ द्वारा कल विपक्ष नेता पद से इस्तीफा दिए जाने के बाद गणराज्य के राष्ट्रपति ने चेतन बाबूलाल की नियुक्ति की। एमएसएम के एकमात्र सांसद के त्यागपत्र को राष्ट्रपति ने तुरंत स्वीकार कर लिया। दूसरी ओर पीएमएसडे के आद्रियन जिवाल ने ओपोजिशन व्हिप तथा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। मॉरिशस की महिला साइक्लिस्ट किम ले को पियनाओ ने टूर डे फ्रांस के छठे चरण में शानदार जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया। दौड़ के समय यांत्रिक खराबी के कारण उन्हें अपनी साइकिल बदलनी पड़ी, फिर भी मॉरिशस के इस चैंपियन ने मोब्रिजों से टूनो स्योगोन के बीच आयोजित छठा चरण जीत लिया। विदेश में थाईलैंड के नोटबुरी प्रांत के एक स्कूल में शुक्रवार को हुई गोलीबारी में एक शिक्षक और छात्रों सहित 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए। हमलावर छात्र ने घटना के बाद आत्महत्या कर ली। रूस द्वारा गुरुवार रात यूक्रेनी शहरों पर किए गए हवाई हमलों में 6 लोग मारे गए, 40 के करीब घायल हुए। और न्यू मैक्सिको की कोर्ट ने मेटा यानी कि फेसबुक इंस्टाग्राम पर बच्चों की मेंटल हेल्थ को नुकसान पहुंचाने और सुरक्षा मानकों की अनदेखी के मामले में 567 मिलियन का भारी भरकम जुर्माना लगाया है। इसके साथ समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय बाद शोक समाचार। खुटवायाल बुबासे में 47 साल के 47-year-old श्री युवराज विरासोमी, जो दिनेश और परमेश विरासोमी के बेटे थे और जो बब से जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। ये एबोनी कोट्स फिनिक्स रहते थे। अर्थी जो हैं आज दिन के 1:30 बजे

0: जी ला शापेल और डॉट एलियनसन सकुट वायाल बोबासें से उठाकर दाह संस्कार के लिए शिबेल की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे था पास्ट 1 PM। शोकग्रस्त इस परिवार के प्रति हमारी दिली हमदर्दी है।
1: ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: शम्मे फरोजा।

सदकल्लाहु लज़ीम। ए पाक परवरदिगार, हमें कसरत से तिलावत कुरान पाक की तौफीक अता फरमा, और आज जिस जिस ने इस तिलावत में हिस्सा लिया उन सब को इसका सवाब दे, आमीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रश्क के काबिल तो दो ही आदमी हैं, एक वो आदमी जिसे अल्लाह ताला ने कुरान दिया और उसकी तिलावत रात दिन करता रहता है, और दूसरा वो आदमी जिसे अल्लाह ताला ने माल दिया हो और वो उसे रात दिन सदका व खैरात करके खर्च करता है। बाहवाला सही अल बुखारी शरीफ।

मोहतरम सामीन, इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में 11:33 हो चुके हैं। जुम्मे का दिन है, अगस्त की 7 तारीख है और इस्लामी साल के दूसरे महीने, जी हाँ, सफ़र की, माह सफ़र की आज 23 तारीख है। आप अपने पैगामात हमें व्हाट्सएप या नॉर्मल

मैसेजेस के जरिए इस नंबर पर भेज सकते हैं 5251-7005। जी हाँ, 5251-7005 के जरिए आप अपने पैगामात हमें भेज सकते हैं। आइए समाअत फरमाइए चंद ऐलानात। मंगल 11 अगस्त, जी हाँ मंगल 11 अगस्त बाद नमाज ज़ोहर दारुल उलूम मजलिस रज़ा ब्रांच आबिद गुलित ब्रांच पोर्टलुइस में उर्स आला हज़रत का अहतमाम किया जा रहा है। मोहतरमा आलिमा सैयदा उनाजा की सरपरस्ती में तमाम ख़वातीन को शिरकत की दावत है। और इतवार 9 अगस्त सुबह 10 बजे सुन्नी रज़वी औलिया मस्जिद और सुन्नी रज़वी एकेडमी सईदगाँ पोर्टलुइस में सुन्नी रज़वी सोसाइटी इंटरनेशनल की जानिब से उर्स आला हज़रत का अहतमाम किया जा रहा है। आइए इसके अलावा समात फरमाइए नेशनल उर्दू इंस्टीट्यूट की जानिब से एक ऐलान। इस साल दिसंबर में नेशनल उर्दू इंस्टीट्यूट अपने इम्तिहानात का इनेकाद कर रहा है। जो उम्मीदवारान इम्तिहानात में शिरकत के ख्वाहिशमंद हैं उनसे दरख्वास्त है कि फॉर्म भरकर अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं 5 सितंबर 2026 तक पीर से जुम्मा 3 बजे से शाम के 5 बजे तक। जी हाँ, पीर से जुम्मे तक 3 बजे से शाम के 3 बजे से शाम के 5 बजे तक और सनीचर सुबह 9 बजे से दोपहर के 12 बजे तक नेशनल उर्दू इंस्टीट्यूट प्लानवेयत पोर्ट लुइस या अपने मुतालिका असातिज़ा के पास। जिन डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी वो कुछ इस तरीके से हैं: बर्थ सर्टिफिकेट, स्टूडेंट पास या NID, गुज़िश्ता पास किए गए इम्तिहानात के नतायज या रिजल्ट्स। ये ऐलान था नेशनल उर्दू इंस्टीट्यूट की जानिब से।

तब लुट गया जिसने ठंडे वक्त की दो नमाजें वक्त पर पढ़ीं, यानी फज्र और असर, तो जन्नत में दाखिल होगा। सब नमाजों की हिफाजत करो और खुसूसन दरमियानी नमाज की। जिसने असर की नमाज छोड़ दी उसका नेक अमल ज़ाया हो गया।

मौजूद सामीन, आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आपके पैगामात की तरफ। फिनिक्स से मरहूम इकबाल टूना, कासिम टूना, सामसू टूना, वाकवा की मरहूमा भांजी बीबी ज़ैनब हुसैन और ओयता के मामू मरहूम रफ़ीक खुदादीन टूना के लिए बेटियों सबीना, जी हाँ फिनिक्स की सबीना, वाकवा से रुखसाना हुसैन और सुल्ताना टूना ने दुआए मगफ़िरत की गुजारिश की है। काथोबोन के सफ़ीक जुअन के लिए दुआए शिफा की गुजारिश की है वाहिदा जुअन ने और वो जुम्मे की मुबारकबाद भी पेश कर रही हैं। इसके अलावा जी हाँ पेश करते हैं चंद और पैगामात थोड़ी देर में।

मौज़ सामीन, आइए इसी के साथ बढ़ते हैं चंद और पैगामात की तरफ। सलीम, रकीबा, रेहान, इस्माइल, नासिर, नाजमा, जुअन मोगू से एक कलाम की फरमाइश कर रहे हैं और तमाम मरहूमीन के लिए ईसाले सवाब की गुजारिश भी कर रहे हैं, दुआए मगफ़रत की गुजारिश कर रहे हैं तमाम मरहूमीन के लिए। इसके अलावा ख़ास दुआए शिफा की गुजारिश की गई है कज़न इब्राहिम जुमिया, जिनका एक्सीडेंट हुआ है और इस वक्त वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। इसके अलावा बंधु और कोमाली फैमिलीज़ तमाम मरहूमीन के लिए दुआ मगफ़रत की गुजारिश कर रहे हैं और जुम्मे की मुबारकबाद भी पेश कर रहे हैं। इसी के साथ थोड़ी ही देर में ये मजलिस इख्तिताम पज़ीर हो जाएगी। आप तमाम सामीन ने हमारा साथ दिया, हम आपके बेहद शुक्रगुज़ार हैं। आप तमाम सुनने वालों को एक बार फिर जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में सैयदा सुबाई को भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: समय थे वो जब अपना पूर्णा बे
3: मौजिला गुजरात नो रंग रंगारंग एमबीसी रेडियो पर गुजराती गीतों नो प्रोग्राम रंगारंग रंगारंग रंगा।

回首情已远，身不由己在天边，才明白爱恨情仇最伤。

चलिए श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में 2:30 बज रहे हैं। समय हुआ है आपकी पसंद कार्यक्रम का। आपकी पसंद कार्यक्रम इस समय से लेकर शाम के 4 बजे तक। तो चलिए श्रोताओं, आपके लिए हम लाए हैं ये प्रोग्राम। आप ही के अनुरोध पे ये प्रोग्राम चलता है। जहाँ से भी आप हमें सुने, हमारा प्यार भरा नमस्कार और आदाब। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। फ़ोन नंबर आपको पता है 4028085। हमारा व्हाट्सअप नंबर है वो है 2517005 या 5251705। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हम करने वाले हैं। चलिए ये प्यारा सा गीत आपके लिए, जगजीत सिंह की जुबानी, ये प्यारी सी गज़ल आपके लिए।

तो चलिए श्रोताओ, आपकी पसंद कार्यक्रम रेडियो मॉरिशस पे बहुत ही खूबसूरत सा गीत अभी आपने सुना। फिल्म का नाम जो है आपको पता ही है, बहुत ही पॉपुलर फिल्म जो है ईमानदार से लिया गया। आशा भोंसले की आवाज़ में आप ये बहुत ही प्यारा सा गीत सुन रहे थे। तो चलिए, ये रेडियो मॉरिशस है आपकी पसंद कार्यक्रम। हमारे साथ गीता जी है, पोंफिया की रहने वाली, हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहती है। साथ में है उनके पति रोहित जी, आदित्य अरव जानवी, तनिष उनकी बहन है मीला न्यूकोव की रहने वाली। हमारे साथ जो है कथोबोन की केश जी के लिए ये अगला गीत किशोर कुमार की आवाज़ में, फिल्म का नाम है तेरे मेरे सपने, और केश जी जो है किशोर कुमार को बेहद ही पसंद करते हैं। तो आइए ये अगला गीत उनके नाम, उनके सभी बच्चों के लिए, नेहा है, नितिशा है, साथ में है उनके दामाद है अरविंद, उनके पति है आनंद जी। तो इन सभी लोगों के लिए नाम जोड़ेंगे त्रिवेणी जी का, जो कि गुडलैंड की रहने वाली है, उनके पति है अनिल जी, और सभी मोहन परिवार के लिए। गांव की सुनीता जी हमारे साथ जुड़ी रहती है। तो चलिए ये अगला गीत उनके नाम भी हम करेंगे।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: तो चलिए श्रोताओ, आपकी पसंद कार्यक्रम को हम जारी रख रहे हैं, अगले गाने की ओर हम बढ़ने वाले हैं। वैसे आपके व्हाट्सएप मैसेजेस के लिए हम कहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी व्हाट्सएप मैसेजेस जो है हमें प्राप्त हुए हैं। तो चलिए ये अगला गीत हमारे साथ जो है समस्त बंधु परिवार है, और ये बहुत ही खूबसूरत सा गीत जो है हम शामिल करने वाले हैं। फिल्म का नाम है नास्तिक, और इसी फिल्म से लिया गया गीत जो है जाने वाला है उन सभी लोगों के नाम जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए श्रोताओं, मन चाहे गीतों का ये प्रोग्राम आपकी पसंद ने इस समय से लेकर शाम के 4 बजे तक ये कार्यक्रम जो है चलने वाला है, और बहुत ही खूबसूरत सा भाव गीत जो है हम आपके नाम करने वाले हैं। बहुत ही पॉपुलर गीत है। तो चलिए गीत की ओर हम बढ़ने वाले हैं।

कथुबोन की रहने वाली है, उनके पति है सूर्यदेव जी, उनके सभी बच्चों के लिए भी। तो बहुत ही खूबसूरत सा गीत फिल्म नास्तिक से लिया गया, ये प्यारा सा भावगीत जो है प्रदीप के स्वर में आप सुन पाएंगी।

0: आपकी पसंद।
1: तो चलिए श्रोता, वो आपकी पसंद कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ जो है इस समय हमारे साथ व्हाट्सएप मैसेजेस जो है हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो चलिए बहुत ही खूबसूरत सा गीत हम नाम जोड़ेंगे। आप है विश्वानी दुमन जी, आप हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहती है, आप वक्वा की रहने वाली। अगला गीत जो है तो अगला गीत जो है जाने वाला आपकी सभी बहनों के लिए। इंदिरा है, शारदा है, आपकी सहेलियां है नीला, प्रतिभा, शोभा, गीता गजाधर है साथ में है, आपके सभी दोस्तों के लिए। तो अगला गीत जो है बहुत ही प्यारा सा गीत है। इन सभी लोगों के नाम हम कर रहे हैं, आपके समस्त परिवारों के नाम, दोस्तों के नाम हम कर रहे हैं। तो चलिए श्रोताओं, मन चाहे गीतों का ये प्रोग्राम आपकी पसंद से हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो बहुत ही प्यारा सा गीत फिल्म गीत से लिया गया और 2:55 हुए हैं स्टूडियो की घड़ी में। कुछ ही घड़ी में सुपहर के 3 बजने वाले हैं और आप समाचार सुनेंगे। समाचारों के उस पार आपकी पसंद का

0: पच्चीस अगस्त को बॉम्बू के विलेज हॉल में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। विश्व हृदय दिवस के उपलक्ष्य में एक अभियान के तहत पूरे देश में कई रक्तदान शिविरों के साथ एक अन्य आयोजन 4 सितंबर को निर्धारित है। ब्लड डोनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष आम जनता से रक्तदान करने की अपील कर रहे हैं। और विदेश में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि ईरान के खिलाफ युद्ध बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा और तेहरान अब ज़्यादा समय तक टिक नहीं सकता। अमरीका, ईरान और ओमान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोलने के लिए एक अस्थायी समझौते के करीब पहुँच रही है। तो इन्हीं खबरों के साथ ही 3 बजे के संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
1: You're listening to RM2 Radio Masti.
2: kilohertz, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
3: तो चलिए श्रोताओ, ये सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से चंद विज्ञप्तियाँ सुनिए। ज़रूरी मरम्मत कार्यों की वजह से कई इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। सबसे पहले सैकड़ों के रहने वाले निवासियों को, जिनमें हैं जुक्रे, रामगुलाम, कनाल बाचुस, सैकड़ों रोड, रेजिडेंस ब्रिकेटरी के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि शनिवार 8 अगस्त 2026 को सुबह 8:30 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। साथ में है मिडलैंड्स के रहने वाले निवासियों को और साथ में है जुबरे के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि शनिवार 8 अगस्त 2026 को सुबह 8:30 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। और मिडलैंड्स और जुबरे के रहने वाले निवासियों को, जिनमें है रोयल मिडलैंड्स के कुछ भागों के रहने वाले निवासियों को, साथ में एनाश डे से जुबॉय के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि शनिवार 8 अगस्त 2026 को सुबह 8:30 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इन सभी असुविधाओं के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है और बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई सामान्य पर लाई जाएगी। तो श्रोताओं, अभी आप सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से चंद विज्ञप्तियाँ सुन रहे थे। ये रेडियो मॉरिशस है, तो चलिए आपकी पसंद कार्यक्रम को हम जारी रखें।
4: आपकी पसंद

तो चलिए आपकी पसंद के रकम को जारी रखते हुए ये अगला गीत जो है फिल्म का नाम जो है बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही प्यारा सा गीत जो है आशा भोंसले की आवाज़ में आप सुन सकेंगे। और ये प्यारा सा गीत जाने वाला है हमारे साथ जो है इस समय सुरेखा जी है देपिना की रहने वाली, साथ में है राधा जी है पिछली वैश्य सैम्पिया की रहने वाली, माँ गायत्री है नुवे फ्रांस की रहने वाली, उनके बेटे अजय, उनके सभी बच्चों के लिए साथ में ये गीत हम चलाने वाले हैं। आप सभी सुनने वालों के नाम अनिता जी है जो कि एक वायाओं की रहने वाली हमारे साथ जुड़ी रहती है, उनके सभी परिवारों के लिए। तो चलिए गीत की ओर हम बढ़ेंगे।

आपकी पसंद आपके लिए श्रोताओं हम चला रहे हैं इस समय। तो चलिए गीतों का ये खूबसूरत सफ़र इसे हम बरकरार रख रहे हैं और अगले गाने की ओर हम बढ़ने वाले हैं। वैसे मन चाहे गीतों का ये प्रोग्राम आपकी पसंद की अगली भेंट में फिल्म का नाम जो है, जी हाँ, फिल्म का नाम है पुष्पांजलि और इस फिल्म से लिया गया गीत जाने वाला है हमारे साथ इस समय अनसुया राम के अलावा। जी हाँ, अप्रियले की रहने वाली है। ये गीत जाने वाला है ननन से गुलाम जी की याद में, जो कि गाँव दिमास के रहने वाले है और ढेर सारी जो है उनकी पत्नी जो है प्रेमिला सुगुलाम जो है बहुत ही याद कर रही है अपने पति को। तो ये गीत जो है अनसुया जी की तरफ से, ये गीत जाने वाला है उनकी पत्नी के लिए, सभी सिगुलाम परिवार के लिए भी। तो चलिए श्रोताओं, बहुत ही लोकप्रिय गीत है, फिल्म का नाम है पुष्पांजलि। तो चलिए गीत की ओर हम बढ़ेंगे।

अगला गीत है जो है शोभा जी के लिए, पॉपुलर म्यूजिक की रहने वाली है, उनका ये मनपसंद गीत फिल्म हमराही से लिया गया, लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत हम

चलिए श्रोताओं, आपकी पसंद कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और अगले गाने की ओर हम बढ़ने वाले हैं। ये अगला गीत जो है जाने वाला है हमारे इन सभी श्रोताओं के लिए जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत सा गीत इस कार्यक्रम में हम शामिल करने वाले हैं और ये प्यारा सा गीत जो है हमारे साथ, जी हाँ, हमारे साथ में है, आप हैं त्रियोले की रहने वाली अनीता जी, उनके समस्त परिवार जो है हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनीता जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, साथ में उनके समस्त परिवार भी है। फिल्म का नाम है दूर गगन की छाव में और इस फिल्म से लिया गया गीत जो है जाने वाला है उनकी बेटी है अंजू, उनका बेटा है सचिन, उनके दामाद है वेद, बहू है पूजा, साथ में है नाती पोते रियांश है, फिया है। तो बहुत ही प्यारा सा गीत जो है फरमाइश कर रही है अनीता जी। तो ये गीत जो

चलिए श्रोताओं, आपकी पसंद कार्यक्रम सपहर के 3:23 हुए हैं स्टूडियो की घड़ी में, और अगले गाने की हम बात करें तो ये अगला गीत हमारे साथ है, जो है समस्त बिसेसर परिवार, जो कि गांवबे के रहने वाले हैं, जयपुर परिवार है रवेल के रहने वाले, साथ में है भीम परिवार जो कि माँ सलमा के रहने वाले हैं। तो चलिए इन लोगों की फरमाइश पे जो है ये अगला गीत जो है हम शामिल करने वाले हैं, और बहुत ही प्यारा सा गीत है आया सावन झूम के, और इस फिल्म से लिया गया गीत इन सभी लोगों के लिए। तो श्रोताओं, आपकी पसंद कार्यक्रम को हम चला रहे हैं आपके मनपसंद रेडियो चैनल पे, ये रेडियो मॉरिशस है, मीडियम वेव 819 किलोहर्ट्ज़ पे हमारा प्रसारण हो रहा है। तो चलिए एक से बढ़कर एक गीत आप सभी सुनने वालों के नाम।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: श्रोता, हुआ ये सेंट्रल एक्सी बोर्ड की तरफ से चंद विज्ञप्तियाँ सुनिए। जरूरी मरम्मत कार्यों की वजह से कई इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। सबसे पहले अमिचे, बालो, गोकुला, बेलव्यू मोगल और मोंग लवाजिया के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। रविवार 9 अगस्त 2026 को सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 4 बजे के बीच। और साथ में है, जी हाँ, काफ़ी जगह पे है बिजली की सप्लाई में

0: कटौती लाई जाएगी। पेरेबेर रू कोस्टल बेबफ के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि शनिवार 8 अगस्त 2026 को सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 4 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। तो इन सभी असुविधाओं के लिए सेंट्रल एक्सेस बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है और बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई सामान्य पर लाई जाएगी। स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 3:30 बज रहे हैं, तो चलिए आपकी पसंद कार्यक्रम को जारी रखेंगे।
1: आपकी पसंद

चलिए अगले गाने की ओर हम बढ़ेंगे। हमारे साथ जो है सूरज शर्मा साजिदा है, जो हमारे साथ निभा रही है त्रियोले से। उनका ये मनपसंद गीत है फिल्म आमने सामने से लिया गया। तो चलिए गीत की ओर बढ़ेंगी।

0: तो चलिए, ये अगला गीत सुनीता जी के नाम जो है हम जोड़ रहे हैं उनके नाम पे, लॉन्ग माउंटेन की शकुंतला जी है, साथ में है उनके ननन गायत्री के लिए, उनका बेटा है अजय, साथ में समस्त परिवारों के लिए ये अगला गीत हम चला रहे हैं। तो बहुत ही खूबसूरत सा गीत, हमारे साथ अनीता जी हैं फिकॉन्फ्ला की रहने वाली, तो ये अगला गीत उन लोगों के नाम भी हम कर रहे हैं। तो चलिए श्रोताओं, आपकी पसंद कार्यक्रम को हम जारी रख रहे हैं रेडियो मॉरिशस पे। बहुत ही प्यारा सा गीत, फिल्म का नाम है सच्चा झूठा, तो खूबसूरत सा गीत हम आप समस्त सुनने वालों के नाम भी कर रहे हैं। माया जी है मोंटाय ब्लांश की रहने वाली, हमारे साथ जुड़ी हुई है, तो बहुत ही खूबसूरत सा गीत इन लोगों के नाम हम कर रहे हैं। तो मन चाहे गीतों का ये प्रोग्राम आपकी पसंद रेडियो मॉरिशस पे हम चला रहे हैं, तो चलिए गीत की ओर हम बढ़ेंगे।
1: यूं ही तुम

तो चलिए श्रोताओं, अंतिम नजाना अभी आपने सुना आपकी पसंद कार्यक्रम को हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। आइए सेंट्रल एक्सप्रेस बोर्ड की तरफ से ये विज्ञप्ति सुनिए। लालमाची के रहने वाले निवासियों को, जिनमें है गुतगयाल से डुबलेविया के रहने वाले निवासियों को, वसीज रोड, जानकी पासाद लेन, पुआग लेन, सिटे ओडीसी, साथ में है मासलमा व्यास, एनएचडीसी, सिमेटियर दे बोबोआ और आसपास की गलियों के रहने वाले निवासों को सूचित किया जाता है कि रविवार 9 अगस्त 2026 को सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम के 4 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इस असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी हैं और बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई सामान्य पर लाई जाएगी। तो श्रोताओं, अभी आप सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से अभी आप एक व्यक्ति सुन रहे थे, ये रेडियो मॉरिशस है। तो चलिए, समय हुआ है अगले कार्यक्रम का। आइए निसार के साथ हम सुनेंगे गुलदस्ता उर्दू। ये कार्यक्रम उर्दू भाषा में आप सुन पाएंगे।

0: गुलों में रंग भरे बादिनो बहार चले, गुलों में रंग भरे बादिनो बहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। मेरे अजीज सामईन, निसार अख्तर की तरफ से आदाब अर्ज हैं, आपकी समागतों की नज़र हैं गुलदस्ते उर्दू प्रोग्राम उर्दू स्पीकिंग यूनियन की वो बज़्म जहां हर हफ्ते हम उर्दू की खुशबू भरी दुनिया से मुख्तलिफ रंगों के फूल चुनकर आपकी खिदमत में पेश करते हैं। तमाम शायकीन उर्दू का हम नहायत मोहब्बत और अकीदत के साथ इस्तकबाल करते हैं। सामईन कराम, आपको याद होगा कि प्रेमचंद के यौम पैदाइश पर गुज़िश्ता हफ्ते हमने उन्हें खैराज अकीदत पेश की, उनकी ज़िंदगी पर बात हुई, फ़िक्र फ़न का ज़िक्र हुआ। अगर कलम में सच बोलने की जुर्रत हो, अल्फाज में एहसास की हरारत हो और किरदार हमारे अपने मुआशरे से लिए गए हों, तो ऐसी तख्लीक सदियों तक ज़िंदा रहती हैं। यही वजह है कि आज भी प्रेमचंद के अफसाने दिलों को झंझोर देते हैं, जहनों को सोचने पर मजबूर करते हैं और इंसान को अपने मुआशरे का आईना दिखाते हैं। सामईन, आज की अदबी अंजुमन में हम आपको मुंशी प्रेमचंद का वो अफसाना गोश गुजार कराएंगे जिसने गुर्बत, महरूमी, बेहिसी और समाजी नाइंसाफी को एक ऐसी तलख सच्चाई के साथ पेश किया कि कारी सिर्फ कहानी नहीं पढ़ता बल्कि अपने अहद और अपने समाज के चेहरे को भी देखने पर मजबूर हो जाता है। और वो है मुंशी प्रेमचंद का शोहराए आफाक अफसाना कफन। आइए आज इस अफसाने को सिर्फ एक अलमनाक कहानी के तौर पर नहीं बल्कि इंसानी जवाल, मुआशरती बेहिसी और तबकाती हकीकत के एक बेरहम आईने के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं।
1: झोंपड़े के दरवाजे पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने खामोश बैठे हुए थे और अंदर बेटे की नौजवान बीवी बधिया दर्द ज़ेह से पछाड़े खा रही थी और रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिलखराश सदा निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी, फजा सन्नाटे में गर्क, सारा गांव तारीकी में जज्ब हो गया था। घेसू ने कहा, मालूम होता बचेगी नहीं, सारा दिन तड़पते हो गया, जा देख तो आ। माधु दर्दनाक लहजे में बोला, मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देख कर क्या आऊं। तू बड़ा बेदर्द है बे, साल भर जिसके साथ जिंदगानी का सुख भोगा उसके साथ इतनी बेवफाई, तो मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। चमारों का कुंबा था और सारे गांव में बदनाम। घेसू एक दिन काम करता तो तीन दिन आराम। माधु इतना कामचोर था कि घंटे भर काम करता तो घंटे भर चिलम पीता, इसलिए उसे कोई रखता नहीं था। घर में मुट्ठी भर अनाज भी मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी। जब दो एक फाके हो जाते तो घेसू दरख्तों पर चढ़कर लकड़ी तोड़ लाता और माधु बाजार से बेच लाता, और जब तक दो पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। जब फाके की नौबत आ जाती तो फिर लकड़ियां तोड़ते या कोई मजदूरी तलाश करते। गांव में काम की कमी न थी, काश्तकारों का गांव था और मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे, मगर इन दोनों को लोग उसी वक्त बुलाते जब दो आदमियों से एक का काम पाकर भी

0: हाथ कर लेने के सिवा और कोई चारा ना होता। काश दोनों साधु होते तो इन्हें कनात और तवक्कल के लिए जब्त नफ्स की मुतलक जरूरत ना होती। ये उनकी खलकी सिफत थी। अजीब जिंदगी थी उनकी। घर में मिट्टी के दो चार बर्तनों के सिवा कोई असासा नहीं। फटे छीतड़ों से अपनी ओरियानी को ढांके हुए, दुनिया की फिक्रों से आजाद, कर्ज से लदे हुए, गालियां भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई गम नहीं। मिस्कीन इतने के वसूली की मुतलक उम्मीद न होने पर लोग उन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे देते थे। मटर या आलू की फसल में खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते और भून भून कर खाते, या 10-5 ऊख तोड़ लाते और रात को चूसते। घेसू ने इसी जाहिदाना अंदाज में 60 साल की उम्र काट दी और माधु भी सादतमंद बेटे की तरह बाप के नक्श कदम पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी रोशन कर रहा था। उस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठे हुए आलू भून रहे थे जो किसी के खेत से खोद लाए थे। घेसू की बीवी का तो मुद्दत हुई इंतकाल हो गया था। माधु की शादी पिछले साल हुई थी। जब से ये औरत आई थी उसने इस खानदान में तमद्दुन की बुनियाद डाली थी। पिसाई करके, घास छील कर वो शेर भर आटे का इंतजाम कर लेती थी और इन दोनों बेगैरतों का दोजख भरती रहती थी। जब से वो आई ये दोनों और भी आराम तलब और आलसी हो गए थे, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई काम करने को बुलाता तो बेनियाजी की शान में दुगनी मजदूरी मांगते। वही औरत आज सुबह से दर्द ज़ेह में मर रही थी और ये दोनों शायद इसी इंतजार में थे कि वो मर जाए तो आराम से सोएं। घेसू ने आलू निकाल कर छीलते हुए कहा, जाकर देख तो क्या हालत है उसकी। चुड़ैल का फसाद होगा और क्या, यहां तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है। किसके घर से आए? माधु को अंदेशा था कि वो कोठड़ी में गया तो घेसू आलुओं का बड़ा हिस्सा साफ कर देगा। बोला, मुझे वहां डर लगता है। डर किस बात का है, मैं तो यहां हूं ही, तो तुम ही जाकर देखो ना। मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला भी नहीं, और फिर मुझसे ले जाएगी कि नहीं, कभी उसका मुंह तक नहीं देखा। आज उसका अघड़ा हुआ बदन देखूं, उसे तन की सुध भी ना होगी। मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी ना पटक सकेगी। मैं सोचता हूं कि कोई बाल बच्चा हो गया तो क्या होगा। सौंठ, गुड़, तेल कुछ भी तो नहीं है घर में, सब कुछ आ जाएगा। भगवान बच्चा दें तो जो लोग अभी 1 पैसा नहीं दे रहे हैं वही तब बुला कर देंगे। मेरे 9 लड़के हुए, घर में कुछ भी ना था, मगर इस तरह हर बार काम चल गया।
1: जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत इनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी ना थी, और किसानों के मुकाबले में वो लोग जो किसानों की कमजोरियों से फायदा उठाना जानते थे कहीं ज्यादा फारिगुल बाल थे, वहां इस किस्म की जहनियत का पैदा हो जाना कोई ताज्जुब की बात नहीं थी। हम तो कहेंगे घेसू किसानों के मुकाबले में ज्यादा बारीक बीन था, और किसानों की तही दिमाग जमीयत में शामिल होने के बदले शातिरों की फितना परदाज जमात में शामिल हो गया था। हाँ, उसमें यह सलाहियत ना थी कि शातिरों के आइन व आदाब की पाबंदी भी करता। इसलिए जहां उसकी जमात के और लोग गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे उस पर सारा गांव उंगश नुमाई कर रहा था। फिर भी उसे तस्कीन तो थी ही कि अगर वो खस्ता हाल है तो कम से कम उसे किसानों की सी जिगर तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती, और उसकी सादगी और बेजबानी से दूसरे बेजा फायदा तो नहीं उठाते। दोनों आलू निकाल निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ भी नहीं खाया था, इतना सबर ना था कि उन्हें ठंडा हो जाने दें। कई बार दोनों की जबानें जल गईं। छल जाने पर आलू का बैरूनी हिस्सा तो ज्यादा गर्म ना मालूम होता था, लेकिन दांतों के तले पड़ते ही अंदर का हिस्सा जबान और हलक और तालू को जला देता था, और उस अंगारे को मुंह में रखने से ज्यादा खैरियत इसी में थी कि वो अंदर पहुंच जाए। वहां उसे ठंडा करने के लिए काफी सामान थे, इसलिए दोनों जल्द जल्द निगल जाते थे, हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू निकल आते। घेसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई जिसमें 20 साल पहले वो गया था। उस दावत में उसे जो सैरी नसीब हुई थी वो उसकी जिंदगी में एक यादगार वाकया थी, और आज भी उसकी याद ताजा थी। वो बोला, वो भोज नहीं भूलता, तब से फिर उस तरह का खाना और भर पेट नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको पूड़ियां खिलाई थी, सबको, छोटे बड़े सबने पूड़ियां खाई, और असली

घी की चटनी, रायता, तीन तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई। अब क्या बताऊं कि उस भोज में कितना स्वाद मिला। कोई रोक नहीं थी, जो चीज चाहो मांगो और जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसा खाया कि किसी से पानी ना पिया गया। मगर परोसने वाले हैं कि सामने गरम गोल गोल महकती हुई कचौरियां डाल देते हैं, मना करते हैं कि नहीं चाहिए, मगर वो हैं कि दिए जाते हैं। और जब सब ने मुंह धो लिया तो एक एक बड़ा पान भी मिला, मगर मुझे पान लेने की कहां सुध थी, खड़ा ना हुआ जाता था। झटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया। ऐसा दरिया दिल था वो ठाकुर। माधु ने इन तकल्लुफात का मजा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोज खिलाता। अब कोई क्या खिलाएगा, वो जमाना दूसरा था, अब तो सबको खिपाए सूझती है। शादी ब्याह में मत खर्चो।

0: माधु ने इन तकल्लुफात का मजा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोज खिलाता, अब कोई क्या खिलाएगा, वो जमाना दूसरा था, अब तो सबको खिपाए सूझती है, शादी ब्याह में मत खर्चो। किरिया ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियां ओढ़कर पांव पेट में डालकर सो रहे जैसे दो बड़े बड़े अजदहे कुंडलियां मारे पड़े हों, और बधिया अभी तक कर्रा रही थी। सुबह को माधु ने कोठड़ी में जाकर देखा तो उसकी बीवी ठंडी हो गई थी, उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थी, पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी, सारा जिस्म खाक में लतपत हो रहा था, उसके पेट में बच्चा मर गया था।
1: मुअज़्ज़ज़ सामईन, गुलदस्ते उर्दू प्रोग्राम में अभी आपने समात फरमाया मुंशी प्रेमचंद का शाहकार अफसाना कफन का पहला हिस्सा। प्रेमचंद का कलम महज वाकयात का रावी नहीं बल्कि इंसानी बातिन का नब्बाज है। आपने गौर किया होगा कि कफन के किरदार अपनी खामोशियों में भी गुफ्तगू करते हैं, उनकी महरूमियाँ भी बोलती हैं, और उनके फैसले इंसान को एक ऐसे मकाम पर ला खड़ा करते हैं जहाँ जज्बात और हकीकत आमने सामने दिखाई देते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामईन, हमारा आज का गुलदस्ते उर्दू प्रोग्राम अपने अख्तिताम को पहुँचता है। उम्मीद है आपने आज की बज़्म को पसंद फरमाया होगा। लफ्ज़ों का ये काफिला अपने आखिरी मंजिल तक नहीं पहुँचा है। अगले हफ्ते हम अफसाना कफन का दूसरा और अख्तितामी हिस्सा आपको गोश गुजार कराएंगे और देखेंगे कि ये कहानी अपने अंजाम तक पहुंचकर हमारे दिलों में कौन सा पैगाम छोड़ जाती है। तब तक के लिए अपने मेज़बान निसार अख्तर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।

This is Radio Mauritius. घड़ी मिला लीजिए, शाम के ठीक 4 बज रहे हैं. आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. खुदा पे है भरोसा, इसी पे नाज करता हूँ, इलाही तेरे ही नाम से इस बज़्म का आगाज़ करता हूँ.

अतः गहराइयों से खैर मकदम करते हैं। जुम्मे का मुबारक दिन है, सैयदुल अय्याम, आप सब तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। 23 सफरुल मुजफ्फर और 7 अगस्त 2026, दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बाबरकत दिन के सदक़े में हम सब के गुनाह सगीरा और कबीरा को माफ़ अता फरमाए। एक बार फिर आप तमाम लोगों को यौम जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो।

हसब मामूल एक फ़िक्र, एक सोच से, एक ख़याल से इस बज़्म का आगाज़ कर रहे हैं कि ज़िंदगी मिली थी रब की इबादत के लिए, वक्त गुज़र रहा है कागज़ के टुकड़े के लिए। न कफ़न में जेब है, न कब्र में अलमारी। कमाल की बात तो ये है कि मौत का फ़रिश्ता रिश्वत भी नहीं लेता।

और जैसा कि मालूम है कि सफ़रुल मुज़फ़्फ़र में हमारी तवज्जो ख़ास मुजद्दिद दीन व मिल्लत मसलक आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मरकूज़ होता है, जिनका उर्स मुबारक अगले दो दिनों में मनाया जाएगा 25 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र को। और ये पूरा प्रोग्राम आज का सामीन आला हज़रत ही पर मुश्तमिल होगा।

और जैसा कि मैंने कहा कि पूरा प्रोग्राम सामीन आला हज़रत पर मुश्तमिल होगा। आज जुमे के मुबारक मौके पर हज़रत क़िबला लामा मुफ्ती मोहम्मद इसहाक़ क़ादरी रज़वी दामत बरकत मालिया ने भी जो बयान फरमाया वो आला हज़रत के हवाले ही था। आइए बाज़ाब्ता मजलिस का आगाज़ तिलावत कलम पाक से करते हैं। बग़ौर अदब समात करके अपने दिलों को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।

0: सामीन, अब तमाम लोगों को पेशगी पहले से ही उर्स आला हज़रत 108वां उर्स आला हज़रत बहुत बहुत मुबारक हो। जैसा कि मैंने आगाज़ में बताया कि आज 23 और दो दिन बाद 25 सफ़र और मुजफ़र को आला हज़रत का उर्स मनाया जाता है, और आज ये पूरा प्रोग्राम आला हज़रत ही पर मुश्तमिल होगा। जुम्मे के मुबारक मौके पर जमा मस्जिद पोटली में हज़रत क़िबला अलावा मुफ्ती मोहम्मद साक़ादी रज़वी दामद बरकत मौलिया ने जिस उन्वान का इंतखाब किया वो रहा आला हज़रत नूरे जबी, यानी आला हज़रत और उनके पेशानी का नूर, आला हज़रत और उनके पेशानी की रोशनी। पेश खिदमत है ये ईमान अफरोज बयान।
1: وسندنا ونبينا محمد المصطفى افتخار الأنبياء ومختار الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الأزكياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله المثل الأعلى صدق الله العظيم وبلغنا الرسول النبي أمي المكين المجيد الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حمد ثنا کے بعد عزیزان گرامی قدر, जैसा कि मालूम है कि 25 सफर को आला हज़रत नव्वर अल्लाहु मरकज़ का विसाल पूरी दुनिया में उनकी याद में मुख्तलिफ इल्मी फिक्री फिक्री अदबी मजालिस का इनेकाद होता है। सो इस मुनासबत से हमने आज के जमात मुबारक के लिए जिस टॉपिक को सेलेक्ट किया वो है आला हजरत और नूरे जबीन।

Ala Hazrat and his forehead light. Ala Hazrat aur unke peshani ka noor, unki peshani ki roshni. इससे पहले एक तमहीद है, उसे जहन नशीन फरमा लें ताकि असल मौजू को आप समझ सकें। वो ये है कि जिस तरह इन आंखों का नूर है, नूर उल बसर, द लाइट ऑफ फिजिकल आइज, इन मादी निगाहों की रोशनी, वैसे नूर उल कल्ब, द लाइट ऑफ द हार्ट, दिल की रोशनी। और फिर जब ये दिल की रोशनी पेशानी फोरहेड पर रिफ्लेक्ट होती है तो फिर वो नूरुल जबीन है, द लाइट ऑफ द फोरहेड, पेशानी का। सो नूरुल बसर, आंखों की बिनाई, इसकी रोशनी, ये तो आम है, अपनों के पास भी होती है बिनाई आंखों की और गैरों के पास भी होती है। इसमें अपनों की और गैरों की कोई तख्सीस नहीं, ये बिनाई अल्लाह पाक ने सबको आता किया, जैसे कि उसके शान रहमानियत का तकाजा है। लेकिन दिल की बिनाई, दिल की रोशनी, दिल का नूर, वो सबको आता नहीं किया, वो सबको नहीं दिया जाता। बीना दिल वाले, रोशन दिल वाले उसके खास बंदे होते हैं जिनकी आंखों की तरह उनका दिल भी रोशन होता, आंखों की तरह दिल भी बीना होता। डॉक्टर इकबाल ने फरमाया, दिल बीना भी कर खुदा से तलब, दिल बीना भी कर खुदा से तलब, आंखों का नूर है पर दिल का नूर नहीं। फरमाया इंसान अल्लाह से रोशन दिल मांग ले, अल्लाह से वो दिल मांग जिसमें रोशनी है, जिसमें नूर है। आस्क अल्लाह।

अल्लाह से वो दिल बांग जिसमें रोशनी है, नूर है, इसलिए कि तेरी आंखें तो बीना है मगर दिल ना बीना है। आंखों में रोशनी है मगर दिल में रोशनी नहीं है। अपनों गैरों का फर्क आंखों की रोशनी से नहीं होता, वो दिल की रोशनी से होता। वली और गैरे वली का डिफरेंस और फर्क आंखों के नूर से नहीं फकत दिल के नूर से होता है, दिल की रोशनी से, दिल की बिनाई से। इसलिए हम जहां अपनी आंखों की इन आंखों की बिनाई के लिए दुआ मांगते और मांगनी चाहिए अल्लाह की अजीम नेमत है, तो वहां दिल की बिनाई के लिए भी दुआ मांगनी चाहिए कि वो इससे भी अजीम नेमत है। और दिल की बिनाई अल्लाह की शान रहीमियत का तकाजा है। दिल की बिनाई उसे मिलती है जो दायरा शान रहीमियत में होता है, जिसे शान रहीमियत का फैज है। सो आला हजरत को अल्लाह पाक ने जहां बीना आंखें अता की वहां बीना दिल अता की, जहां उनकी बसारत रोशन थी, बसारत में नूर था, रोशनी थी, तो वहां उनकी बसीरत भी रोशन थी, वहां उन्हें नूरे बसीरत भी दिया गया, दिल की रोशनी भी अता की गई। आपके विसाल को 108 साल इस साल मुकम्मल, एक पूरी सदी गुजर गई उस बीना दिल से। इस दौर में उठने वाले फितनों को भी आपने देखा और इस दौर में उठने वाले फितनों का भी सद्देबाप। ये आंखें जब बीना होती हैं तो देखने की एक लिमिट है, एक हद है, उसके बाद इससे देखना मुमकिन नहीं है। लेकिन जब दिल बीना होता है, दिल रोशन होता है, तो फिर उसकी कोई लिमिट नहीं होती। वो दिल फिर सदियों बाद को भी देखता जिस तरह सदियों पहले से देखता। हुजूर कुदरतुल वासिलीन, उम्दतुल वासिलीन, फख्र वासिलीन, सैयदुना व सनदुना दाता अली हुजवेरी नंबर अल्लाह मरकज़हु अपनी मायानास किताब तसव्वुफ की कशफुल महजूर में इस टॉपिक को बहुत डिटेल से डिस्कस किया। उनके भी विसाल का महीना 20 सफर मुबारक, उन्होंने भी सदियों तक देखा। उनके विसाल को 900 साल से ज्यादा गुजरे। गौसे पाक जब छोटे थे तो उस वक्त आपका विसाल हो चुका था, बिल्कुल अवाइल के। उन अजीम औलिया और अकारम आज भी 24 घंटे मजार खुला रहता है और हुजूर में कभी नहीं आता। वहां की हर रात दिन की तरह है, हर दिन दिन से ज्यादा है। तो ये वो औलिया हैं जिन्हें अल्लाह पाक ने नूर बसारत के साथ, नूर बसीरत के साथ

जिन्होंने सदियों बाद उठने वाले फितनों को देखा और उसका इलाज किया। जहां में इमाम अहमद रजा नव्वर अल्लाह मरकदहू में ये लिखा है और आला हजरत की सीरत से जो किताबें लिखी गई उसमें ये तफसील से मौजूद है कि जब आला हजरत की उम्र शरीफ 22 साल थी, ओनली 22 ईयर्स, तो आपने पहला हज किया मक्का मुकर्रमा में बैतुल्लाह में आप मौजूद थे, नमाज मगरिब इतने में वहां के अजीम वली, अजीम आरिफ, मुहद्दिस, बड़े सूफी बुजुर्ग सैयदुना वसनदुना असैयद असनद शेख मोहम्मद हुसैन बिन सालिह मक्की अलैहि रहमतुल कवी, वो दाखिल हो गए। पहले कोई इंट्रोडक्शन और तारुफ न था। आला हजरत के शबाब का जमाना है, उनकी जवानी का जमाना है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि जब नूरे बसीरत अता होता है तो फिर इंसान उस नूरे बसीरत से क्या क्या देखता है, उसके सामने कौन कौन से दरवाजे खुल जाते हैं जो उन लोगों के सामने बंद हो जाते हैं जिन्हें नूरे बसीरत अता नहीं होता। तुम्हें बताइए कि जब शेख मोहम्मद हुसैन सालिह अल मक्की दाखिल हुए और उन्होंने आला हजरत को देखा तो निगाहें उन पे ठहर गई, फिर उनको देखते चले गए, फिर करीब करीब आकर फिर सर से पांव तक देखा। अब ये आंखें नहीं देख रही है फकत, अब फकत उनका नूरे बसर काम नहीं कर रहा था, उस वक्त नूरे बसीरत से देख रहे थे, सर से पांव तक देखा। व अखज बियदिही, फिर आला हजरत का हाथ पकड़ा और पकड़कर फरमाया इन्नी लाजिदु नूरल्लाह मिन हाज़ल जबीन, फरमाया मैं इस पेशानी पर, इस पेशानी में अल्लाह का नूर देखता हूं, नूरे इलाही का फैजान देखता हूं। एक नूरे इलाही है डिवाइन लाइट और एक फैजान नूरे इलाही है द ब्लेसिंग्स ऑफ द डिवाइन लाइट। नूर इलाही नूर सुभानी का फैजान, उसकी बरकत, उसकी ब्लेसिंग। उस अजीम आरिफ ने जो बताया उस वक्त में जब आला हजरत बिल्कुल जवान थे, 22 साल की उम्र शरीफ थी, और ये जो फरमाया कि मैं इस नौजवान की पेशानी पर नूर इलाही का फैजान देखता हूं, आने वाली जिंदगी और आला हजरत की जिंदगी के मुख्तलिफ पहलू, फिर इस फरमान की तफसीर बनी, इस फरमान की तफसीर बनी, और फिर मुजद्दिदीन को यह नूर औरों से मां सेवा अता होता, नूरे बसर और नूरे बसीरत बारगाह इलाही से, बारगाह मुस्तफ़ी से औरों से बढ़कर, इसलिए कि नूरे बसीरत से उन्हें कई दूर दराज इलाकों में और सदियों बाद उठने वालों उठने वाले फितनों को देखकर उसका सद्देबाब करना होता है, उसका इलाज करना होता है। मरज

जितना मुश्किल तो डॉक्टर उतना ही हाई होना चाहिए। आम बीमारियों के लिए आम और फिर खास बीमारियों के लिए स्पेशलिस्ट होते हैं। वो आम डॉक्टर का काम नहीं होता। तो मुजद्दिद अपने जमाने का जहां बहुत सारी खूबियों में यकता होता तो वहां वो नूरे बसीरत में भी यकता होता। और ये वो नूरे बसीरत है जिसकी तरफ अल्लाह पाक ने सूरह अल कलम में इशारा फरमाया, नून वल कलम वमा यस्तुर। कसम है नून, सूफिया ने ये भी लिखा नून की मुख्तलिफ तफासीर कि हाजा नूरुल बसीरा, कि जिस नूर का तस्किरा अल्लाह पाक ने सूरह अल कलम में फरमाया, नून में जिस नूर की कसम उठाई, ये औलिया और अफा का नूर बसीर। तो वो नूर कितना अजीब होगा जिस नूर की कसम अल्लाह उठाए। इसलिए हम आला हजरत की मनकबत में ये पढ़ते हैं कि नाशिरे हुक्म शरीयत आला हजरत पढ़े, नाशिरे ऊंचा, नाशिरे हुक्म शरीयत आला हजरत आप हैं, शाहिदे हुस्न नबूवत आला हजरत आपको याद हो कि न याद हो, याद हो या भूल गए, मैंने तो 21 साल में जो जो खुतबा और खिताब दिया सब याद है। अभी बहुत करीब में मैंने खिताब किया शाहिद हुस्न नबूवत और आला हजरत सूरह बुरूज, जिन्होंने नहीं सुना तो वो खिताब तलाश करके सुन लें। मैं आपको सिर्फ मंबा बता रहा हूं, सोर्स, कि ये नूरे बसीरत आता कहां से, ये नूरे बसीरत मिलता कैसे है, ये दिल बीना कैसे होता, ये दिल रोशन कैसे होता, इस दिल में रोशनी कहां से। तो दूसरे मिसरे में उसका जवाब, शाहिदे बोलिए, शाहिदे हुस्न नबूवत आला हजरत आप हैं। जब हुस्न नबूवत के पर्दे उठते हैं, जमाले रिसालत से पर्दे उठते हैं और आशिक के सामने हुस्न नबूवत होता है, हुस्न रिसालत होता है, वो उस हुस्न को देखता जाता है और खुदा उसके दिल को बीना तो आरिफ वली का नूर बसीरत वो हुस्न नबूवत से है, हुस्न रिसालत से है। आला हजरत ने यूं ही नहीं फरमाया उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा, बोलिए उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा के नूरे बारी हिजाब है। इसलिए अल्लाह पाक ने अव्वल खल्क फस क्रिएशन नूरे मुस्तफा रबीउल अव्वल शरीफ कियामत आशिकों ताजदारे कायनात के हुस्न के तस्करे करके, आपके शमाइल फजाइल बयान करके, आपके नूर के तस्करे करके और आप पर दुरूद व सलाम पढ़कर माह रबीउल अव्वल का इस्तकबाल, आला हजरत का विसाल सफर में इशारा है, इशारा है कि जहां याद रजा है वहां इस्तकबाल आमद मुस्तफा। जिन्होंने जिंदगी भर ताजदार कायनात की आमद का इंतजार किया और कब्र में दीदार मुस्तफा तो दीदार करके उन्होंने आमद के तस्करे किए। और आशिक इस दुनिया में जब आका की मीलाद का महीना आता है तो मीलाद में हुस्न मुस्तफा और नूरे मोहम्मदी के तस्करे करता है कि नूरे मोहम्मदी सोर्स है नूरे बसीरत, इस नूर से फिर दिल भी होता है, इससे दिल रोशन होते हैं। इसलिए आला हज़रत ने फरमाया चमक, बोली चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। वमा अलैना

आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की नात गोई उर्दू अदब और इस्लामी माशरे का और इस्लामी शायरी का एक दरख्शां बाब है। आपकी नातिया शायरी इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अदब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अकीदत मोहब्बत के पाकिज़ा जज्बात से लबरेज़ हैं। आपके कलाम में जहाँ कुरान और हदीस की रोशनी महसूस होती है, वहीं फसाहत, बलागत और अदबी हुस्न भी अपने उरूज पर नज़र आता है।

मरहूम ज़ुल्फ़िकार अली की आवाज़ में अभी आप आला हज़रत का मारूफ़ कलाम समाप्त कर रहे थे सामीन। जहाँ तक मुझे याद है, ये कलाम मॉरिशस ही में इसकी रिकॉर्डिंग की गई थी। अल्लाह तबारक व ताला मरहूम की मगफ़रत फरमाए और करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। सामीन, आला हज़रत की शख्सियत, इल्म, तक्वा, आजिज़ी और इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हसीन इम्तिजाज रही। आप न सिर्फ एक अजीम आलिम रहे बल्कि एक बाअमल सूफ़ी और मसलह उम्मत भी थे। आप रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी, इबादत अख़लाक़ हसना और ख़िदमत दीन से इबारत रही। लाखों अफराद ने आपके इल्म फैज़ से इस्तफादा किया और आज भी दुनिया भर में आपकी तालीमात लोगों के लिए मशअल राह है और बिलयक़ी क़यामत तक लोगों के लिए एक मशअल राह रहेगी। आपकी ज़ात उस हकीकत की रोशन मिसाल है कि जब इल्म के साथ इखलास, तकवा और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमा हो जाएं तो एक फ़र्द पूरी उम्मत की रहनुमाई का ज़रिया बन जाता है। सामीन कराम, एक बार फिर आला हज़रत फाजिल इमाम अहमद रज़ा ख़ान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का 108वां उर्स आप तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। पेश खिदमत है मनकबत के चंद अशार और इसी के साथ ही आज की ये महफिल अख्तिताम को पहुँच जाएगी। आपकी तवज्जो के लिए शुक्रिया। अगली मुलाकात तक अनुर को इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: आप तमाम सामीन को ये शाम मुबारक। आप साथ दे रहे हैं रेडियो मॉरिशस की लहर पर, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं एक हसीन प्रोग्राम। जी हाँ अज़ीज़ सामीन, गीत और गज़ल का ये हसीन प्रोग्राम जहां से भी आप साथ दे रहे हैं आपका खुशामदीद है। तो चलिए ये पहला तराना आपके नाम करते हैं।

कुछ बोल के दिल का बोझ हल्का कर लिया करो। लफ्ज चाहे कितने भी कम हो, जज्बात को आवाज जरूर दिया करो। ये रेडियो मॉरिशस है, आप साथ दे रहे हैं गीत और गजलों के सुहाने सफर में। मोहब्बत के रास्ते में हर मोड़ पर एक नया एहसास होता है, कभी बेपना चाहत तो कभी बस एक खामोश तस्लीम, एक ऐसी राजदारी जहां हम किसी से बग़ैर किसी शर्त के मोहब्बत करते हैं। बस वही एहसास जहां शिकवा नहीं, सिर्फ़ एक पाकीज़ा कबूलियत होती है। ग़ुलाम अली।

यकीनन जिंदगी के सफर में कभी कभी हम ऐसी जगहों और ऐसे मोड़ पर आकर खड़े हो जाते हैं जहां हर गली हर दिशा अपना सा लगता है पर कोई अपना नहीं होता। पेश खिदमत है अगला तराना। दिल में एक ऐसी खामोशी उतर आती है जहां इंसान अपने आप से सवाल करने लगता है। जब रास्ते गुमनाम हो जाए और मंजिल ढूंढली तो दिल बस एक ही चीज़ तलाश करता है, कुछ सुकून और थोड़ी सी खुशी। के की आवाज़ में मुलायजा फरमाइए।

ये रेडियो मॉरिशस है गीत और गजलों की दुनिया में, जहां बातें हैं सीधे दिल से दिल तक और संगीत है रूह को छू लेने वाला। मजी जामीन, आज की शाम हमने सजाए हैं कुछ ऐसी शायरी, ऐसे नख़मे, ऐसी गज़लों के नाम जो खामोशियों को भी एक खूबसूरत आवाज़ देते हैं, एक ऐसा एहसास जो दुनिया के हर इंसान को एक दूसरे से जोड़ता है। मज़ी सामीन, मोहब्बत और ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पहलू ही ये है कि हम एक दूसरे के दर्द के आईने में अपना अक्स देख लेते हैं। जगजीत सिंह की मधुर और रूहानी आवाज़ में सुनते हैं ये सदाबहार गज़ल, समाअत फरमाइए।

आप यूं ही हमारा साथ देते रहें, यूं ही जख्मों को संगीत का मरहम देते रहेंगे। जिंदगी में कभी ऐसा मोड़ आता है जब जिन हाथों को थाम कर हमने चलना सीखा, जिन आँखों में हमने अपना कल देखा, वही हाथ छूट जाते हैं और वही आँखें अजनबी बन जाती हैं। सहारे जब छूटते हैं तो दिल टूटते हैं, पर वही टूटता हुआ दिल संगीत और शायरी की शक्ल में अमर हो जाता है।

खबर ही ना हुई कि कब वक्त बीत गया, कुछ ढूंढते ढूंढते दिल कहाँ निकल गया। लफ्ज़ तो बहुत थे कहने को, पर जब जबान खोली तो एक खामोश फरियाद में सब सिमट गया। मज़ी सामीन, कुछ हम आग की तरह होते हैं जिन्हें बुझाने के लिए आँखों से सैलाब का गुजरना ज़रूरी होता है। राहत फ़तेह अली ख़ान की आवाज़ में ये अगला तराना पेश खिदमत है।

वैसे तो जिंदगी की मिसाल बिल्कुल एक किताब की तरह है, जहां हर दिन एक नया पन्ना पलटता है। मज़ेज़ामीन, कुछ पन्ने खुशियों से भरे होते हैं और कुछ यादों के साए में लिपटे हुए। ऐ दोस्त, इस गज़ल के फ़लसफे के बाद जब हम किताब के आखिरी पन्ने पर पहुंचते हैं तो सामने आता है रुखसत यानी अलविदा का वो पल, जब कोई अपना दूर चला जाता है तो पीछे छोड़ जाता है सिर्फ उनकी यादें और एक खामोश इंतज़ार। जाने वाले तो खामोशी से गुज़र जाते हैं, रह जाते हैं फ़कत

यादों के दिए जलते हुए उनके कदमों के निशान ढूंढने सही, पर दिल के रास्ते पर हमेशा जिंदा रहते हैं। इसी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक परवीज़ और अंजू को इजाज़त, खुदा हाफिज़।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: शाम के ठीक 6 बजे हैं। नमस्कार, शुक्रवार 7 अगस्त 2026 के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। आज की सुर्खियां इस प्रकार हैं। साइकिलिंग में टू डे फ्रांस फार्म के छठे चरण में मॉरिशस की किम्बर्ली लोकोपियन ने शानदार जीत दर्ज की है। ये ग्रैंड बुकल में उनकी दूसरी जीत है। कठिन चुनौतियों के बावजूद उन्होंने अपनी शारीरिक और मानसिक मजबूती का परिचय देते हुए रोमांचक स्प्रिंट में जीत हासिल की। विपक्ष नेता बनने के अगले दिन चेतन बाबूलाल ने कहा कि वे राज्यसभा में जनता की आवाज बनेंगे। संसदीय अवकाश के बावजूद उन्होंने अपने प्राथमिक मुद्दे तय कर लिए हैं। ये एक बेहद दुर्लभ घटना है। लुबुशों के तट पर 3 दिनों में ब्लेनविल्स बीक्ड वेल्स के एक नर, उसके बच्चे और फिर उसकी मां की लाशें मिली। विशेषज्ञ इसे इस प्रजाति के लिए दुनिया में अपनी तरह की पहली घटना मान रहे हैं। पोटली के सेंट्रल मार्केट के सब्जी विक्रेता बाजार के आसपास मौजूद सड़क विक्रेताओं के खिलाफ अधिकारियों से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह अवैध प्रतिस्पर्धा उनके कारोबार को प्रभावित कर रही है। इस पर नगर पालिका ने पुलिस गश्त और नियंत्रण सख्त करने का फैसला किया है। और विदेश में अमेरिका के न्यू मेक्सिको में मेटा पर बच्चों की सुरक्षा से जुड़े जोखिमों के मामले में $567 मिलियन का अतिरिक्त जुर्माना लगाया गया है। ये इस मामले में कंपनी पर लगाया गया अब तक का सबसे बड़ा जुर्माना है। पेश अब समाचार विस्तार से। साइकिलिंग में टू डे फ्रांस फार्म और हमारी देशवासी किम्बर्ली लोकोपियन के नाम एक और जीत दर्ज हो गई है। उन्होंने कल 2026 के संस्करण के छठे

0: चरण में जीत हासिल की। जोखों बुकल में उनकी दूसरी जीत है। तमाम मुश्किलों का सामना करने के बावजूद किम्बर्ली ने एक शानदार स्प्रिंट के अंत में जीत हासिल करने के लिए अपनी शारीरिक और मानसिक दोनों ताकतों का बखूबी इस्तेमाल किया। विकास बागेगत से गीता सुनारान।
1: खुशी का ठिकाना नहीं है और इसकी वजह भी खास है। किम्बर्ली लुकू पेनो ने महिला साइकिलिंग की दुनिया की दिग्गज खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया है, खासकर लोरेना वेब्स को, जिन्हें बड़े स्प्रिंट मुकाबले में लगभग अजय माना जाता था। इस शानदार जीत के बाद उनका पहला संदेश मॉरिशस में मौजूद अपने सभी समर्थकों और खासकर मौके पर मौजूद प्रशंसकों के लिए था। अनुनो के नारों से माहौल गूंज उठा। मॉरिशस के समर्थकों ने किम्बर्ली की इस ऐतिहासिक उपलब्धि का जोरदार जश्न मनाया। कल शाम छठे चरण की फिनिश लाइन पर ये यादगार दृश्य देखने को मिला।
2: Deline Maurice qui lance, ça y est, Kim Lecour qui lance le sprint, et Célia Géry qui est en position idéale. Attention à Puck Peeters qui fait l'extérieur. Ah ouais, Peeters. La néerlandaise, Puck Peeters en première position.
3: Elle n'a pas les jambes, Géry.
2: Mais attention, Puck Peeters qui est toujours devant, Puck Peeters, Kim Lecour, Cédric Carval et la victoire de Kim Lecour ici à Tournon-sur-Rhône.
1: Ye uplabdhi Kimberly Lecour Pienaar ke liye kisi bade karname se kam nahi. Tour de Flandre ke dauran कलाई में फ्रैक्चर होने के बाद ऐसा लग रहा था कि उनका ये सीजन शायद कभी रफ्तार नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन लियेज बास्टोन लियेज 2025 की विजेता ने हार नहीं मानी और जीत हासिल करने के लिए उन्होंने पूरी कोशिश की। उनका कहना है कि किसी चरण में जीत हासिल करने का आनंद सामान्य क्लासिफिकेशन में अच्छा स्थान पाने से भी कहीं ज्यादा खास होता है। उन्होंने इस सफलता का श्रेय अपनी पूरी टीम के शानदार सहयोग को भी दिया। ये प्रदर्शन उनके अब तक फीके रहे सीजन में नई चमक लेकर आया है। तीस साल की उम्र में किम्बर्ली लुकू पेनो ने टूर डी फ्रांस महिला वर्ग में अपने करियर की दूसरी जीत दर्ज की है। उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया कि वे विश्व साइकिलिंग की पहली खिलाड़ियों में शामिल हो गई हैं।
0: पोटली की ओर रुख करते हैं। सेंट्रल मार्केट के सब्जी विक्रेता अधिकारियों से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं, क्योंकि बाजार के आसपास स्ट्रीट विक्रेता मौजूद हैं। उनका मानना है कि ये प्रतिस्पर्धा, जिसे वे अवैध मानते हैं, सीधे तौर पर उनके कारोबार को प्रभावित कर रही है। नगर पालिका द्वारा पुलिस गश्त और नियंत्रण को और सख्त करने का निर्णय लिया गया है। दासापाला स्वामी, गीता सुनारान।
1: ये तस्वीरें बुधवार की हैं। पोटलिस के सेंट्रल मार्केट के सब्जी वालों ने बाजार के आसपास सड़क किनारे कारोबार करने वाले फेरी वालों की मौजूदगी के खिलाफ विरोध किया था। उनका ये भी कहना है कि ये समस्या कई वर्षों से चली आ रही है और इससे उनके कारोबार पर बुरा असर पड़ रहा है। वे कहते हैं कि फेरी वाले कानून के दायरे से बाहर कारोबार कर रहे हैं और खासकर 500 मीटर की निर्धारित सीमा का पालन नहीं कर रहे हैं। इस शुक्रवार को दिन के 12 बजे बाजार के आसपास की सड़कें पहले की तुलना में कम व्यस्त दिखाई दीं। कुछ फेरी वाले अभी भी मौजूद थे। हमारी कैमरा की टीम को देखते ही कुछ लोग वहां से चले गए, जबकि कुछ अन्य लोगों को पुलिस ने स्थान खाली करने को कहा। लॉर्ड मेयर क्रिस्टेल पोंडो कहती हैं,
4: déjà peut promener action nous emmène inspecteur de la municipalité qui autour marché central qui peut promener action nous emmène la police qui fait zone ban round puis événement sont là aller mais à chaque fois que la police allait c'est très vite. Et donc aujourd'hui même ce matin on a une rencontre avec la police, nous avons besoin un petit peu plus sévère, prendre plus action
5: depuis nous rendirait nous lever la voix banane prendre coucou.
1: लेकिन ये सवाल अब भी हैं

0: कि ये स्थिति कब तक बनी रहेगी। नगर पालिका का कहना है कि फेरी वाले विक्टोरिया अर्बन टर्मिनल में पूरी तरह कानूनी तरीके से अपना कारोबार कर सकते हैं।
1: Nous on a beaucoup d'étals qui libre plus de 200. Le loyer à la Ben Victoria, il est 4000 roupies mensuellement. À n'importe quel moment, vous êtes dans la municipalité, vous demandez une place, nous donnons autre. Et aussi, il y a une place qui est aménagée à la gare du Nord. Et là aussi, la majorité, ben, l'étal là, il est vide. C'est une place qui nous mettait, qui à la disposition, qui nous permet de faire autres payer, les autres courants, les autres payer, les autres portables.
0: अब ये देखना होगा कि क्या ये कदम कई वर्षों से व्यापारियों और फेरी वालों के बीच चले आ रहे इस विवाद का स्थायी समाधान निकाल पाएंगे या नहीं।
2: विपक्ष नेता के रूप में नियुक्ति के अगले ही दिन चेतन बाबूलाल ने कहा कि वे राष्ट्रीय सभा में जनता की आवाज बनकर काम करेंगे। हालांकि उनका कार्यभार संभालना संसदीय अवकाश के दौरान हुआ है, फिर भी नए विपक्षी नेता ने पहले से ही कुछ प्राथमिक मुद्दों को तय कर लिया है।
0: अपने नए दायित्व की जिम्मेदारी संभालते ही चेतन बाबूलाल ने इसे पूरी गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ निभाने का संकल्प लिया है। उनका कहना है कि राष्ट्रीय सभा के स्टैंडिंग ऑर्डर्स उनके लिए मार्गदर्शक का काम करेंगे, ताकि वे सदन में जनता की आवाज प्रभावी ढंग से उठा
3: सकें। Travail de leader de l'opposition, les poupées, check and balances, le tout bonne décision qu'ils ont prend, le tout bonne mesure qu'ils ont pu prendre.
0: चुनाव क्षेत्र नंबर 10 मोताई ब्लॉन्च ग्रैंड रिवर साउथ ईस्ट से निर्वाचित चेतन बाबूलाल का कहना है कि वे पूरी विनम्रता के साथ अपनी नई जिम्मेदारियां निभा रहे हैं।
3: Beaucoup de dossiers qui prioritaire. Quand on get par exemple coup de la vie même. Coup de la vie vient bien sûr qui ban mesure nous capable amener pour soulager la population quand nous get l'inflation, nous get des lots problème des lots, CIB, courant, électricité peut monter puis aller même. Donc, nous avons beaucoup de dossiers, nous avons l'éducation.
0: 48 वर्षीय फ्रॉम मिलिटेंट प्रोग्रेसिस्ट के सांसद इस पद को संभालने वाले 17वें नेता हैं। उनका कहना है कि वे विपक्ष के सभी सदस्यों के साथ मिलकर काम करेंगे।
3: En consultation, et nous organisons nous-mêmes dans l'opposition. Nous avons un grand leader de l'opposition et camarade pour nous-mêmes, si un des plus grands leaders de l'opposition, donc à son côté, vous pensez. Exo aide, exo guidance, vous pensez, vous pourrez faire mon travail, comment vous allez faire?
0: अपना पहला पीएनक्यू पूछने से पहले नए विपक्ष के नेता संसदीय छुट्टियों का उपयोग पूरी तैयारी करने और अपनी रणनीति को मजबूत बनाने में करेंगे।
2: ये एक अत्यंत दुर्लभ घटना है, जिसे विशेषज्ञों के अनुसार इस प्रजाति के लिए दुनिया में अपनी तरह की पहली घटना माना जा रहा है। लुबुशों के तट पर 3 दिनों के भीतर ब्लेनवेल्स बीक्ड वेल्स की 3 लाशें तट पर बहकर आई। एक वयस्क नर, 1 साल के से कम उम्र का उसका बच्चा और फिर 2 दिन बाद उसकी माँ। इस परिवार की मौत की क्या वजह थी, चलिए जानते हैं अंजू राम गुलाम की इस रिपोर्ट में। विवरण अशिता रखू का है।
4: मंगलवार को पहली खबरें सामने आई। एक वयस्क नर वेल यानी पिता और उसका बैलिनो बच्चा समुद्र तट पर लुबुशों में मृत पाए गए।
5: पापा ए पिची बालन बेबी बालन दी ट्रो विल्नेरेबल।
4: पिता और बच्चा वेल बहुत कमजोर होते हैं, यदि शॉक या अन्य खतरनाक जल जंतुओं से वे टकरा जाते हैं। वे घबरा गए थे और ये गहरे समुद्र में रहने वाले होते हैं, और यदि ये हमारे लगून में पहुंचे हैं तो 80 सेंटीमीटर से 1.2 मीटर गहरा है, मतलब ये राह से भटक गए होंगे और बाहर नहीं निकल पाए थे। ये बहुत ही मिलनसार और सामाजिक स्वभाव वाले जानवर हैं। शायद माता वेल आसपास ही हैं, क्योंकि वह अपने बच्चे से दूर नहीं रह सकती। इस इंटरव्यू के तुरंत बाद गुरुवार को उसी इलाके में एक तीसरा शव भी मिला। विशेषज्ञों के अनुसार ये बहुत संभवतः वयस्क मादा वेल यानी माँ का शव है। उसका शरीर काफी सड़ गल चुका था, जिसे मौशिकुज में दफनाया गया है। पिता वेल और उसके बच्चे के शवों को लावानी नेचर पार्क की शव गृह में ले जाया गया। भावनाओं से परे ये खोज वैज्ञानिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। ग्रिफिथ के संपर्क में आए वेल विशेषज्ञ पोलैंड के विशेषज्ञ वोजटेक बशा के अनुसार अब तक 550 ब्लेनविल बीक वाले वेल तट पर आकर

0: फंसने के मामले दर्ज किए गए हैं, लेकिन अब तक इनमें से कोई भी मामला पूरे परिवार से जुड़ा नहीं था, इसलिए ये दुनिया में अपनी तरह का पहला मामला हो सकता है। विशेषज्ञ अब ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इन जानवरों को किन परिस्थितियों में किनारे तक आना पड़ा और सबसे महत्वपूर्ण बात, उनकी मौत का कारण क्या हो सकता है।
1: Si trois animaux comme ça meurent ensemble, c'est peu probable que c'est une maladie. On aurait pu comprendre ça si c'était un seul.
0: यदि तीन ऐसे जानवर साथ मरे हैं तो ये संभव नहीं है कि ये बीमारी से ग्रस्त हो, पर यदि एक होता है तो संभव है। बीक व्हेल 1000 मीटर की गहराई में तैरकर खाना ढूंढने के लिए प्रसिद्ध है। यदि कुछ उसे डराता है तो वह जल्द ही खाता है और वह घबराहट में मर भी सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार यही हुआ होगा। स्वाभाविक कारण हो सकता है कि शौक मछलियों ने इन्हें गहराई में डराया होगा। जो ध्यान देने योग्य है वह ये है कि इस तरह के व्हेल को कुकी कैथर शौक भी कहती है। वे आते हैं और केवल व्हेल को काटकर चले जाते हैं, और इस प्रजाति के शौक हमेशा इस तरह के व्हेल मछलियों का शिकार करती हैं। अगर माँ व्हेल, पिता और बच्चा अपने आखिरी पलों में एक दूसरे से अलग हो गए थे तो हम ये कल्पना करना पसंद करेंगे कि अब वे फिर से एक साथ हैं और समुद्री जीवों के स्वर्ग में तैर रहे हैं।
2: वर्ष 2026-2027 के बजट में लुमोन के सांस्कृतिक परिदृश्य के पुनर्वास के लिए 3 साल की अवधि में 124 मिलियन रुपए प्रदान किए गए हैं। आगंतुकों के स्वागत के लिए थोशनी में कई संरचनाओं के निर्माण के साथ इसका पहला चरण शुरू होने की योजना है। यूनेस्को की मंजूरी मिलने के बाद शुरू होने वाले ये काम लगभग 6 महीने तक चलने की उम्मीद है। कला एवं संस्कृति मंत्री माहिन गुंदिया और सभी संबंधित साझेदारों ने स्थल का दौरा किया। सिंचा मुत्यु, गीता सुनारान।
3: लोगों के स्वागत के लिए एक प्रशासनिक कार्यालय, एक कियोस्क, हस्तशिल्प वस्तुओं की बिक्री के लिए एक दुकान और शौचालय। लुमोन पर्वत के नीचे स्थित थोशेनी स्थल के विकास की परियोजना अब आकार ले रही है। इमारतों की वास्तुकला इस तरह तैयार की गई है कि वे प्राकृतिक वातावरण के साथ पूरी तरह मेल खाएं। निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्री भी पर्यावरण के अनुरूप होगी। लुमोन हेरिटेज ट्रस्ट फंड की अध्यक्षा जाना बाबली कहती हैं, हर महीने 6 से 7 हजार लोग यहाँ आते हैं। यहाँ प्रवेश करने का मार्ग बहुत खराब हो गया है, इसे सुव्यवस्थित किया जाएगा। इन झोपड़ियों की भी मरम्मत की जाएगी। ये एक विश्व विरासत स्थल है और ये परियोजना यूनेस्को को सुपुर्द की जाएगी, ये देखने के लिए कि ये मानदंडों के अनुरूप हैं या नहीं। यूनेस्को की मंजूरी मिलने के बाद निर्माण कार्य शुरू होगा, जो लगभग 6 महीने में पूरा होने की उम्मीद है। कला एवं संस्कृति मंत्री महेंद्र गुंजिया कहते हैं, सरकार ने यहाँ 124 मिलियन रुपए लगाए हैं 3 वर्षों के लिए, ताकि इस जगह को पूरी तरह से बेहतर किया जा सके। यूनेस्को की मांगों को पूरा करते हुए ऐसा किया जाएगा। सांसद गाविन जगन्नाथ कहते हैं, मुझे खुशी है, दक्षिणी इलाके के लिए ये एक अमूल्य स्थल है। इलाके के लोगों को नौकरी मिलेगी। दिसंबर 2027 से इसे फिर से खोलने की उम्मीद है। इस परियोजना में एक नए पार्किंग स्थल का निर्माण भी शामिल है। साथ ही इस जगह को व्हीलचेयर का उपयोग करने वाले लोगों के लिए भी पूरी तरह सुलभ बनाया जाएगा।
2: एबेन के हेनेसी पार्क होटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रिफॉर्म पार्टी ने राजनीतिक और आर्थिक स्थिति की समीक्षा की। ड्रग्स तस्करी, विदेशी मुद्रा की कमी, आयात पर निर्भरता और फाइनेंस बिल चर्चा के मुख्य विषयों में शामिल थे। होशिबादे ने आगामी ग्राम चुनावों में अपनी पार्टी के भाग लेने की भी घोषणा की। सहाउनो अशिता रघु।
0: प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रिफॉर्म पार्टी के नेता ने नेशनल असेंबली में फाइनेंस बिल पर हुए मतदान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। फाइनेंस बिल में कहा गया है कि यदि एक गाड़ी का बीमा 2 मिलियन रुपए से अधिक है तो इंश्योरर को एमओआरए को इसके बारे में सूचित करना होगा। यही कदम बिजली उपभोग पर भी लागू है। यदि एक व्यक्ति 8 से 9 हजार रुपए पार करता है, यानी वर्ष का लगभग 1 लाख रुपए, सीबी को जांच के वास्ते एमओआरए को सूचित करना होगा। सीडब्ल्यूए के लिए भी ये लागू होता है। अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई, जिनमें विदेशी मुद्रा की कमी, देश की आयात पर अत्यधिक निर्भरता और युवाओं में बढ़ती नशीली दवाओं की समस्या शामिल थी। रिफॉर्म पार्टी ने ये भी मांग की है कि वेरोनिक लुगोविन अपनी सांसद पद से इस्तीफा दें, जब तक कि गुलशन गोविन से जुड़े कथित ड्रग तस्करी मामले की जांच पूरी नहीं हो जाती। पार्टी ने ये भी पुष्टि की है कि

0: वह आगामी ग्राम परिषद चुनावों में हिस्सा लेगी।
1: न्यू मेक्सिको अमेरिका ने के एक न्यायाधीश ने मेटा को जनता को उसके प्लेटफॉर्म से बच्चों को होने वाले खतरों के बारे में चेतावनी देने में विफल रहने के लिए $567 मिलियन का अतिरिक्त जुर्माना चुकाने का आदेश दिया है। बाल सुरक्षा को लेकर कंपनी के खिलाफ ये अब तक का सबसे बड़ा जुर्माना है। थाईलैंड में एक किशोर लड़के द्वारा कथित तौर पर अपने दादा दादी और स्कूल के शिक्षकों को गोली मारने के बाद कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई है और 15 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। विस्तार सुमेरा अकबर अली के साथ।
2: थाईलैंड में बैंकॉक के पास स्थित स्कूल में ही गोलियां चलाई गई हैं। 8 मौतों की पुष्टि की गई, जिनमें 5 अध्यापक शामिल रहे। अधिकारियों के मुताबिक 14 साल का संदिग्ध हमलावर भी जान से गया है। 30 से ज्यादा लोग जख्मी हुए, जिनमें 9 की हालत गंभीर बताई जाती है। थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा कि हमला पहले से अच्छी तरह योजित था और इसके साफ कदम और साफ लक्ष्य थे। एक छात्र ने बताया कि उसने एक अध्यापक को गोली लगते देखा, जबकि दूसरी छात्रा ने कहा कि वो और उसके दोस्त जान बचाने के लिए स्कूल की दीवार पार करके भाग गए। अधिकारियों ने लोगों से डेप्सिरिन स्कूल के पास वाले इलाके से दूर रहने की अपील की। ये इस साल थाईलैंड में दूसरे स्कूल में गोलीबारी की घटना है। थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने इस हादसे के चलते नया फायर आर्म्स कंट्रोल लॉ लाने का वादा किया। प्रस्तावित कानून के तहत आम लोगों के बंदूक लेकर चलने पर सख्त पाबंदियां लगाई जाएंगी। हालांकि उन्होंने अभी इस कानून के बारे में अधिक जानकारी नहीं दी। ये भी स्पष्ट नहीं किया गया कि नए नियम बंदूक की मालिकियत यानी गन ओनरशिप के नियमों को और सख्त बनाएंगे या नहीं।
1: और आखिर में चले जानते हैं स्थानीय मौसम का हाल अशिता रघु के साथ।
0: आम हालत, हमारे इलाके पर सामान्य से अस्थिर हवाओं का बहाव है। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान किया जाता है कि रात के दौरान बादल घिरे रहेंगे और कल सुबह भी बादल घिराएंगे और रहकर बारिश होती रहेगी। विशेषकर पूर्व दक्षिण और सेंट्रल प्लेटू पर कोहरा छाया रहेगा। कल दिन के दौरान बादल घिरे रहेंगे और हल्की बारिश होगी पूर्व और ऊंचाई वाली इलाकों पर। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी और झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुँच सकती है। समुद्र प्रवाह रेखा के पार खराब रहेगा और पूर्व की ओर से 2 मीटर 50 सेंटीमीटर के ज्वार उठेंगे। खुले समुद्र में न निकलने की सलाह दी जाती है। तापमान, अधिकतम तापमान सेंट्रल प्लेटू पर 22 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटू पर 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच और साहिली इलाकों पर न्यूनतम तापमान 20 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्यास्त शाम 5:54 पर और कल सुबह सूर्योदय 6:36 पर।

तो मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही समाचार समाप्त हुए। हम शिव को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं। इस समय शाम के 6:20 हुए हैं। थोड़ी देर में आप शोक समाचार सुन पाएंगे। लीजिए शोक समाचार सुनिए। रॉय रोड बिल विधेयक में 32 साल के 32 years old के जनाब अली अजहर मुईदीन, जो अजहर नाम से भी जाने जाते थे, इंतकाल कर गए हैं। उनका जनाजा आज रात पौने नौ बजे उनकी माँ बीबी अमीना मुईदीन के घर रॉय रोड बिल विधेयक से उठाकर सबसे पहले नमाज जनाजे के लिए बिल विधेयक की अलहे बैत मस्जिद ले जाया जाएगा और फिर दफनाने के लिए बोबालाल माटी का कब्रिस्तान। फ्यूनरल टुनाइट एट 8:45। रेलवे रोड सेंट मिशेल बेलेरिविया सेश में 77 साल की 77 years old की श्रीमती इंदुमती भवन, पैदायशी नाम भी देसी, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल दिन के 1 बजे उनके बेटे धर्मदेव भवन के घर रेलवे रोड सेंट मिशेल बेलेरिविया सेश से उठाकर बुशों की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 1 PM। नंबर 17 एवेन्यू दे इबिस सुदना कटरबोन में 86 साल के 86 years old के श्री पुबाला सुंदरन और नासालापा

पातिया जो बाला बिल पातिया नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं, उनके अर्थ ही कल दिन के 11 बजे उनके घर नंबर 17 एवेन्यू दे इबिस सुदना कटरबोन से उठाकर पाल्मा की शमशान भूमि दी जाएगी क्रिमिशन टुमोरो एट 11 AM। रारो डेल सिनाल में 60 साल की 60 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती उषा जुगिया, पैदाइशी नाम इसेरहिया और जो नानी गातो नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है, उनके अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके बेटे वीरू जोगिया के घर रारो डेल सिनाल से उठाकर बम औषों की शमशान भूमि दी जाएगी क्रिमिशन टुमोरो एट 10 AM। एसएसओ रोड मोसेलमों से तौंधे में 66 साल के 66 ईयर्स ओल्ड के श्री सुरेश नंदलाल चुनी जो कंट्रोलर टीबीएस नाम से भी जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं, उनके अर्थ कल दिन की 11 बजे उनके घर एसएसओ रोड मोसेलमों से तौंधे से उठाकर वहीं की शमशान भूमि दी जाएगी क्रिमिशन टुमोरो एट 11 AM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है।

MBC Radio 24 hours a day. सीबी अपने ग्राहकों को सूचित करता है कि मरम्मत कार्यों की वजह से इन इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। कल शनिवार 8 अगस्त को सैंक्वा और आसपास के इलाकों में जुखे रामगुलाम कनाल बटर्स्ट सैंक्वा रोड और रेसिडेंस ब्रिकेटरी में और कल शनिवार 8 अगस्त को सुबह 8:30 बजे से लेकर दिन के 3 बजे तक लालोगा और आसपास के इलाकों में भी शिवाला रोड लालोगा विलेज रोजलिन कॉटेज शमें सेवियत जॉर्डन और आसपास के इलाकों में भी और शनिवार 8 अगस्त को सुबह 8 बजे से लेकर दिन के 4 बजे तक पेरेबेया रुई कोस्टल रोड और बैंबफ में भी और रविवार 9 अगस्त को सुबह 8 बजे से लेकर दिन के 4 बजे तक लामिचे बालो गोकुला बेलवी मोरेल और मोलवाजिया में भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी और कल सुबह 8:30 बजे से लेकर दिन के 2 बजे तक मिडलैंड्स और जुबई में और आसपास के इलाकों में जैसे कि रॉयल रोड मिडलैंड्स और NHDC जुबई में भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्यों के समाप्त होने पर बिजली की सप्लाई फिर से जारी कर दी जाएगी और सीबी अपने ग्राहकों से क्षमा चाहते हैं और अपना इंतजाम कर लेने की मांग करते हैं। शुक्रिया।

0: आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं।
1: श्रावण मास के समदर्थ में मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा के तत्वावधान में नीम सभाओं में यज्ञ और प्रवचन का आयोजन किया गया है। शुक्रवार 7 अगस्त को गांधी भवन गोष्ठिया शाखा नंबर 5 दिन के 3 बजे से मौडालबेया AR VPS महिला समाज शाखा नंबर 6 दिन के 3:30 बजे से पंडित रामप्रसाद जीवुद भवन विच ए मिल्थियुले दिन के 3 बजे से लेकर 6 बजे तक और 3 दिन तक महायज होगा। प्रवचन भारत से आए आचार्य मोहन आर्य द्वारा होगा। शनिवार 8 अगस्त को सुबह 9 से 4 बजे तक क्यूपिप के म्यूनिसिपालिटी में क्यूपिप तमिल टेंपल फेडरेशन द्वारा एक हेल्थ डे का आयोजन किया गया है।

श्रावण मास के संदर्भ में आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा शुक्रवार 7 अगस्त से लेकर रविवार 9 अगस्त तक, शनिवार दिन के 3 बजे से लेकर 6 बजे तक और शनिवार सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक त्रियोले शाखाओं के सहयोग से 3 दिवसीय यज्ञ और प्रवचन का आयोजन कर रहा है। प्रवचन भारत से आए हुए आचार्य मोहन आर्य

ऑगस्ट से रविवार 9 अगस्त तक इक्वानिया पराशक्ति काली माता मंदिर द्वारा काली पूजा का आयोजन किया जा रहा है। श्रावण मास के संदर्भ में गहलोत महासभा शनिवार 8 अगस्त को शाम 6 बजे महात्मा गांधी रोड थियोले में एक श्रवाणी यज्ञ का आयोजन कर रहा है।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस
0: रेडियो मॉरिशस
1: रेडियो मॉरिशस
2: बजले प्रभु का नाम रेडियो मॉरिशस के लहरों पर। समस्त श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। कार्यक्रम है भजले प्रभु का नाम। श्रोताओं, आपका हार्दिक अभिवादन करते हैं इस हिंदुस्तानी सभा में। जहाँ से भी आप हमें सुन रहे हैं, हमारा सादर प्रणाम स्वीकार करें। इस कार्यक्रम के अंतर्गत चंद भक्ति गीत आपकी सेवा में। आपको पता है कि इन दिनों जो है हम शिवमय वातावरण में अपना जो है जिंदगी, अपना जो जीवन है हम व्यतीत कर रही है, और इस शिवमय वातावरण में बहुत सारे भक्तगण जो है व्रत धारण करे हुए हैं। भक्ति बहुत ही भक्तिभाव के साथ, श्रद्धा भाव के साथ भगवान शिव की जय जयकार कर रही है। तो आइए

इस हिंदुस्तानी सभा की शुरुआत हम करने जा रहे हैं भगवान गणेश जी का नाम लेकर। कहते हैं ना, जो भी शुभ कार्य हमें करना है सबसे पहले हमें भगवान गणेश को पूजना है। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं भगवान गणेश जी की इस वंदना के साथ।

श्रोताओं, भजले प्रभु का नाम आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम शिव के बारे में बात करेंगे। वैसे भगवान शिव केवल एक आराध्य नहीं बल्कि जीवन जीने का एक सुंदर सीख है। शिव का अर्थ है कल्याण, शांति और शुभता। उनका स्वरूप हमें सिखाता है कि सादगी में भी महानता छिपी होती है। तो आइए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे।

श्रोताओं, शिव हमें धैर्य रखना सिखाती हैं, क्योंकि जीवन में परिवर्तन हमेशा चलता रहता है। जो व्यक्ति अपने मन को शांत रखता है और सत्य के मार्ग पर चलता है, वह हर परिस्थिति में आगे बढ़ सकता है ना?

श्रोताओं, भजले प्रभु का नाम। आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप है रात्रि के हम सफर। तो चलिए, हमारे साथ निभाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, महादेव की भक्ति मन में विश्वास जो है आपको पता है जगाती है और हमें अहंकार छोड़कर प्रेम करुणा और सेवा का मार्ग अपनाने की प्रेरणा देती है। तो चलिए, इसी शुभ विचार के साथ कार्यक्रम को हम जारी रखेंगे।

तो चलिए श्रोताओं, हम आपको बताते चले कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कार्यक्रम है भजले प्रभु का नाम। सावन की पावन बेला हो या जीवन का कोई भी पल, शिव का स्मरण मन को नई ऊर्जा और सकारात्मक सोच से भर देता है, है ना? तो चलिए कार्यक्रम का समापन हम जो है हम करने वाले हैं। साथ निभाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे तकनीकी सहायक कारियर को धन्यवाद देंगे। तो आपको हम कहेंगे शुभ रात्रि।

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमएससी रेडियो
1: मीडियम वेव 819 किलोहर्ट्ज पर ये रेडियो मॉरिशस है। परवीज आपसे मुखातिब है। उम्मीद है अल्लाह रब्बुल आलमीन और नबी रहमत शफाए महशर मालिक दो जहां जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सत्य के आप तमाम सामीन खैर आफियत से हैं। जहां से भी आप हमारे साथ निभा रहे हैं, आपको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। तो आइए मज़ीद सामीन, उर्दू नशरियात बनाम महफिल शब का आगाज़ करते हैं एक खूबसूरत हमद कलाम के साथ, जो हमारे दिलों को रूहानियत और सुकून से भर दे।

बनाया है जहाँ जिसने, वो मेरा परवरदिगार है। उसकी कुदरत व हिकमत से ये सारा आलम बरकरार है। उसी ने एक लफ्ज़ कुन से ये कारखाना बना दिया।

वही है मुल्क कुमाल का मालिक, वही है दिल की सदा का महरम। ये रेडियो मॉरिशस है उर्दू नशरियात महफिल शब के साथ रात के 9 बजे तक। मजीद सामीन, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत जोरे बाजू नहीं बल्कि रहमत है, सबसे बड़ी दौलत माल ज़र नहीं बल्कि शफकत से भरा हुआ दिल है, और सबसे बड़ी कामयाबी ये नहीं कि इंसान दूसरों पर गालिब आ जाए बल्कि ये कि वो अपने अखलाक से दिल जीत ले।

शामिल महतरम, इस्लाम का आगाज की रहमत से होता है। कुरान मजीद की तकरीबन हर सूरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू होती है ताकि इंसान ये जान ले कि अल्लाह सबसे बढ़कर मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहम करने वालों पर रहमान रहम फरमाता है, ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम फरमाएगा। कितनी अजीम बशारत है सामईन। अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह की रहमत हमारे घरों, हमारी औलाद, हमारे रिस्क और हमारी ज़िंदगी पर नाजिल हो, तो हमें अपने दिलों में दूसरों के लिए मोहब्बत, नरमी और शफ़क़त पैदा करनी होगी। या अल्लाह, हमारे दिलों को रहमत, मोहब्बत और शफ़क़त से भर दे। हमें दूसरों के लिए आसानी पैदा करने वाला, गमज़दों का सहारा, यतीमों का मददगार और मोहताजों का खैर ख्वाह बना। ऐ रहमान और रहीम, हमें उन लोगों में शामिल फरमा जिन पर तेरी रहमत हर लम्हा साया फिगन रहे। आमीन। हमें भी अपनी दुआओं में शामिल करें। टिकने की मदद अंजू की रही है, मशकूर और ममनून है हम। परवीज़ा को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।

भोजपुरी तड़का कार्यक्रम में तड़का तोहर स्वागत करते हैं। जय हो भोजपुरी तड़का तोहर कार्यक्रम और भोजपुरी तड़का कार्यक्रम में तोहर स्वागत करके हमार दिल कितना खुश हो जाता। चलो भोजपुरी तड़का कार्यक्रम में तो लोग भाग लिया जा, अपन पसंद के गाना सुने खातिर हमी के टेलीफोन करिया जा 5251700055 पर मिसाज भेजे जाओ और 4028085 पर हमी के कॉल करिया जा तो हर पसंद के गाना तो हम तोहर तक पहुँचेबे करब। चलो अभी सुनवाई ला जाता के वीरमती दीनू यानी कि मीरा दीनू जी के गावल, मीरा दीनू जी के गावल एक गीत हमने ललिता जी के फरमाइश पर प्रस्तुत करे थे जा। ललिता जी अपन बहिन सुदेवी देवीना और ज्ञानी खातिर गाना मंगले हवन और अपन संगतियालु खातिर छोटी जी प्रभावती जी और आत्माराम जी खातिर मंगले हवन गाना, सुखलाल मौसी खातिर अपन बेटी आरती के जन्मदिन के बधाई देवत हवन और उनकर पति विकास, बेटी विधि और बेटा विशेष बगल से ये गाना उनका नाम करत हवन और जन्मदिन के मंगल कामना देवत हवन। और ललिता जी अपन भाई सोन के भी जन्मदिन के मंगल कामना देवत हवन, सोन जी के पत्नी बिंदु उनका लड़का लोग और पूरा राम रतन परिवार बगल से जन्मदिन के मंगल कामना।

लक्ष्मी ठाकुर प्रसाद जी के गावाली गाना चला हमने महादेव जी पर आधारित सुनी जा। और महादेव जी के जटा में कितना पवित्र गंगा बहेलाई तो हमने जानी ला जा। ई पवित्र गंगा ई पवित्रता के दर्शन करे खातिर कितना टोली लोग जाता वन जा गंगा तालाब की ओर। तो गुलशन भोला जी अपन संगतिया लोग के नाम करत हवन लक्ष्मी ठाकुर प्रसाद जी के गावल ई गीत प्रीतम अश्विन सुंदर सूरज खातिर और भिकारी परिवार खातिर प्लेंडे पापाई के। प्रीतम अश्विन सुंदर सूरज अपन टोली में अभी गंगा तालाब पहुँचे ही होला हवन। उनकरा बहुत शक्ति मिली उनकर भक्ति तो उनकर मन में है ये बा। ई भक्ति लेके शक्ति लेके गुलशन जी बगल से बहुत बहुत मंगलकामना श्रावण मास के। और ये हमने प्रस्तुत करते जाए गाना हमने के इस सब श्रोता लोग के उस सब भक्त लोग के जे जे अभी शिव जी के भक्ति में मगन हवन जा लगन लगावत हवन जा भक्ति में और शिव जी के प्रेम में उनकर शक्ति पर अभिमान करत हवन जा।

भोजपुरी तड़का। और चली जा, हमने सुनी जा दीपक जी के गावल गाना, ई गाना दीपक सितर प्रसाद जी के गावल भोजपुरी पर। तो चलो भोजपुरी पर ही गाना हमने नाम करी जा सुनीता जी के तरफ से। सुनीता जी रहेलन गांव, अपन बहन विमाला खातिर मंगले हवन ई गाना, कुंगुमा के उनकर बहन विमाला खातिर और अपन बहन अमृता खातिर। तो चलो सुनी जा भोजपुरी के मिठास पर ही गाना। गायक हवन दीपक सितर प्रसाद।

गायत्री जी अभी रहलन हमी संगे टेलीफोन पर और मंगलन हमनी से गाना अगला होला ई गाना चटनी होला है चटनी खाई के खुश रहलन गायत्री जी शायद तो चलो गायत्री जी के पसंद के चटकार गाना हमें चल सुनवाइला जत हल के अभिदानंद बीजन जी के गावल और ई गाना कल्याण गायत्री जी मंगल हवन अपन बेटा अजय खातिर मामी कल्याणी मोहन खातिर मायबू के और लॉन्ग माउंटेन के बाबी शकुंतला खातिर नोवेल फ्रांस के अपन संगतिया गीता बाई खातिर मंगल हवन गायत्री जी गीत तो चला सुनी जाए गाना

बिस्वानी दीपा जी के गावरी गमठ वाला गाना, ये गमठ वाला गाना हमने बजाओ थे जहाँ अर्चना जी के पसंद पर अर्चना जी अभी तक गमठ में हवन गीत गवाई में हवन।

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी के गमटवा चला सुनी जा हमनी विद्या जी के पसीन पर, विद्या जी मंगले हुआ गाना सैंपल से, और विद्या जी गाना अपन पति आनंद जी के नाम कर ले हुआ, और अपन माता जी सुनीता के नाम, और गाना तो सुना था वजह रोशन सदा सिंह जी के गावल, रोशन सदा सिंह जी के आवाज़ सूरज नियन है, ओका दिया का दिखावब जा, तो लोग के का बलब जा, तो लोग तो सुन के पहचान गल रही वजह रोशन सदा सिंह की आवाज़।

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का
0: तड़का
2: भोजपुरी गीत चलिए और सुनानो यंज की आवाज ना गूंजी कहाँ से हुएला। चला हमने साजिद जी क्या पसंद के गाना सुनी जा सुनानो यंज की आवाज में। साजिद जी रोजिल से गाना मंगले हो।

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का,
2: भोजपुरी तड़का में अब चले संवाद लगाए ला जा। हमने अगला गाना संगी गिरीश रूपचंद जी की आवाज संगे और सुदेवी जी के फरमाइश संगे वाकवा से सुदेवी जी मंगले हवन ई गीत गिरीश रूपचंद जी के गावल प्रियोले के दीदी ललिता और कुशल परिवार खातिर आत्माराम भैया खातिर दीदी सुनीता शोभा देवी नाम माला खातिर मालेका के राम रतन परिवार खातिर और हमने के सब सुने वाला खातिर बहुत बहुत धन्यवाद सुदेवी जी।

सुनीता जी गाना सुने खोजत वोहन कौफ को से मीरा मोहन जी के गावल ई गाना लापेल पर जाना और ई गाना कितना दिल दहला देवेला। चल सुनी जा हमनी हमनी के पूर्वज लोग कितना पीड़ा से गुजरल हवन जा।

नीरज गुप्त मधु जी के गावल गाना, जय हो दुल्हा के जय हो दुल्हिन के, ये गाना हमने रूमा जी के पसंद पर बजवाओ थे जा बेलवेदिया से। रूमा जी गाना अपन पति आनंद, अपन बेटी गुड़िया खातिर और ये अपन बेटा वंश खातिर मंगले होवन।

हाँ जी, ये आवाज महेश विश्वजीत जी के सुना था वह। और महेश विश्वजीत जी के गावली गाना हमने बजाओ थे जा लाल माटी के वासु जी के फरमाइश पर। वासु जी मंगले हवनी गाना अपन संगत यालो खातिर विमल संजय दयानंद और विनेश खातिर सबको संगे मिल के अभी एक अच्छा समय बितावत हवन जा।

और अब चलो मुकेश चेदी जी के गावाली गाना सुनी जा। बाप बोले बेटा तू पहन धोती कुर्ता, और बेटा बोले नहीं पिताजी हम पहना बोलता। ये गाना हमने बजवाया था जब वृंदा जी के पसंद पर पिछली हफ्ते की वृंदा जी मंगलवनी गाना पन दादा और दादी खातिर।

देखा था ना वृंदा जी हेर फेर हो गल, बाप बोले बेटा हमने थोड़ा घड़ी में सुनवाई ला जा, ये भी तो बड़ा चौचक गाना बा मुकेश चेदी जी के गावल चला। ये गाना के बाद उनकर आवाज़ में यानी कि मुकेश चेदी जी के ही आवाज़ में तोहर पसंद के गाना चलावल जा हमने।

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का। चल सुने जा ब्रिकुत हमनी अयोध्या के राज अभिमन्यु हरपाल जी के गावल महिन हरपाल जी गाना गईले हवन सीता मांगे अयोध्या के राज और एकरा पसिन करले हवन राजन लक्ष्मण जी लाफलोगा से अपन पत्नी माला जी खातिर बजवाए खोजत हवन बेटी प्रगति खातिर प्रार्थना खातिर और बहिन मानती खातिर भगिनी उर्मिला तुलसी खातिर और पूरा लक्ष्मण परिवार खातिर।

काबरी लजा सुना सुनरवा के बारे में सुनी चाह दगा देवे होलाई सुनरवा हा विनोद सिवदा जी के कावली गाना हा और ये गाना हमने बजवाई लजा नजीरा जी खातिर दगो चके नजीरा जी के नाम करते हैं जाई गाना

यह गाना ज्ञान महिपत लाल जी के गावल और ये गाना हमने से मंगले हवन बेले से आत्माराम जी गाना मंगले हवन बहिन सुदेवी खातिर, बहिन ललिता और बहिन छोटी खातिर और बेले के इस तू परिवार खातिर।

कोनो दिन दाल खाके कोनो दिल भाजी खाके चल देखी जा कैसे जीवन बितावेलन। यह गाना निर्मला फौदार जी के गावल। निर्मला फौदार जी गाना गाना गैले हवन और ये गाना मंगले हवन महेन जी पालमा से दीदी मान खातिर और सब भोजपुरी प्रेमी लोग खातिर।

वी भा चिंतामणि के गावल इप्पो पूरी गाना सुनी जा गीत गवाई वाला पो पूरी गाना है चला ही गाना हमने विजय जी के नाम करे थे जा पोटली के पोटली पाई में रहे विजय जी और ही गाना मांगते वन।

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का,
2: भोजपुरी तड़का के सवाल तोहरा मिलता ही तो हम दावे के साथ बोलब। अभी आगे बढ़त है जहाँ चंद्रदेव चुबोधन जी के गावली गाना संगे भक्ते रहेल आदमी और कैसे भक्ते भक्ते आदमी अपन जीवन में प्रगति करे के चाह रखे लाते चला अपन प्रगति करे के चाह में अपन सुख अपन शांति ना भुलाइया बस अपन शांति के बरकरार रखिया।

तो हमने के भोजपुरी तड़का कार्यक्रम में तड़का तो हलोगे लगाई ला जा अपने फरमाइश से ई कार्यक्रम के खड़ा कर ला जा एक खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। अभी रात के 11 बजे में 3 मिनट बाकी बा एगो अंतिम गाना तो लोग सुनवाओ अब जा सुनीता ननकू जी के गावल ई गाना संगे संगे गुनगुनाते रहिए 11 बजते ही सुनिए जा आज के हमने के कार्यक्रम सुनहरे पल और पुराना गीत के कार्यक्रम गिनीशा लिखे एहन तोर खातिर खूब जोड़ी जोड़ी गाना चुन के अनियन तो जरूर साथ दी जा आवत हला फिर मिलब जा काल सामदी के आपकी पसंद कार्यक्रम में 2:15 पर शुरू करब जा संगे संगे रहब जा और ये आपकी पसंद कार्यक्रम संगे प्रस्तुत करब जा तो आवत हला तक यानी कि आपकी पसंद तक नमस्कार शुभ रात्रि।

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: गुड इवनिंग जी, नमस्कार और गिनीशा का प्रणाम। तो मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, रेडियो मॉरिशस के इस खास प्रोग्राम में सुनहरे पल में आप सभी का दिल से स्वागत है। जिंदगी की भागदौड़ में हम अक्सर उन खूबसूरत लम्हों को पीछे छोड़ देते हैं जो हमारे दुनिया हुआ करती थी। बिल्कुल, जो कभी हमारी दुनिया हुआ करती थी। आज हम उन्हीं यादों के पन्नों को फिर से पलटने वाले हैं। वो पुराने बॉलीवुड गीत, वो बचपन की शरारतें और अपनों के साथ बिताए हुए पल, सब कुछ फिर से ताज़ा होंगे। तो तैयार हो जाइए एक हसीन सफ़र के लिए, हमारा साथ देने के लिए सुनहरे पल में ऑन रेडियो मॉरिशस।

तो दोस्तों, कुछ गीत सिर्फ गीत नहीं होते हैं, बल्कि हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाते हैं। किसी गीत में पहली मोहब्बत छुपी होती है, तो किसी में दोस्तों के साथ बिताए हुए दिन। सुनहरे पल में आज हम लेकर आए हैं बॉलीवुड के वो अमर नगमे जो आपको एक बार फिर उन हसीन यादों से मिला देंगे। तो बने रहे हमारे साथ ऑन रेडियो मॉरिशस इन योर सुनहरे पल। किनिशा का साथ देने के लिए जी बहुत बहुत शुक्रिया।

0: कुछ भी नहीं।
1: वैसे आज की इस महफिल में हम बात करेंगे उन गीतों की जो वक्त के साथ पुराने तो हो जाते हैं लेकिन उनकी मिठास आज भी बरकरार है। शायद आज का कोई गीत आपको आपके स्कूल के दिन, कॉलेज की मस्ती या किसी खास इंसान की याद दिला दे, तो दिल खोल कर आप सफर का आनंद लीजिए और अपनी यादों में बस खोते चले जाइए।

वैसे पुराने बॉलीवुड गीतों का जादू ही कुछ और होता है। जैसे ही कोई पुराना नगमा बजता है, आंखों के सामने पुरानी तस्वीरें घूमने लगती हैं। सुनहरे पल में हम लेकर आए हैं वही खूबसूरत एहसास। तो चाय की प्याली के साथ आप बैठ जाइए और चलिए वक्त की घड़ी को थोड़ा पीछे लेके चलते हैं।

तो दोस्तों, रेडियो की जो दुनिया है ना, रेडियो की दुनिया में कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो दिल को सुकून दे जाते हैं, और सुनहरे पल उन्हीं लम्हों का नाम है। यहाँ हर गीत एक कहानी सुनाता है, हर सुर एक याद को जिंदा करता है। तो आज की शाम, आज की रात, पुराने बॉलीवुड के अनमोल गीतों के नाम हम कर देते हैं, और खासकर आपके लिए आपके नाम भी हम जरूर डेडिकेट करना चाहेंगे ये खूबसूरत सा नगमा।

Well, it's time for me to say goodbye. जी हाँ, इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे as usual वादे के मुताबिक एक और सुनहरे पल के खूबसूरत से शो में. तब तक के लिए गिनीशा को इजाजत दीजिए, शुभ रात्रि और शब्बा खैर, अपना ख्याल रखें.

मेरे भाई तू मुझसे कुछ कहना चाहता है, कह देना, ये अधूरी बात मुझे समझ नहीं आती। कोई तो बड़ी बात है भाई, अपने छोटे भाई से क्यों छुपाता है।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस
0: रेडियो मॉरिशस।

0: life.
1: My, this is Radio Marxist.
2: Assalamu alaikum.

0: 119 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
1: रेडियो मॉरिशस,
0: रेडियो मॉरिशस।
2: आपका जूता देखा, बहुत हसीन है। इसे अपने पैरों में मत डालिएगा, मैला हो जाएगा। प्यार में लोग एक दूसरे को बतौर निशानी फूल, कार्ड, अंगूठी, रुमाल देते हैं। ये पढ़ा और सुना था, पर ये जूता, लगता है प्यार में आपके यहाँ जूता देने का रिवाज है, दिल चुराने का अच्छा अंदाज है।

0: तुझे नहीं मालूम, लड़का ही होगा।
1: अरे जा जा, लड़की होगी।
0: मैंने जो कह दिया लड़का होगा तो लड़का ही होगा।
1: भाई मैं जो कहती हूँ लड़की होगी।
0: ओहो भाभी, अब तुम ही समझौता कर।